0: टाइम चेक सुबह के 5 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
1: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग नमस्ते. 5:05 हो चुके हैं. बाहर हल्का अंधेरा है, ठंडी हवा है और सड़कों पर सन्नाटा है. दुनिया अभी सो रही है पर आप जाग रहे हैं और इस वक्त आपकी जो शुरुआत है, दिन की शुरुआत है, वो प्यारी सी चाय के साथ कीजिए, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कीजिए. अगर आपको बस अभी कुछ देर में ही घर से बाहर निकलना है तो बस थोड़ा सा अपने आप को वार्म, थोड़ा सा कवर करके जाइएगा क्योंकि बाहर सच में ठंड है. आप सबका स्वागत है राइज एंड शाइन में. दिल की बात कहनी है तो आप कर सकते हैं 5499124 पर मैसेज. चलिए सुबह को जीते हैं आप सबके साथ.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार?

यस। हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:19 हुए हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ। आप आंख खोलते ही सबसे पहले क्या सोचते हैं, मुझे ये जानना है, क्योंकि काम, टेंशन या सिर्फ आराम, क्या आज पूरे दिन में हमने सिर्फ आराम करना है या बहुत सारी टेंशन्स लेनी है। अरे पहले सोचिए कि आज का दिन आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आया है। आप अपने आप को थैंक यू बोले, क्योंकि इस टाइम आप हमें सुन रहे हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं अपने काम को लेके, आप बिल्कुल ऑनेस्ट हैं अपने काम को लेके। हो सकता है पूरे दिन में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन आते रहेंगे, हो सकता है आपके दिमाग में इस समय में पूरे दिन की बहुत सारी टेंशंस चल रही होंगी, पर कोई बात नहीं, आप उठे हैं ना, करेंगे आप, और कौन करेगा, आपका काम आप ही को करना है। तो हम तो कहेंगे थोड़ा सा मूड फ्रेश कीजिए, अपने आप को फ्रेश कीजिए, एक ग्लास गुनगुना पानी पीजिए और बस चलते चलिए, ये गाने आपके लिए।
0: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:28 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ और इस समय मैं हूँ आपके साथ पूनम। आप जब उठते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी आवाज़ अच्छी लगती है? कुछ म्यूज़िक की, बच्चों की, पक्षियों की, चाय की, या कोई खाना बनाने की जो खुशबू होती है ना सौंधी सौंधी अर्ली मॉर्निंग की, उसकी खुशबू, या कोई करछुल चला रहा होता है, या कोई किचन में जाके बर्तन धो रहा होता है, कौन सी आवाज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? मुझे उम्मीद है सभी का वही हाल है जो मेरा है। जब घर के आसपास पक्षी होते हैं, चहचहाते हैं, या घर में बच्चे होते हैं, या पेरेंट्स उसके पूछते हैं चाय बना दूं, यही टाइम सबसे अच्छा होता है। तो इस समय अगर आपके पास कोई आपके लिए स्पेशल चाय बना के लेकर आया है तो आप उसको एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और बस बोलिए थैंक यू, क्योंकि अगर उन्होंने चाय बनाई है ना, उन्होंने अपना दिल डाल के दिया है जी। चलिए भाई, बहुत ही प्यारे से गाने चल रहे हैं यहाँ पे, कुछ मोहब्बत हो जाए अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने कहते हैं ना जो आस पास रह रहे हैं, नेबर्स रह रहे हैं, उनके लिए जब मोहब्बत जागती है सुबह सुबह तो पूरा दिन जो स्माइलिंग फेस रहता है और टेंशन कम होती है। तो हमने करना ही क्या है, सुबह सुबह टेंशन नहीं तो कम करनी है। एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें,

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: क्या बात है, इन गानों की कुछ अलग ही बात है। कितनी बार हमने ये गाने सुने होंगे, हजारों बार, लाखों बार, पर फिर भी जब जब चलते हैं ऐसा लगता है आज पहली बार ही सुन रहे हैं। चलिए भाई, बहुत ही प्यारे से मैसेजेस के साथ में आपकी मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं धनवेश्वर जी, अपनी पत्नी सुनीता जी और पूरी देवदोस फैमिली, थैंक यू सो मच। मुकेश जी कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं अपनी वाइफ साधना जी को, उन्होंने अपना हेयर ड्रेसिंग कोर्स कम्प्लीट किया है और उन्हें कह रहे हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किस चीज़ की चिंता है, तुम अपने काम पे ध्यान दो। क्या बात है, थैंक यू सो मच। ऐसे ऐसे मॉर्निंग में सपोर्ट मिले हस्बैंड का, वाइफ का और उससे ज़्यादा क्या चाहिए। सुया बिहारी जी साथ दे रही हैं, इलायची ठीक के साथ में और RM2 रेडियो मस्ती के साथ में, थैंक यू सो मच। इलायची की चाय पीजिए आप और मेरे लिए भी बनाइए। सेतुल जी साथ दे रही हैं, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सूरज शर्मा साजदा जी अपने परिवार के साथ हैं और निशाल को कह रहे हैं पढ़ाई कर लो सारे बच्चे, जो जो पढ़ना पढ़ाई का टाइम है, ये नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। सही बात कहा आपने, बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है, पेरेंट्स को देखना भी ज़रूरी है कि बच्चे कैसे कर रहे हैं। राजन जी, दाबी जी, मिलान जी इटली से साथ दे रहे हैं, मिलन जी इटली से साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं उठ गए हैं और RM2 रेडियो मस्ती के साथ जुड़ गए हैं, क्या बात है, थैंक यू सो मच। ललित जी साथ दे रहे हैं USA से और इन्जॉय कर रहे हैं। अब्दुल सारा बानो को बस इतना कहना चाहते हैं, बहुत प्यार करता हूँ तुमको, पर मेरी एक दोस्त भी है नसरीन, उसके लिए ये प्यारा सा मैसेज है और बस उन्हें यही कह रहे हैं काम करो, ध्यान रखो अपना। जयशन जी साथ दे रहे हैं अपने पूरे स्टाफ के साथ में, इन्जॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। सूरज, सरोज, राजन, मोनिका, उमेश, पूनम, उर्वशी दिल से शुक्रिया कर रहे हैं कि मॉर्निंग राइज एंड शाइन जब चलता है हमें अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच आप सबका। और जिनके अभी तक मैसेजेस नहीं पढ़े गए हैं हम फिर से पढ़ेंगे, इन्जॉय कीजिए तब तक गाने।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: Kuch bhi

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: बुधवार 2 सितंबर 2026 का दिन आ गया। मैं सभी को गुड मॉर्निंग कहूंगी और आपको कहूंगी अब जानते हैं आपका होरोस्कोप मॉर्निंग में आपके लिए क्या लेकर आया। सबसे पहले
2: एरीज मेष राशि,
1: आज किसी रुके हुए काम में गति आ सकती है। आपकी मेहनत किसी की नजर में आएगी। जल्दी में खाना पीना भूलिए मत। लकी कलर बनेगा रेड। लकी नंबर है 6।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज काम में आपकी समझदारी फायदा देगी। कोई पुराना अनुभव आज काम आ सकता है। घर के किसी बड़े का हाल जरूर पूछिए। लकी कलर बनेगा ग्रीन। लकी नंबर है 4।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज कोई अच्छी बातचीत नया रास्ता दिखा सकती है। आपके आइडियाज को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। काम के बीच थोड़ा हंसना बोलना भी जरूरी है। लकी कलर है येलो। लकी नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज किसी अपने का साथ आपको खुशी देगा। काम में शांत तरीके से आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा। अपनी जरूरतों को भी थोड़ा महत्व दीजिए। लकी कलर है व्हाइट। लकी नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालनी है आपको। आपका काम आपकी पहचान मजबूत करेगा। साथ काम करने वालों की तारीफ भी कीजिए। लकी कलर है ऑरेंज। लकी नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज छोटी सी प्लानिंग बड़ा समय बचा सकती है। पुराना अधूरा काम पूरा करके अच्छा लगेगा। बीच बीच में पानी पीते रहें, कुछ फ्रूट्स खाते रहें, कुछ फ्रेशनेस के लिए थोड़ा सा, अगर आप अपने ऑफिस के इनसाइड है तो थोड़ा सा बाहर आ सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। लकी कलर है ब्लू। लकी नंबर है 7।
2: लिब्रा तुला राशि,
1: आज मिलजुल कर किया काम बेहतर रहेगा। किसी की सलाह आपके लिए उपयोगी हो सकती है। अपनों के साथ प्यार से बात करने का समय निकालिए। लकी कलर है पिंक। लकी नंबर है 3।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज अपनी काबिलियत पर भरोसा करके आगे बढ़िए। कोई नया काम सीखने का मौका मिल सकता है। दिन भर खुद पर बहुत प्रेशर मत डालिएगा। लकी कलर है रेड। लकी नंबर है 8।
2: सजिटेरियस धनुराशि,
1: आज आपका उत्साह किसी काम को जल्दी आगे बढ़ाएगा। नई जानकारी करियर में काम आ सकती है। किसी जरूरतमंद की छोटी सी मदद जरूर कीजिएगा। लकी कलर बनेगा ऑरेंज। लकी नंबर है 9।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: आज आपके काम की सराहना हो सकती है। अपने लक्ष्य को लेकर सोच साफ रखें। काम के बाद परिवार के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालिए। परिवार को बाहर लेके कहीं घुमा के ला सकते हैं। किसी के लिए कुछ मीठा कुछ घर में लेकर आ सकते हैं। लकी कलर है ग्रीन। लकी नंबर है 5।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: आज कोई नया आइडिया आपके दिन को खास बना सकता है। उसे सिर्फ सोचिए मत, अगर उसको नोट डाउन भी कीजिए। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आ रहा है, हो सकता है इस बार या इस समय वो आपको ना समझ आए, पर हो सकता है आगे चल के उसके ऊपर आप ज़रूर काम करेंगे। उस पर अपने इंट्यूशन पे थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। आपके आसपास के लोगों से हौसला लीजिए और उन्हें बोलिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। हो सकता है छोटा सा बिजनेस, कोई छोटी सी चीज जो आपके लिए अभी छोटी है, आगे चल के बहुत बड़ी हो सकती है। लकी कलर बनेगा ब्लू। लकी नंबर है 6।
2: पाइसेस मीन राशि,
1: आज आपकी अच्छी सोच किसी का दिन बना सकती है। काम में दिल लगाकर संतुष्टि से काम कीजिए। अपनी खुशी के लिए भी थोड़ा सा समय जरूर निकालिएगा। लकी कलर बनेगा पिंक। लकी नंबर है 4। तो दोस्तों, काम में आगे बढ़िए, अपनों का ख्याल रखिए और छोटी छोटी अच्छी बातों को महसूस कीजिए। मैं थी आपके साथ पूनम, राइज एंड शाइन में। सभी की शुरुआत सुबह की अच्छी हो। इंजॉय कीजिए अपने गानों को।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.
2: ऐसा लगता है कि वो किसी और सर्दी की बात थी.
3: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी.
2: पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है.
3: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी. खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे. कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी. तुम्हारी शॉल कहाँ है?
2: भूल गई. ना ना,
3: तुम नहीं बदलोगी.

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. The Musty. The
4: Musty. Time check. सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार.
5: नमस्कार आदाब. कल रात राष्ट्रीय सभा में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल को पारित किया गया है. रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल को परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद द्वारा पेश किया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक के जरिए एक ठोस और साफ पैगाम दिया जा रहा है, खासतौर पर शराब या ड्रग नोशी करते हुए गाड़ी चलाने वालों को नए कानून के तहत इस जुर्म के लिए गाड़ियों को भी जब्त किया जा सकता है. रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कानून का पहला मकसद जुर्माना के पैसों को जमा करना नहीं या फिर गाड़ियों को जब्त करना नहीं, बल्कि नागरिकों की जिंदगी बचाना है. डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि ये एक बुनियादी जिम्मेदारी है और इस बिल के तहत सड़कों पर सभी तरह के जुर्मों के लिए सजा होगी और पुलिस अफसरों के पास कैमरे भी होंगे. इस साल के पहले 6 महीनों के दौरान निर्यात की सतह पर अच्छे नतीजे दर्ज हुए, लेकिन कुछ दूसरे पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए. मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन मेक्सा के मुताबिक 0.2% की बढ़ोतरी नोट की गई है. 54 बिलियन रुपए का कारोबार हुआ है. हर साल की तरह हजारों मुर्शन 8 सितंबर को सेंट ख्वामी फौतलावाल के मकबरे पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और गरीबों का मसीहा थे. इस साल इस तीर्थयात्रा का विषय असामाविक पेलावाल पॉइंट सोसाइटी प्लीजिस एक फातियानिल है. एक प्रेस सम्मेलन के दौरान आयोजक कमेटी से पादरी पैट्रिक पुलिडोरा ने उल्लेख किया कि ये विषय पोर्टली के बिशप के संदेश से प्रेरित है. विदेश में अमेरिकी ताकतों ने कल से ईरान पर हमले फिर से शुरू कर दिए. अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेंटकम ने कहा कि अब नए हुरमुज में तिजारती शिपिंग के खिलाफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को के हालिया हमलों की कोशिश के जवाब में अमेरिका ने कदम उठाया. ईरान के रेड क्रेसेंट के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई और एक बच्चा शामिल था. 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं. तो अभी के लिए बस इतना ही. मौसम का हाल. आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह घने बादल होंगे. दोपहर बाद सेंट्रल प्लाटो और हवाई ढलानों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर हल्की बारिश होगी. आज रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और सेंट्रल प्लाटो तथा पूर्व के एक हिस्से में रह रहकर बारिश होगी. हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा. 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासतौर पर पूर्व और दक्षिण वाले लगूनों में. तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 20 से 23. साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सूर्योदय 6:17 पर और आज शाम को 6:01 पर सूरज ढल जाएगा. तो अभी के लिए बस इतना ही. इजाजत दीजिए. नमस्कार और आदाब.
0: News on NBC Play, NBC Radio.tv,

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:08 हो चुके हैं, सफ़र शुरू हो चुका है। कई लोग अपने घर से निकलने वाले हैं और कई लोग बस अब भी उठ रहे हैं और उनका दिल नहीं कर रहा ब्लैंकेट से निकलने का। पर क्या करें, करना पड़ता है भाई। बच्चों को स्कूल जाना है, बड़ों को क्या कहते हैं ऑफिस जाना है, मम्मी पापा को खाना बनाना है और उनसे भी ज़्यादा जो एल्डर्स हैं उनका अपना ख्याल रखना है। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तभी तो जो ऑफिस जा रहे हैं वो बिल्कुल पीसफुल होकर काम कर सकेंगे। जब आपकी टेंशन्स आती हैं तो उनको टेंशन होती है, और जब आप घर पे होते हैं आपको बच्चों की टेंशन होती है। तो किसी को भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस रिलैक्स रहना है, अपने अपने काम करते रहो, एंजॉय करते रहो गानों को, अपनी ज़िंदगी को। और अगर बस में जा रहे हैं तो थोड़ी सी चेहरे पर स्माइल ज़रूर रखिएगा। बिल्कुल ये नहीं कि फ्लैट बैठे हैं और मतलब ड्राइव हो रही है और कोई लेना देना नहीं। थोड़ा सा अलर्ट होके, थोड़ी सी स्माइल चेहरे पर रख के आपको भी अच्छा लगेगा। जब आप काम पर जाएंगे आपके चेहरे पर एक प्यारी सी रौनक, एक प्यारी सी शाइन होगी, और वो शाइन जो है ना यही आपका ऑरा बनाएगी। तो आज हम आपको बोलेंगे एंजॉय कीजिए गानों को, थोड़ी सी मस्ती और करते हैं। ये है गाना आप सबके लिए, एंजॉय कीजिएगा जो भी सुन रहे हैं इस टाइम।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:18 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ, जहां पे हम बस मुस्कुराहट के साथ आपको इतना ही कहते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी को, एंजॉय कीजिए गानों को, पर हम एंजॉय करने जा रहे हैं आपके मैसेजेस। तो चलिए भाई कुछ मैसेजेस हैं पढ़ लेते हैं। हेमा जी विश कर रही हैं परुषि, प्रीति, प्रथमी, प्रिया, निष्का, नितिन, विशाल, यनेश को और कह रही हैं पढ़ाई करो, काम पे जाओ, हमेशा खुश रहो। क्या बात है। श्याम देवी चरण जी चाय इलायची वाली ले रहे हैं और साथ में सभी को कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सर। आपको भी डैरन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लुवेशा, आपादू फैमिली विश कर रहे हैं सभी को। प्रमिला अपने हस्बैंड रंजीत जी को बस इतना कहना चाहती हैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा अपना ख्याल रखा करें जब भी बाहर जाते हैं, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अनुषा जी साथ दे रही हैं और अपने पापा सासन, प्रमिला, संजू, रोशनी, परी, हिमेक्ष के लिए बस विश कर रही हैं कि बहुत ही अच्छा दिन आप सबका जाए। दीपक जी साथ दे रहे हैं और विदु जी के लिए बहुत ही प्यारे से बेस्ट विशेस लेकर आए हैं। साथ में ही मीला जी विश कर रही हैं सिस्टर और नितिश को और बोल रही हैं कि एक प्यारे से गाने की फरमाइश है कि प्लीज़ गाना उनके लिए एक स्पेशल चलाइएगा। राजन रघुपत जी साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को। ललिता जीतन जी साथ दे रही हैं जॉगिंग के साथ में, इलायची वाली चाय अब पीने लग चुकी हैं तो क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, तो थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने का। अमृता जी साथ दे रही हैं, टोनी जी साथ दे रहे हैं, माला जी साथ दे रही हैं और रिया एंड जिया के लिए उनके पापा की तरफ से सभी को बेस्ट विशेस और सबको इतना ही कह रहे हैं कि प्लीज़ अपना अपना ख्याल रखा करें और ठंडी है थोड़ा सा गर्म कुछ पहनिए, कुछ अच्छा सा गर्म गर्म खाइए। क्या बात है, थैंक यू आप सभी का जितनों ने भी मैसेज किया है, हम भी आपको यही कहेंगे आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छी शुभ हो और ये गाने आप सबके लिए। थोड़ा सा मस्ती कीजिए, इंजॉय कीजिए अपने गानों के साथ में अपनी मॉर्निंग को।

0: 6 बजे है।
1: पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। कल रात राष्ट्रसभा में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल को पारित किया गया। इस नए कानून के तहत सड़क जुर्मों के लिए सजा और सख्त। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि मकसद जुर्माना के पैसों को जमा या गाड़ियों को जब्त करना नहीं बल्कि नागरिकों की जिंदगी बचाना है। ईडीबी के तहत करीब 500 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें कुल 634 बिलियन रुपए निवेश किए गए। इन परियोजनाओं के मुकम्मल होने पर 25,000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कल प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान इसका उल्लेख किया गया। मॉरिशस के निर्यात अच्छी राह पर। धीमी बढ़ोतरी के बावजूद मेक्सा सकारात्मक है। साल के पहले 6 महीनों के दौरान 54 बिलियन रुपए का कारोबार। और विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच हमलेबाजी फिर से शुरू। नमस्कार। आदाब। राष्ट्रसभा में कल सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल को पेश किया गया। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक के जरिए एक ठोस और साफ पैगाम दिया जा रहा है, खासतौर पर शराब या ड्रग नोशी करते हुए गाड़ी चलाने वालों को। नए कानून के तहत जुर्मों के लिए गाड़ियों को भी जब्त किया जा सकता है। कल रात इस विधेयक को पारित किया गया। मंत्री उस्मान मोहम्मद को सुनते हैं।
2: Road rage is not simply a matter of discourtesy or frustration on our roads. Aggressive behavior can escalate rapidly into violence, threats, damage to property, and serious breaches of the peace. The bill defines at long last road rage to cover a range of conduct, including assaulting or threatening to assault another road user. Firstly, it's defined as follows. Using aggressive, threatening, violent, abusive or insulting words or behavior, using an offensive weapon with the intention of causing harm, damaging the property or vehicle of another road user, causing public fear, or committing an act likely to trigger an offense of public order or a breach of the peace.
1: रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस कानून का पहला मकसद जुर्माना के पैसों को जमा करना या फिर गाड़ियों को जब्त करना नहीं बल्कि नागरिकों की जिंदगी बचाना है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि ये एक बुनियादी जिम्मेदारी है। इस बिल के तहत सड़कों पर सभी तरह के जुर्मों के लिए सजा होगी और पुलिस अफसरों के पास भी कैमरे होंगे। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
3: But society must develop the right culture, the right attitude. Government can provide leadership, but every road user must accept his or her responsibility. The bill before the House today, Madam Speaker, addresses some of the most serious risks on our roads, including driving under the influence of alcohol or drug or intoxicating substance, dangerous and careless driving resulting in death, driving without a license, resulting in death, illegal road racing, road rage, distracted driving, and failure to comply with police directions. At the same time, the bill modernizes our traffic administration through measures such as the digital driving license. This is a big step forward. Road safety relies heavily on mindful driver behavior and a collective commitment to protecting all road users. There is a common principle which runs through all these provisions. Whether we are dealing with drink driving or drug driving or dangerous driving or unlicensed driving, road racing, road rage, the underlying issue is responsibility. We need to change the way we think about road safety. We should not be asking what is the penalty if I'm caught. We should be asking what risk am I creating for myself and others. This is why we say that there has to be a change in attitude and mentality. Government has a responsibility to provide the framework for that change. We are strengthening the law where the existing framework is not sufficient, providing the police with preventive powers where there is an immediate danger, and therefore we are also modernizing the tools that the state can give them. The objective is not to collect more fines or to disqualify more drivers. The objective is not to seize more vehicles. The objective is to save lives. The ultimate measure of success will not be the number of fines issued, but will be the number of lives saved.
1: राष्ट्रीय सभा के कार्य 20 अक्टूबर 2026 को लगाए जाएंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के तहत करीब 500 परियोजनाओं पर काम चल रहा है और इन परियोजनाओं में कुल 634 बिलियन रुपए का निवेश शामिल है। परियोजनाओं के मुकम्मल होने के बाद 25,000 से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप

0: अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने राष्ट्रसभा में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान कल ये जानकारी दी। इस दौरान विदेशी मुद्रा बाजार की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2025 की तुलना में हालात में सुधार हुआ, हालांकि विदेशी मुद्रा बाजार पर दबाव अभी भी बना हुआ है। सिलवाना पागी मामन की रिपोर्ट पर ये विवरण।
1: उपलब्धता और डॉलर की मांग पर सांसद रुकनी के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 से विदेशी मुद्रा की उपलब्धता में सुधार देखा गया। हालांकि डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है।
2: Nonetheless, we must agree that the forex market remains tight, Madam Speaker.
1: देश में कंपनियों और परिवारों के पास मौजूद विदेशी मुद्रा की मात्रा तथा 2025-2026 में निर्यात उन्मुख कुछ प्रमुख क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए दिखाई दे रही विदेशी मुद्रा की कमी का एक कारण कुछ कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा को अपने पास रोक कर रखना भी हो सकता है, जिससे लेन देन के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा की वास्तविक आपूर्ति सीमित हो जाती है। विदेशी मुद्रा बाजार में एक संरचनात्मक असंतुलन भी मौजूद है। पिछले कुछ वर्षों में आयात में हुई तेज वृद्धि, जो पिछली सरकार द्वारा अपनाई गई उपभोग आधारित आर्थिक मॉडल का परिणाम थी, ने विदेशी मुद्रा की मांग में ज्यादा और लगातार बढ़ता हुआ अंतर पैदा किया। विदेशी मुद्रा से होने वाली आय में वृद्धि इस मांग की पूरी तरह भरपाई नहीं कर पाई, जिसका असर घरेलू बाजार में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर पड़ा है। प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा की प्राप्ति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का भी उल्लेख किया। पहला, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट स्कीम के तहत विला की बिक्री से प्राप्त राशि में से कम 85% राशि को मॉर्शन रुपए में परिवर्तित करना अनिवार्य किया गया। दूसरा, ऐसी कंपनियों के लिए जिनके कारोबार का कम से कम 50% हिस्सा विदेशी मुद्रा में होता है, अपने सभी टैक्स का भुगतान विदेशी मुद्रा में करना अनिवार्य किया गया। तीसरा, 1 अक्टूबर 2025 से प्रति पर्यटक प्रति रात 3 यूरो का पर्यटन शुल्क लागू किया गया, जिसने बाजार में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बढ़ाने में योगदान दिया। चौथा, आवास सेवाओं पर प्राप्त वीएटी का 50% विदेशी मुद्रा में जमा करना अनिवार्य किया गया। सांसद एडुआने रॉड्रिक्स के लिए आवंटित बजट और धन के फिर से आवंटन के बारे में सवाल किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अप्रैल में रॉड्रिक्स रीजनल असेंबली ने वेतन भत्तों और पेंशन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए 548 मिलियन रुपए की अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी, क्योंकि उसके पास उपलब्ध संसाधन समाप्त हो चुके थे। इस मांग की समीक्षा के बाद वित्त मंत्रालय ने रॉड्रिक्स रीजनल असेंबली को 300 मिलियन रुपए की अतिरिक्त राशि देने पर सहमति जताई। वित्त मंत्रालय ने रीजनल असेंबली के विकास बजट की भी समीक्षा की और पाया कि बजट के क्रियान्वयन की दर कम थी। इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि रीजनल असेंबली संभवतः चालू बजट वर्ष के अंत तक अपने पूरे विकास बजट का उपयोग नहीं कर पाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भी यही रुझान देखने को मिला, जब रीजनल असेंबली अपने विकास बजट का औसतन लगभग 73% ही खर्च कर पाई थी। सांसद जोआना बेरांजे ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के स्तर पर निजी निवेश परियोजनाओं के बारे में जानकारी मांगी। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि ईडीबी के पास 523 परियोजनाएं पंजीकृत हैं। इन 523 परियोजनाओं में से 512 परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनमें कुल 634 बिलियन रुपए का निवेश शामिल है। बाकी 11 परियोजनाएं जिनकी कुल राशि 15.7 बिलियन रुपए हैं, या तो निलंबित हैं या रद्द कर दी गई हैं। अनुमान है कि पहले से पूरी हो चुकी और वर्तमान में लागू की जा रही परियोजनाओं से लगभग 18,500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं। इसके अलावा इन परियोजनाओं के पूरे होने और पूरी तरह चालू होने पर 7,800 और रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। सांसद बिच्चुक ने फिल्म रिबेट स्कीम के बारे में सवाल उठाया। 30 जून 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 14 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इस अवधि में 102.1 मिलियन रुपए की राशि का भुगतान किया गया। 2026 में 11 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 9.3 मिलियन रुपए का भुगतान किया गया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस परियोजना के तहत वापस की जाने वाली राशि पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने की संभावना का भी उल्लेख किया। बजट संबंधी सीमाओं और सरकारी धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को देखते हुए वापस की जाने वाली राशि पर एक अधिकतम सीमा तय करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अनुरूप फिल्म शूटिंग खर्चों की प्रतिपूर्ति योजना से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य अधिक संख्या में परियोजनाओं को इस योजना का लाभ देने के साथ साथ ये सुनिश्चित करना है कि उनसे ठोस आर्थिक लाभ मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस की पहचान तथा शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उसकी आकर्षकता और मजबूत हो। प्रधानमंत्री ने सदन को ये भी याद दिलाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में फिल्म शूटिंग खर्चों की प्रतिपूर्ति योजना में कथित तौर पर दुरुपयोग हुआ था। उन्होंने आलान गोविंदन का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ के करीबी मित्र थे और उन्होंने उनके लिए नामधारी अथवा ऋणदाता के रूप में काम किया था। प्रधानमंत्री के अनुसार गोविंदन ने प्रवीण जगन्नाथ की अंगुश रोड स्थित संपत्ति के संबंध में बिलेश गैस्टेट को 20 मिलियन रुपये का भुगतान किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी आलान गोविंदन की फिल्म प्रिजनर्स ऑफ पैराडाइज उस समय बन रही थी, जिसके लिए ईडीबी ने उन्हें 66 मिलियन रुपए का भुगतान किया था, जिसमें से 21.6 मिलियन रुपए टैक्स के रूप में काटे गए थे। उन्होंने कहा कि अब ईडीबी का बोर्ड उन फिल्मों को मंजूरी देता है जिन्हें सहायता मिलनी है और ये प्रक्रिया नियम आधारित प्रणाली पर है। इसके विपरीत पिछली सरकार के दौरान ईडीबी के सीईओ अकेले ही इन सहायता राशि को मंजूरी देते थे, अब पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि ईडीबी के नेतृत्व के लिए जल्द ही एक नया सीईओ नियुक्त किया जाएगा।
0: विवरण करुणा लालू का रहा। इस साल के पहले 6 महीनों के दौरान निर्यात के सतह पर अच्छे नतीजे दर्ज हुए, लेकिन कुछ दूसरे पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन मेगजा के मुताबिक 0.2% की बढ़ोतरी नोट की गई, 54 बिलियन रुपए का कारोबार हुआ है। प्रणव बिहारी, अदिति गनवफ्तार।
3: मेक्सा की निदेशिका लीलावती राजमन जूसरे के अनुसार उन सामानों में 27% की भारी गिरावट आई है जिन्हें आयात किया जाता है और फिर आमतौर पर फ्रीपोर्ट के जरिए बिना किसी खास प्रोसेसिंग के पुनः निर्यात कर दिया जाता है। हालांकि कुल निर्यात के 2 अन्य हिस्से हालात को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। पहला, विदेशी विमानों और जहाजों को बेचे जाने वाले ईंधन की बिक्री, जिसमें 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। फिर घरेलू निर्यात यानी स्थानीय स्तर पर बने और दूसरे देशों को भेजे जाने वाले सामान, जिनमें 4.5% की बढ़ोतरी हुई है और ये कुल 28 बिलियन रुपए तक पहुंच गए हैं। इस साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने राहत की सांस ली है। मेक्सा की निदेशिका कहती हैं, ये भूलना नहीं चाहिए कि पिछले साल अमेरिका द्वारा टैरिफ लागू किए जाने के कारण काफी परेशानियां हुई थी। हमें उम्मीद थी कि इस साल परफॉर्मेंस बेहतर होगा, क्योंकि इस बार हमारे निर्यातक नए यूएस टैरिफ के अनुरूप खुद को ढाल पाए हैं। अच्छी बात यह है कि इस साल प्राइवेट सेक्टर और सरकार के मिले जुले प्रयासों की बदौलत हम पर यूएस टैरिफ लागू नहीं हो रहा है। मेक्सा की निदेशिका का मानना है कि अमेरिकी बाजार में ड्यूटी फ्री प्रवेश का और भी ज्यादा सकारात्मक असर साल की दूसरी तिमाही में देखने को मिलेगा।
0: हर साल की तरह हजारों मुर्शन 8 सितंबर को सेंट क्वामी फौदलावाल के मकबरे पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और गरीबों के मसीहा थे। इस साल इस तीर्थ यात्रा का विषय ऑनसामा विक प्यालावाल पुएन सोसिटी प्लीजिस एक फ्रातियानिल है। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान आयोजक कमेटी से पादरी पैथ्रिक पोलिडोरा ने उल्लेख किया कि ये विषय पोर्टल के बिशप के संदेश से प्रेरित है। मोसेयर जॉ मिकाएल जोहोन ने एक न्यायपूर्वक मुर्शस की इच्छा दर्ज यानी व्यक्त की, जिसमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाता। कैदी मौका करुणा लालू।
1: और समाविक पहलावाल पॉइंट सोसाइटी प्लीजिस एक फातेनल ये 2026 में बियानियोरी पहलावाल की समाधि की तीर्थ यात्रा की थीम है।

0: ये तीर्थयात्रियों को पेलावाल के पदचिन्हों पर चलने का निमंत्रण है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के कमजोर वर्गों, बीमारों और मुक्त किए गए गुलामों की सेवा में समर्पित किया था और उनके सम्मान और समाज में उनका उचित स्थान वापस दिलाने का प्रयास किया था। 8 सितंबर को पहली प्रार्थना सभा रात 8 बजे होगी और उसके बाद रात 11 बजे। तीर्थयात्रा आयोजन समिति के पैपात्रिक पुडिडो ने कहा, मोनसिग्नियर जोहन ने अपने संदेश में ये याद दिलाया कि कैसे एक ज्यादा न्यायोचित और भाईचारे वाले समाज की मांग की गई है। यदि न्याय न हो तो शांति नहीं होगी। इस समाज का निर्माण चल रहा है, रास्ते पर है। इस वर्ष भी कई एनजीओ तीर्थयात्रियों की मदद के लिए मौजूद रहेंगे, खासकर जरूरतमंदों के लिए। माइकल रामस्वामी ने कहा, ये एनजीओ आत्महत्या, ड्रग्स, शराब, घरेलू हिंसा आदि का निरोध करते हैं और कैदियों का समर्थन भी करते हैं। 2026 की इस तीर्थयात्रा का संदेश स्पष्ट है, मिलकर ऐसा मॉरिशस बनाना जहां हर व्यक्ति के लिए जगह हो, उन्हें समान अवसर प्राप्त हो और कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे।
1: विदेश में अमेरिकी ताकतों ने कल से ईरान पर हमले फिर से शुरू कर दिए। अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि आप नए हुर्मुज में तिजारती शिपिंग के खिलाफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को के हालिया हमलों की कोशिश के जवाब में अमेरिका ने यह कदम उठाया। ईरान के रेड क्रेसेंट के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई, एक बच्चा शामिल था, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिका का मिसाल ईरान के दक्षिण में एक घर की तरफ दागा गया जहां एक शादी समारोह चल रहा था। जवाब में ईरान ने इराक और जोर्डान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए। कुवैत और बहरीन में भी हमलों की रिपोर्ट है। और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत, हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह घने बादल होंगे, दोपहर बाद सेंट्रल प्लेटू और हवाई ढलानों में बादल घिराएंगे और हल्की बारिश होगी। आज रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे, पूर्व और सेंट्रल प्लेटू में रह रहकर वर्षा होगी। हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। इसी वजह से पूर्व और दक्षिण वाले लगुनों में न जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 20 से 23, साहिरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज शाम 6:01 पर सूरज ढल जाएगा।

आज की बड़ी खबरें एक बार फिर से पेश हैं। कल रात राष्ट्रीय सभा में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल को पारित किया गया। इस नए कानून के तहत सड़क जुर्मों के लिए सजा और सख्त। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि मकसद जुर्माना के पैसों को जमा या गाड़ियों को जब्त करना नहीं बल्कि नागरिकों की जिंदगी बचाना है। ईडीबी के तहत करीब 500 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें कुल 634 बिलियन रुपए निवेश। इन परियोजनाओं के मुकम्मल होने पर 25,000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान कल इसका उल्लेख किया गया। रूस के निर्यात अच्छी राह पर हैं। धीमी बढ़ोतरी के बावजूद मेग्जा सकारात्मक है। साल के पहले 6 महीनों के दौरान 54 बिलियन रुपए का कारोबार। और विदेश में अमेरिका तथा ईरान के बीच हमलेबाजी फिर से शुरू। तो ये थी अब तक की खबरें। अब तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी काविश पल्टन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ दिन आप सभी को। थोड़ी देर आप शोक समाचार सुन पाएंगे। नमस्कार। शोक समाचार सुनिए। पियती लेन कास्टेल में 65 साल की 65 श्रीमती धन कुमारी चुनी। श्रीमती धन कुमारी चुनी पैदाइशी नाम रामचैन जो सविता चुनी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 10 बजे उनके बेटे हरीश चुनी के घर पियती लेन कास्टेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 10 AM। लोगाते रोड मोताई ब्लॉश में 35 साल के 35 श्री अरविंद मांकू। श्री अरविंद मांकू जो चिकोल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके घर लोगाते रोड मोताई ब्लॉश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लॉश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट नून। देकोम्ब रोड कारोलिन में 90 साल की 90 श्रीमती राबी शांति भोजा। श्रीमती राबी शांति भोजा पैदाइशी नाम झरी जो शांति भोजा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 10 बजे इनके घर देकुंब रोड कारोलिन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ख्वाइलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे 10 AM। बासन रोड कैथरबोन में 64 साल के 64 श्री बसंतराव बापामा जो वसंत के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 10 बजे इनके घर बासन रोड कैथरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 56 एबीडियो लकाई क्यूपिप रोड में 72 साल के 72 श्री मुनीश्वर द्वाका जो धीरज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और एमबीसी में काम करते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 10 बजे इनके घर आबिदुल्लाकाय क्यूपी प्रोड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिकागा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे 10 AM। स्कूल ने निकवानियों में 58 साल के 58 श्री प्रेमदत्त रामदुआ। श्री प्रेमदत्त रामदुआ जो विश्वजीत के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे की पत्नी अलका देवी रामदुआ के घर स्कूल ने निकवानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 11 AM। आपिया लेन निकवानियों में 79 साल की 79 श्रीमती चंपा कार्तिक जो बरकी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके बेटे मानू कार्तिक के घर आप्यालीन इकवानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2 PM। गांधी रोड लालमाटी में 72 साल की 72 श्रीमती शीला सिक्किसुन पैदाइशी नाम बंधन जो शोभा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके घर गांधी रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडिमास की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2 PM। प्लाटू रोड गुडलैंड्स में 45 साल के
45 years old, Shri Pravesh Singh Surji, Shri Pravesh Singh Surji, जो शैलेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ ही आज 11 बजे, आज 11 बजे इनके घर प्लेटो रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टू डे एट 11 AM। लाल बहादुर रोड ब्रह्मस्थान में 46 साल के 46 years old, श्री महेंद्र लक्की जो दीपू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ ही आज एक बजे के घर लाल बहादुर रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टू डे एट 1 PM। चांद लेन अलिता मारे पिटी त्रिविया में 76 साल के 76 years old, श्री जगदेव सुंदर जो बाज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज डेढ़ बजे इनके बेटे ओमदत्त सुंदर के घर चांद लेन अलिता मारे पिटी त्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैन जॉर्ज पिटी त्रिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नंबर 115 मागों स्ट्रीट प्लान व्यत में 99 साल की 99 years old, बीबी शरीफा सैयद अकबर जो छोटी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा कल रात 9 बजे इनके भांजे लड्डू मोहम्मद सैयद हुजैफा के घर मागों स्ट्रीट प्लान व्यत से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया गया। फ्यूनरल लॉस नाइट एट 9। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी।

सुबह का ये सफर आपके साथ बहुत ही प्यारा रहा। अब मेरे बाद आएंगी वेदिता। दिन आपका खुशियों से भरा रहे, हर लम्हा अच्छा लगे, थोड़ा मुस्कुराइएगा, थोड़ा सा गुनगुनाइएगा, यही तो जिंदगी है। मेरी तरफ से बाय बाय, वेदिता की तरफ से थोड़ी देर में हाय।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: बस कर बहुत ज्यादा हो गया. सुबह के 7:07 हुए हैं. आज 2nd of September वेडनेसडे का दिन है. क्या डांस किया भाई पूनम के साथ, क्या डांस किया. ऐसा लगा जैसे पता नहीं एक पूरा, जैसे लोग गए घंटे दो घंटे जिम में बताते हैं ना, इस एक गाने ने वो कमाल कर दिया. और क्या कमर हिलाए हमने पूनम. वाह वाह वाह वाह वाह वाह. चलो भाई हमारा मॉर्निंग का तो हो गया, अब आपकी बारी है. मुझे पता है कि अगर आंटीज किचन में होंगी तो उनका भी कुछ यही हाल हुआ होगा और वो कहते हैं चलो भाई आज का एक्सरसाइज हो गया. नहीं नहीं नहीं आंटी, आपका नहीं हुआ, आपको और करना पड़ेगा. हमारा काम है गाना चलाना, आपका काम है डांस करना. तो जितने भी लोग इस समय काम पर जा रहे हैं, अगर ड्राइव कर रहे हैं और इस गाने ने आप पे थोड़ा सा मैजिक किया होगा, आपका मूड थोड़ा सा यू नो हैप्पी वाला हो गया होगा, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल. चलिए जी, मैं विदिता आपका साथ देने आई हूँ. योर मॉर्निंग बीट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. रेडियो मस्ती पर साथ दे रही हूँ मैं, साथ रहूँगी 9 बजे तक. एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जितने लोग हमें अब्रोड सुन रहे हैं, जैसे प्रतिमा जी अभी फ्रांस में है वैसाई और वहां पे हमें सुन रही हैं और उनका प्यारा सा मैसेज आया है. सो थैंक यू सो मच विरार. चलिए इसी के साथ हम भी खुशियां बटोर रहे हैं, थोड़ा सा आपके दामन में भी भेज रहे हैं. प्लीज कैच करें
0: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: FM2.
1: Radio Musty.
2: On ajoute encore quelques millions à l'équation. Le Loto Plus affiche environ 13 millions de roupies et le Loto, lui, atteint 45 millions de roupies. 45 millions de roupies au Loto. Difficile de ne pas y penser. Mais pendant que les jackpots montent, une autre chose, elle se fait de plus en plus rare, l'eau. Alors, évitons le gaspillage.
3: Ceci est un communiqué de Lototech. Le jeu peut créer une dépendance, jouez responsablement.
4: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
0: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: हेलो एंड वेलकम, सुबह के 7:17 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रेडियो मस्ती का ये हमारा प्रोग्राम जो है मॉर्निंग बीट। चलिए भाई, मैं देख रही थी आपके लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ। यस, हम आपके लिए लेकर आए हैं गेम और ये है विनर्स की तरफ से। और चलिए, आज 22nd of September है तो आपके लिए हम सवाल लेकर आए हैं।

0: हाँ जी, सवाल है आपके लिए. अंटिल 6th ऑफ सितंबर, व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस और विनर्स पापी टॉयलेट टाइम्स 24. जी हाँ, अंटिल 6th ऑफ सितंबर, व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस और विनर्स पापी टॉयलेट टाइम्स 24. और आपको जवाब देना है 549 and 1294. याद रखिए पूरे नाम और पते के साथ भेजिए अपने जवाब और हम कर रहे हैं आपका इंतजार लेकर 500 रुपीज का ये वाउचर.
1: RM2
2: रेडियो मस्ती.
1: Moments that matter with Seacom.
3: लुतु चलावे बेरा तोहर खातिर का जरूरी है जोन मंजिल पर जाए के बाद हुआ शांति आ सुरक्षा से पहुँचे के पर कोई नहीं सकी बोले कि कब सीमा पर कोनो प्रॉब्लम मैकेनिक या दुर्घटना हो जाए. ऐसन बखत में ये जाने की जरूरी है कि तू अकेले नहीं हुआ. सिकम ड्राइव स्मार्ट एगो ऐसा लासिरोंस है जो मुश्किल घड़ी में तोहर साथी बन के रही. कोनो दुर्घटना होइला पर आश्वासन रखिया कि तोहरा आ तोहर यात्री के सबसे नीमन दाम देवब जा आ तोहर दिन के खराब नहीं होई देवब जा. टोइंग कागज के काम खातिर लासिस्टोंस जब तोहर लुतु बनता तब ले एगो लुतु और प्लास्मा मिली तोहरा एकदम बेहतर सेवा देवब जा. आर दूसर समस्या जैसे तूफान बार आग लगला आर चाबी पेरदी कर दिला कोई तोहर लुतो जबरन तोड़ के चोरी करलक या चूहा काट के नुकसान करलक. सिकम ड्राइव स्मार्ट तोहर सब सुविधा के सोच ली बाटे. सिकम ड्राइव स्मार्ट तोहर बारे में सोच ली बाटे. गाड़ी की सुरक्षा करल अच्छा है पर जीवन में बिना चिंता के आगे बढ़ते रहे के ई सबसे जरूरी है. इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला.
1: It was moments that matter with Seacom.
4: Béala, Wednesday Bazaar, la Gekot Winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners.
5: Et promotion, bidoun bal. Un chouvert pour 39,95 €. Un betterave pour 14,95 €. 500 grammes mandarine sweetie pour 44,95 €. 500 grammes blanc glissé aile de poulet frais pour 109,95 €.
4: Pan prix là, Bazaar Moudirou. Rendez-vous Côte Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
6: On est tous Winners.
1: RM2
2: Radio Musti.
7: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2 Radio Musti in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: भाई हम भी वेट कर रहे थे कि कोई हमारी फोटो खींचे, लेकिन किसी ने खींचा नहीं है तो हमने सेल्फी लेना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सुबह के 7:25 हुए हैं, अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इनकी फोटो खींच लूं और लगा दूं यहां और बता दूं कि ये हैं हमारे विनर। यस, हमने आपसे सवाल किया था, हमने आपसे पूछा था कि अंटिल 6th of September व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ विनर्स पपी टॉयलेट टाइम्स 24 एंड द नॉर्मल प्राइस इज 449 रुपीज, प्रमोशनल प्राइस इज 329 रुपीज 95। सही जवाब बहुत सारे लोगों ने दिए, सही जवाब आई गेस सभी लोगों ने दिया है, लेकिन लकी ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा ना। तो लकी ड्रॉ में नाम किसका आया है? ये है जगह फ्रॉम कोहमोदिल। तो आपको कहेंगे कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है हमें। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको विनर्स की तरफ से 500 रुपीस का एक गिफ्ट वाउचर मिल रहा है जो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट आपको कॉल करेंगी और फिर सारी डिटेल्स आपसे लेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। चलिए इसी के साथ मस्ती जारी है क्योंकि ये है आपका अपना रेडियो मस्ती।

सो फ्रेंड्स, अगर आपके फ्रेंड सर्कल्स में या आपके फैमिली मेंबर में कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, डोंट फॉरगेट टू सेंड मी देयर फोन नंबर एंड नेम, ताकि हम उनको फोन करके उनको विश कर सके और उनको सरप्राइज कर सके. लुलो हाइपरमार्केट के साथ एक वाउचर मिल सकता है उनको.

0: अजी जादू तो अब हम करेंगे।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musty.
0: जैसा हमने कहा था कि लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि कोई फोन उठा ले और नहीं नहीं कोई फोन उठा ले तो हम उनको लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से कोई वाउचर दे दे। तो यहाँ पर फोन लग गया है और हम वेट कर रहे हैं कि कोई हमें हेलो कह दे और हम उनको हैप्पी बर्थडे विश कर दे। तो जैसा हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग सरप्राइज करना चाहते हो किसी को तो मेक श्योर कि आप ना उनका जो फोन नंबर है वो जरूर भेजिए। यहाँ पर मुझे कितने सारे मैसेजेस मिलते हैं, विदिता जी इनको सरप्राइज कर दो, इनको सरप्राइज कर दो, इनको कॉल कर दो, उनको कॉल कर दो। लेकिन क्या होता है कि आप लोग कॉल करने के लिए नंबर जो है ना वो नहीं डालते। जब हम किसी को फोन करते हैं हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए तो आपको क्या करना होता है, उनका नंबर जो है ना वो लिखना जरूरी होता है, वरना हम उनको कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हम अगर आपको फोन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम फिर से कोशिश करते हैं, हम जिनको कॉल करते हैं उनको उन्होंने फोन नहीं उठाया तो हम किसी और को फ़ोन करते हैं यहाँ पर एंड देखते हैं कि अगर वो हेलो कहते हैं तो ये जो वाउचर है लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से जाएगा उनके नाम। तो लेट्स वेट एंड देखते हैं, काश ये हेलो बोल दे भाई मेरे, बोल दे। चलो आप भी अगर चाहे तो रोज़ हम लोग ये जो बर्थडे सरप्राइज हैं करते हैं, आपको पता है लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से होता है एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ टू सेंड मी द नंबर। हेलो रोशन, हेलो हेलो रोशन, अच्छा ओके सो आई थिंक ही इज हियर। हेलो
3: हेलो
0: यस रोशन, गुड मॉर्निंग रोशन, गुड मॉर्निंग रोशन जी, नमस्ते।
3: क्या नमस्ते?
0: हाँ जी रोशन जी, कैसे हैं आप? रोशन जी कैसे हैं आप? रोशन जी क्या हो गया? अच्छा रोशन जी, अच्छा आप गाड़ी को थोड़ा कोने में रख लीजिए, आपके लिए एक मैसेज है।

0: रेडियो मस्ती।
1: सॉरी जी, हमने आपको साइड में करा दिया, मुझे पता है आपको काम पर जाने के लिए जल्दी होगी, तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने गाड़ी रोककर हमारे फ़ोन को आंसर किया, एंड सेकेंडली आपको हम हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, और आपको लूलू हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर मिल रहा है जो आपको आज नहीं तो कल कलेक्ट करना पड़ेगा आकर MBC अपने ID कार्ड के साथ। सो सॉरी फॉर स्टॉपिंग यू समवेयर, एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें जवाब दिया, हमारी कॉल को रिसीव किया। तो बस मैं आपको ज़्यादा रोकूंगी नहीं, पूरे रेडियो मस्ती की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे, एंड प्लीज़ डू कम टू MBC आज नहीं तो कल आप आ सकते हैं 9:30 से 3:30 के बीच में, आप अपने आईडी कार्ड के साथ कभी भी आकर अपना वाउचर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच रोशन जी,
2: बहुत धन्यवाद।
1: ओके, सेफ ड्राइविंग, थैंक यू, बाय।
2: RM2
3: रेडियो मस्ती

0: FM2.
1: Radio Musty.
0: On ajoute encore quelques millions à l'équation. Le Loto Plus affiche environ 13 millions de roupies et le Loto, lui, atteint 45 millions de roupies. 45 millions de roupies au Loto. Difficile de ne pas y penser. Mais pendant que les jackpots montent, une autre chose, elle se fait de plus en plus rare, l'eau. Alors, évitons le gaspillage.
2: Ceci est un communiqué de l'Autotech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
0: Sean, live in Mauritius. Saturday, 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Sean concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
3: जब तू गाड़ी चलावे ला का तू जाने ला कि आगे का होई सकी एगो दुर्घटना लोटो अपान होई सकी ई सब कुछ सीमा पर होईते रहेला पर ई सब मुश्किल घड़ी के सामना अकेले नहीं करे के चाहे सिकोब के संगे तोहरा कोनो चिंता नहीं करे के है काहे कि हमनी के लासिरांस तोहर ख्याल रखेला टोइंग की सुविधा एगो लोटो ऑप्लास्मो जब लोटो बनता सहायता या एगो सुझाव सब कुछ खातिर हमनी तोहर संगे है जा और दूसर नुकसान जैसे तूफान बाढ़ आग मूसलाधार पानी या जे आप अपन लोटो के चाबी भी गवा देला सिकोब ड्राइव स्मार्ट सब कुछ के बारे में सोच ले बाटी जस्ती जानकारी हमनी के वेबसाइट sicom.mu पर पाई सकब इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
4: सिकोम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट
5: A September to remember chez Your Dream Motors. Nous réunis avec nos 4e édition. Oui, vous pouvez bien attendez. Nos plus grandes promotions pour l'année 2026 commencent jeudi 3 septembre jusqu'à dimanche 6 septembre. Pour une amas gros discount, le tout nous bat le tout. Que Your Dream Motors nous croit qu'il sac d'immune mérite rouler ce le tout de rêve. Peu importe qui au budget et préférence. Ou péro d'un SUV, un petit loto, un 4x4, voiture de luxe, ban plug-in hybrid ou même 100% électrique, nous énas Zis tout, des 9h jusqu'à 5h30, les 3 septembre au 6 septembre. Top 10 avant le prix imbattable. Côté Audrey Motos nous fait ouvrir une réalité. Royal Road Mocha, 55 32 86 12, 55 05 86 12 et 433 80 26. Pas oublier, suivez-nous sur Facebook et TikTok.
0: RM2
1: Radio Musty.

0: ऑलराइट गाइस, अरविंद रेडी हो गए हैं स्पोर्ट्स अपडेट के साथ. चलिए उनसे मिलने का मौका हमें मिला है, तो मौका कैसे छोड़े.
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट.
2: स्पोर्ट्स न्यूज,
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
0: Hello Arvind, a very good morning to you.
4: Good morning aapko. Good morning RM2 listeners. The latest from the sports world. Premier League mein fir se naya transfer record bana. Is transfer bazaar mein total 3.4 billion pound sterling ka karobar hua, 3.4 billion pound sterling. Deadline day mein Manchester City ne British record ki barabari ki 125 million pound sterling par, 125 million pound sterling par Enzo Fernandez ko sign kiya gaya Chelsea se. Isse pehle Manchester City ne Everton se Liman Ndiaye ko sign kiya 60 million pound sterling par. Transfer bazaar ka aakhri din deadline day mein total 475 million 475 million pound sterling ka karobar hua. Chelsea मोनाको से कमारा को साइन करना चाहता था, पर अंतिम मिनट में मोनाको ने ट्रांसफर रोका. लिवरपूल ने 18 साल के गोलकीपर लुका ब्रुगमांस को साइन किया बेल्जियम की गेंक टीम से. 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर सौदा हुआ. ब्रुगमांस इस सीजन लोन पर अपने क्लब में ही रहेगा, अगले सीजन लिवरपूल में आएगा. न्यूकासल यूनाइटेड ने लील से स्ट्राइकर माथियास फर्नांडिस पौडो को साइन किया, दाम 51 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग. कुछ प्रमुख ट्रांसफर डेडलाइन डे में जैक ग्रिलिश मैनचेस्टर सिटी से एवर्टन में आया लोन. टोसिन अदराबिया चेल्सी से टोटनहम हॉटस्पर में. इब्राहिम एम्बाई पेरिस सैन जर्मेन से एस्टन विला में. आर्वे एलियट लिवरपूल से वेलेंशिया में लोन पर. सो गाकपो लिवरपूल में ही रहेगा. खबर है लिवरपूल चेल्सी से राइट बैक मालो गुस्तो को साइन करना चाहता था फ्रांस का लोन पर चेल्सी परमानेंट ट्रांसफर चाहता था, इसलिए चेल्सी नहीं ये ट्रांसफर नहीं हो पाया. और चेल्सी बोर्नमुथ के मिडफील्डर एलेक्स स्कॉट को खरीदना चाहता था, पर बोर्नमुथ ने इनकार किया. मैनचेस्टर यूनाइटेड भी कारोबार करना चाहता था. मैनचेस्टर सिटी के फुलबैक एट नूरी को साइन करना चाहता था, पर डील नहीं हो पाई. यूनाइटेड ने लेस्टर सिटी के युवा खिलाड़ी पेज को भी साइन करना चाहा, पर डील नहीं हो पाई. इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में कल कई मैच खेले गए. लिंकन 0 ब्लैकबर्न 0 पोर्टसमुथ 0 डर्बी 2 प्रेस्टन नोफ एंड 1 ब्रिस्टल सिटी 3 शेफील्ड यूनाइटेड 3 बोल्टन 2 स्वांसी 2 वाटफोर्ड 0 वेस्ट हैम ने वुल्व्स को 4-2 से हराया. बर्मिंगहम 1 साउथहैम्पटन 1 स्टोक सिटी 1 नोविच 0 यूईएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग के क्वालिफाइंग में ऑस्ट्रिया वेन 4-0 जर्मन कप में एचईबीसी 0 बोरुशा डॉर्टमुंड 5 और कोपा इटालिया के दूसरे राउंड में पाओमा 0 क्रिमोनेजे 2 टोरिनो 0 मोन्जा 1. सऊदी प्रो लीग में ओली वाटकिंस अपने पहले मैच में ही स्कोर कर पाया. अल हिलाल ने 3-0 से अल अली को हराया. 51 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर अल हिलाल ने वाटकिंस को साइन किया था एस्टन विला से. टेनिस यूएस ओपन में कल मैडिसन कीज टेलर फ्रिट्स बेन शेल्टन नाओमी ओसाका फ्लावियो कुबोली मीरा आंद्रीवा इगा श्वातिक चियाफोई रिबाकिना मुसेती आलिया सीमे पोतापोवा मेंसिच आदि जीत पाए. आज कोको गोफ क्वालिफाई हुई, गैल मोफिस भी जीत पाया. और क्रिकेट में इस महीने टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच खेले जाएंगे. जसप्रीत बुमराह टीम में वापस आ रहा है. वैभव सूर्यवंशी भी टीम में है. अब इस सभी मैच दिल्ली में खेले जाएंगे. सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. आई विल कैच यू अगेन. टिल देन हैव अ वंडरफुल टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती. टेक केयर. बाय बाय.
0: थैंक यू सो मच अरविंद.
1: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट.
5: Gentlemen, this is your captain speaking.
6: Radio Mastery.
5: स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

थैंक यू सो मच गाइज, यू आर लिस्निंग टू रेडियो मस्ती, आप दे रहे हैं वेदिता का साथ। तो चलिए रेडी हो जाइए, थोड़ी देर में एक और गेम के साथ मिलते हैं।

0: RM2
1: Radio Musty.
2: Une envie de McDonald's là tout de suite, mais pas envie de bouger. Pas gagné de tracas. Fais appel à McDelivery. Ton burger préféré, tes frites bien chaudes et ta boisson fraîche livrée directement chez toi grâce à Deliveroo et Odemanger. À midi, le soir, n'importe quand l'estomac a grogné, n'est commandé, noir méné. Et en ce moment, profite de la livraison gratuite. Plus d'infos sur notre site web. McDelivery, pas bouger, nous vini.
3: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: RM2
1: Radio Musty.
0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
4: चलो जी, यहाँ पर अब समय हो गया है एक और गेम का. खेलेंगे आपके साथ हम गेम और देखते हैं किसका आएगा नेम हमारे इस लकी ड्रॉ के बाद. सो गाइस, मेक श्योर कि आप लोग हमारे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और फिर उसके बाद आप हमें सही जवाब दीजिएगा ऑन 5491294. अगर मैं आपसे कहूँ इस समय गाड़ी तो नहीं चला रहे हो ना? हाँ, नहीं चला रहे हो तो ठीक है. तो ऐसा करते हैं, जब हम बात करते हैं एक ऐसे सिंगर की जिसकी आवाज़ हम आँखें बंद करके भी फील कर सकते हैं. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली शान, जो अपने स्मूथ, सोफुल और वर्सटाइल वॉइस के लिए जाने जाते हैं. एंड मैं आपको बताऊं कि अभी जीतने वाले को, जी हाँ, जो हमारे साथ अभी पार्टिसिपेट करेंगे, उनको मिल सकता है इनाम और उनको मिल सकता है एक टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेकुलर शान लाइव कॉन्सर्ट. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक प्लैटिनम टिकट है और ये प्लैटिनम टिकट उनको मिल सकता है जो हमारे यानी कि खेल सकता है रेडियो मस्ती के साथ. And the game is powered by ticketbox.mu. और ये जो कॉन्सर्ट है होने वाला है 5th of September को, as from 8 PM, proudly organized by ticketbox.mu. तो चलिए, यहाँ पर आपके लिए जो सवाल है वो हम लेकर आए हैं. ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल और ध्यान से दीजिएगा जवाब. राइट गाइज, और जितने लोगों को मिल चुका है तो प्लीज़ आप औरों को भी मौका दीजिए, क्योंकि जब एक साथ इतने सारे मैसेज आने लगते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है लकी ड्रॉ करने के लिए. तो जिनको मिल गया है प्लीज आप बाकी लोगों को भी मौका दीजिए इनाम जीतने का. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो सवाल हैं उसके चलते, जी हाँ, मेरा सवाल इधर ही है, डोंट वरी, मैं लेके आ रही हूँ. ऑलराइट, तो चलिए, यहाँ पर आप मुझे ये बताइएगा, जी हाँ, आप मुझे ये बताइएगा कि डू टिकट बॉक्स डॉट एम यू गिफ्ट कार्ड्स एक्सपायर, डू टिकट बॉक्स एम यू गिफ्ट कार्ड्स एक्सपायर, इज इट ए येस आफ्टर 6 months, इज इट येस आफ्टर 3 years, या सी नो दे नेवर एक्सपायर. तो जल्दी से आप मुझे अपने जवाब भेजिएगा ऑन 5491294. डू टिकट बॉक्स डॉट एम यू गिफ्ट कार्ड्स एक्सपायर, यहाँ आफ्टर 6 महीने, या तो फिर हाँ आफ्टर 3 years, और नो वो कभी एक्सपायर नहीं होते. जल्दी करो, जवाब भेजो ऑन 5491294.

हमारा लकी ड्रॉ हो गया है और हमने आपसे सवाल पूछा था. हमने पूछा डू टिकट बॉक्स डीएमयू गिफ्ट कार्ड्स एक्सपायर, इज इट यस आफ्टर 6 मंथ्स, इज इट यस आफ्टर 3 इयर्स और नो दे नेवर एक्सपायर. द राइट आंसर इज सी, नो दे नेवर एक्सपायर. और यहां पर सही जवाब देकर विनर कौन बने हैं चलिए भी जान लेते हैं. सो यू आर लिसनिंग द ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द वॉइस ऑफ शान. और यहां पर आशती बिहारी जो रहती है खरपके, उन्होंने दिया है सही जवाब. सो कंग्रेचुलेशंस, आपको मिल रहा है ये एक टिकट जिसके चलते आप जाकर शान का जो कॉन्सर्ट है उसको एंजॉय कर सकते हैं. इट्स अ प्लैटिनम टिकट. यू कैन असिस्ट दिस स्पेक्टेकुलर शान लाइव कॉन्सर्ट. वन वॉइस, वन स्टेज, वन अनफॉर्गेटेबल नाइट. एंड ये हो रहा है SBICCPI 5th September आज फ्रॉम 8 PM प्राउडली ऑर्गेनाइज बाय ticketbox.mu. और चलिए शान के अलग अलग गाने आपको सुनने को मिलेंगे और इट्स गोना बी अ मेसमराइजिंग इवनिंग विद द वन एंड ओनली शान. तो चलिए इसी के साथ बढ़ते अब हम 8 बजे के समाचारों की ओर थोड़ी देर में और फिर उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर हो रही है आप ही के प्रोग्राम में जिसका नाम है मॉर्निंग बीट ऑन रेडियो मस्ती.

0: Welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Namaste aur salam. Fajr ke 8 bajalba. Awaja samachar sunaja. कल रात राष्ट्रीय सभा में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल के पारित करल कर रहल बाते सड़क सुरक्षा के जस्ती मजबूर करे करने के लिए रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल के पेश करल कर रहल मंत्री उस्मान मोहम्मद बोलन की ई कानून के जरिए एगो ठोस और साफ पैगाम देवता खास तौर पर शराब और ड्रग नोशी करे होला गाड़ी चालक के नवा कानून के तहत जुर्म खातिर गाड़ी भी जब्त करल जाल बाते प्रधानमंत्री बोलन की ई कानून के पहला मकसद जुर्माना के पैसे के जमा करे या फिर गाड़ी के जब्त करे के नई बातें नागरिक के जिंदगी बचाना मकसद बाते डॉक्टर नवीन राम गुलाम बोलन बा की ई एगो बुनियादी जिम्मेदारी है राष्ट्रसभा के कार्य अब 20 अक्टूबर 2026 के लगावल जाला हई बरिस के पहला 6 महीना के दौरान निर्यात के सतह पर नीमन नतीजा दर्ज होल बाते लेकिन दूसर पहलू के भी मद्देनजर रखल जाल बाते मुर्शस एक्सपोर्ट एसोसिएशन मिग्जा के मुताबिक 0.2% के बढ़ोतरी नोट कर गल बाते 54 बिलियन रुपए के कारोबार होल बाते हर साल की तरह हजारों मुर्शन 8 सितंबर के सैंत क्वामी फौदर लावाल के मकबरे पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करल जाए ऊ राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और गरीब के मसीहा रहलन बाते हई बरिस से ई तीर्थ यात्रा का विषय औसामाविक पेलावाल पॉइंट सोसाइटी प्लीजी सिख फाते अनिल बाते विदेश में अमेरिकी ताकत काल ईरान पर हमला फिनों से शुरू कर देवल कर रहल बाते अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेटकम कहेला कि अब नए हुरमूज में तिजारती शिपिंग के खिलाफ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को के हालिया हमला के कोशिश के जवाब में अमेरिका ई कदम उठावेला तो ई रहर समाचार नमस्ते और सलाम
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
3: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: भाई सुबह सुबह तो गर्मा गर्म चाय और कॉफी मिल जाए ना तो वाह क्या बात है। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या मैजिक है इस चाय में। हाँ आज मुझे लग रहा है कि चाय में कुछ ज़्यादा अदरक अगर या तो फिर कुछ ज़्यादा इलायची आ जाए तो बस हैप्पीनेस डबल हो जाती है ना। जब मम्मी ज़्यादा खुश होती है तो इलायची एक ज़्यादा

0: के साथ। आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह घने बादल होंगे, दोपहर बाद सेंट्रल प्लाटो और हवाई ढलानों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर हल्की बारिश होगी। आज रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और सेंट्रल प्लाटो तथा पूर्व के एक हिस्से में रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासतौर पर पूर्व और दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 20 से 23, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:17 पर और आज शाम को 6:01 पर सूरज ढल जाएगा।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Masti.
3: L'affaire Bilbil Kadji retourne Côte Winners.
4: Bilbil Kadji de retour Côte Winners. Du mercredi 2 septembre au vendredi 4 septembre, le gel douche Tahiti de 250 ml à 133,95 roupies. Et uniquement le mercredi 2 septembre, le set de contenant alimentaire de 7 pièces à 199,95 roupies. Un acheté, un offert. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
5: On est tous winners!
2: RM2
1: Radio Musty.
2: Feel the Musty.

चलो भाई, जब आपको पता है हम टाइम लेते हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ आपके लिए लेकर आए हैं। और अभी हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? वेल, हम लेकर आए हैं आपके लिए 1 entry ticket फॉर अ कॉन्सर्ट। जी हाँ, ये कॉन्सर्ट होने वाला है 4 September को। और ये कौन सा कॉन्सर्ट है भाई? 4 के साथ साथ 6 September को भी एक कॉन्सर्ट होने वाला है, और इसे लेकर आ रहे हैं हम मीडिया की तरफ से। आपको मिल रहा है एक टिकट, तो आपको करना क्या है, मेरे सवाल का जवाब देना होगा। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा कॉन्सर्ट है, तो मैं आपको बताऊं कि मीडिया लेकर आए हैं आपके लिए टू मॉरिशस मुख्तार शाह, द वॉइस ऑफ मुकेश। जी हाँ, कभी कभी होता है कि वी जस्ट गेट लकी कि जो हमारे सिंगर्स हैं, जो हमें छोड़ गए हैं, उनसे मिलती जुलती आवाज़ कहीं ना कहीं हमें सुनाई देती है, और हमें लगता है कि भाई काश कुछ और गाने हमें सुनने को मिलते, लाइव हमें उनको देखने को मिलता। तो कुछ लोगों का सपना सच होगा अगर आप मुकेश साहब के बड़े फैन हैं। तो यहाँ पर मुख्तार शाह जो है वो कहा जाता है ही इज़ द वॉइस ऑफ मुकेश। ही इज़ द वॉइस ऑफ मुकेश। कहीं कहीं पे होता है कि सम एक्टर्स आर द फेस ऑफ द सिंगर्स, तो यहाँ पर आपको मुख्तार शाह की आवाज़ जैसे सुनाई देगी, उनकी आवाज़ गूंजेगी। और ये होगा 4 Friday 4th of September को, और साथ में Sunday 6th of September को अटकोदा आर्ट सेंटर। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सिंगर हैं मुख्तार शाह, ही इज़ फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात, और इंडिया में इनकी जो आवाज़ है गूंजती रहती है, बहुत फेमस है अपने मुकेश लाइक वॉइस के चलते। और ये परफॉर्म करने वाले हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने, एंड इट्स गोना बी अ ट्रीट फॉर ऑल द मॉरिशियंस। और जो इंडियन सिनेमा के मास्टर पीसेज हैं, मुकेश साहब के गाने हैं 50s, 60s या 70s के, वो आपको मौका मिलेगा सुनने का। एंड हमारे जो रिप्यूटेड मॉरिशियन को सिंगर्स

वर्षा रानी भी सिसर, विशाल मंगरू उनके साथ गाएंगे और he will be accompanied by our finest musicians under the musical direction of Vijay Munisamy. तो MBC is inviting you to participate and win tickets for the show. अब यहाँ पर आपके लिए सवाल क्या होगा? देखो भाई, मुकेश साहब के इतने सारे गाने हैं, उनमें से एक गाना है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, ये गाना ओरिजिनल नहीं है. एक गाना मुकेश साहब ने गाया है, आपको मुझे बताना है कि वो फिल्म कौन सी है. ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे बताइएगा कि ये जो गाना है इसका ओरिजिनल गाना कहाँ से आया है.

0: भाई गाना तो आपने सुन लिया, लेकिन इसका ओरिजिनल मैं सुनाऊंगी आपको। पहले विनर का नाम तो बोल दूं मैं, कौन है विनर?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपने जो गाना सुना, आप सोच रहे होंगे कि भाई काश इसका ओरिजिनल वर्जन आपने चला दिया होता, चला देते तो आपको पता चल जाता था कि कौन सी मूवी का गाना है। एक्चुअली द राइट आंसर इज श्योर, और इसमें लता जी ने उनके साथ गाना गाया है। मुकेश साहब के गीतों में एक मेरा ये फेवरेट है, और मैं जानती हूँ ये आप लोगों का भी फेवरेट गाना हो सकता है। एंड जब भी ये गाना चलता है, कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है। ये नहीं कहूँगे कुछ कुछ होता है, कुछ ज़रूर होता है। चलिए, तो पर हमें बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। अब विनर कौन बने हैं ये भी मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए थोड़ा सा कोइंसिडेंस हो गया। यहाँ पर सही जवाब तो सबने दिया, लेकिन नाम आया है मिस्टर मुकेश मंगल का, और आप रहते हैं क्यूपी। कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एंड मैं आपको बताऊं, आपको मिल रहा है एक टिकट टू असिस्ट दी कॉन्सर्ट जो होने वाला है फ्राइडे 4 सितंबर को, और एक होगा संडे 6 ऑफ सितंबर को एट कोडा ऑर्थ सेंटर। तो यहाँ पर मुख्तार शाह जो मुकेश जी की आवाज़ में गाना गाते हैं, और इनके साथ हमारे को सिंगर्स होंगे वर्षा रानी, बीसी सरन, विशाल मंगरू। याद रखिए कि म्यूजिक विजय मुनि स्वामी जी जो है इनके डायरेक्शन में होगी, और आपको यहाँ पर एमबीसी के साथ खेला आपने, आपको टिकट मिल रहा है। ये एक टिकट, आप जाकर वहाँ पर गाने सुन सकते हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ या दोस्त दोस्त ना रहा। सो कंग्रेचुलेशन टू यू, आपको आकर एमबीसी अपना टिकट ले जाना पड़ेगा अपने आईडी कार्ड के साथ, और ये होगा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, यानी कि आपके पास अभी आज नहीं तो कल का भी टाइम है, परसों का भी। आप आकर प्लीज़ अपना टिकट जो है

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: एक इंसान का मूड हमेशा एक जैसा नहीं होता, हमेशा वो मुस्कुराता नहीं है। कभी कभी सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं जहां पे लोग परेशानी में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, पर हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है। बस नजरिया ऐसे रखो जो प्रॉब्लम के पीछे अपॉर्चुनिटी और डार्कनेस के बीच लाइट देख सके। लाइफ में हर चीज परफेक्ट नहीं होती और हर सिचुएशन इमिडिएटली अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन अगर हम थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करें तो डिफिकल्टीज में भी लर्निंग, ग्रोथ, स्ट्रेंथ और नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। राजीखिया, जो चीज आपके हिसाब से रॉन्ग हो रहा है उसमें भी एक लेसन हो सकता है। हर इंसान में एक अच्छी क्वालिटी और हर दिन में एक ब्यूटीफुल मोमेंट और हर चैलेंज में एक हिडन अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करो। Focus on what is good, not because everything is good, but because there is always something good to find. हमेशा कुछ ना कुछ होगा। और ये भी मत सोचिए कि अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिली तो मैं उसके काबिल नहीं हूँ। हो सकता है वो चीज़ आपके काबिल ना हो सकता है उनकी दोस्ती आपके काबिल ना हो सकता है उन लोगों का प्यार आपके काबिल ना हो, या हो सकता है कि वो नौकरी आपके काबिल ना हो। तो अपने आप को कोसना बंद करो, अपने आप को नीचा दिखाना बंद करो, अपने आप को हमेशा हाई लेवल पे रखो और फिर देखो अच्छी अच्छी चीजें कैसे लाइफ में आती हैं।

0: विदिता का साथ दे रहे हैं आप लोग। चलिए इट्स 8:35 और आज जितने भी लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। प्लीज डू सेंड मी योर मैसेजेस ऑन 549 and 1294, स्पेशली इफ यू आर ड्राइविंग, बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग एंड हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट, अभी अरविंद फिर हमारे बीच आ गए हैं लेकर अपने स्पोर्ट्स अपडेट। अगर आपने मिस कर दिया तो चलिए जानते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है।
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
0: Once again, a very good morning, Arvind.
3: Good morning, Apko. Good morning, RM2 listeners. The latest from the sports world. Premier League में फिर से नया transfer record बना। इस transfer बाजार में total 3.4 billion pound sterling का कारोबार हुआ, 3.4 billion pound sterling. डेडलाइन डे में मैनचेस्टर सिटी ने ब्रिटिश रिकॉर्ड की बराबरी की 125 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर, 125 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर एंजो फर्नांडेस को साइन किया गया चेल्सी से। इससे पहले मैनचेस्टर सिटी ने एवर्टन से लिमान एंजाय को साइन किया 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर। ट्रांसफर बाजार का आखिरी दिन डेडलाइन डे में टोटल 475 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का कारोबार हुआ। चेल्सी मोनाको से कमारा को साइन करना चाहता था पर अंतिम मिनट में मोनाको ने ट्रांसफर रोका। लिवरपूल ने 18 साल के गोलकीपर लुका ब्रुगमान्स को साइन किया बेल्जियम की गेंक टीम से।

0: 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर सौदा हुआ। ब्रुगमांस इस सीजन लोन पर अपने क्लब में ही रहेगा, अगले सीजन लिवरपूल में आएगा। न्यूकासल यूनाइटेड ने लील से स्ट्राइकर माचियास फर्नांडिस पौडो को साइन किया, दाम 51 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। कुछ प्रमुख ट्रांसफर डेडलाइन डे में जैक ग्रिलिश मैनचेस्टर सिटी से एवर्टन में आया लोन, तोसिन अदराबिया चेल्सी से टोटनहम हॉटस्पर में, इब्राहिम एम्बाए पेरिस सेंट जर्मेन से एस्टन विला में, हार्वे एलियट लिवरपूल से वेलेंशिया में लोन पर। सो गाकपो लिवरपूल में ही रहेगा। खबर है लिवरपूल चेल्सी से राइट बैक मालो गुस्तो को साइन करना चाहता था, फ्रांस का लोन पर चेल्सी परमानेंट ट्रांसफर चाहता था, इसलिए चेल्सी नहीं ये ट्रांसफर नहीं हो पाया। और चेल्सी बोर्नमुथ के मिडफील्डर अलेक्स स्कॉट को खरीदना चाहता था पर बोर्नमुथ ने इनकार किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी कारोबार करना चाहता था, मैनचेस्टर सिटी के फुल बैक एक नूरी को साइन करना चाहता था पर डील नहीं हो पाई। यूनाइटेड ने लेस्टर सिटी के युवा खिलाड़ी पेज को भी साइन करना चाहा पर डील नहीं हो पाई। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में कल कई मैच खेले गए। लिंकन 0 ब्लैकबर्न 0 पोर्टसमूथ 0 डर्बी 2 प्रेस्टन नोफ एंड 1 ब्रिस्टल सिटी 3 शेफील्ड यूनाइटेड 3 बोल्टन 2 स्वानसी 2 वाटफोर्ड 0 वेस्ट हैम ने वुल्व्स को 4-2 से हराया। बर्मिंगहम 1 साउथहैम्पटन 1 स्टोक सिटी 1 नोविच 0 यूईएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग के क्वालिफाइंग में ऑस्ट्रिया वेन 4-0 जर्मन कप में एचईबीसी 0 बोरुशिया डॉर्टमुंड 5 और कोपा इटालिया के दूसरे राउंड में पाओमा 0 क्रिमोनेजे 2 टोरिनो 0 मोन्जा 1। सऊदी प्रो लीग में ओली वाटकिंस अपने पहले मैच में ही स्कोर कर पाया, अल हिलाल ने 3-0 से अल आली को हराया। 51 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर अल हिलाल ने वाटकिंस को साइन किया था एस्टन विला से। टेनिस यूएस ओपन में कल मैडिसन कीज टेलर फ्रिट्स बेन शेल्टन नाओमी ओसाका फ्लावियो कुबोली मीरा आंद्रीवा इगा श्वातिक चियाफोए रिबाकीना मुसेती आलिया सीमे पोतापोवा मेंसिच आदि जीत पाए। आज कोको गोफ क्वालिफाई हुई, गैल मोफिस भी जीत पाया। और क्रिकेट में इस महीने टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच खेले जाएंगे। जसप्रीत बुमराह टीम में वापस आ रहा है, वैभव सूर्यवंशी भी टीम में है। अब इस सभी मैच दिल्ली में खेले जाएंगे। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन हैव अ वंडरफुल टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती। टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू अरविंद।
2: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: जी हाँ बिल्कुल, हम पहुंच गए हैं मिड वीक तक, यानी आज 1st of September. हाय गाइस, वेलकम. इसी के साथ कुछ विशेष भी आए हैं. सो अंकुश शाह कवि को शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं. उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है आज. तो उनके मम्मी पापा, उनकी बहन, उनके जीजू, उनके भाई और उनकी भाभी की तरफ से, पूरे जीतन फैमिली की ओर से विशिंग यू लॉट्स ऑफ लव. एंड चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना हम आप लोगों के नाम डेडिकेट करेंगे, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं, जिनका काला चश्मा अभी भी लगा हुआ है, भले ही बारिश होती है, स्टाइल मारते हैं, चलो कोई नहीं, निकालने की जरूरत नहीं है, दिखना है ना, दिखना है तो चलता है.
1: RM2
3: Radio Musti.
1: Feel the musti.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलो भाई रेडियो मस्ती को अपने दिल में जगह देने के लिए थैंक यू सो मच। आज जो भाई हम गाने बजाने में और मस्ती करने के मूड में हैं और वैसे भी आज वेडनेसडे है तो चलिए यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त हैं हमारे साथ दे रहे हैं गुड मॉर्निंग टू यू। और अगर आज आपकी मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी नहीं हुई होगी तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे गीतों के साथ आपका मूड बदल गया होगा। आपके चेहरे पर बहुत खूबसूरत सी स्माइल मैं देख रही हूँ। अगर नहीं है तो बहुत ईजी होता है, बस लिप्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करना होता है। आप कोशिश कीजिए अपने लिप्स को स्ट्रेच करने की। हाँ भरे कोई बात नहीं, गुस्सा भी आ रहा तो कर लो, कोशिश करो, देखा निकल गई ना हंसी, ऐसी होती है खुशी। खुशी के पीछे जितना भागोगे वो खुशियाँ आपके उतने पीतना भागेगी। जब आप खुद खुश रहना शुरू कर दोगे ना तो सारी खुशियाँ आपके दामन में लिपट जाती है। इसीलिए पहले तो खुद को खुश करना शुरू करो, फिर उसके बाद देखिए कि खुशियाँ कैसे आपके पास झूम के आती हैं, घूम के आती हैं, और कभी कभी तो ये गीतों के साथ भी आती है।
0: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलिए जी, हमारे जाने का टाइम हो गया है और इसी के साथ अगला गाना आपको नजर करते हैं। और ये अगला गाना जो है हमें लेके जा रहा है 9 बजे के समाचारों की ओर। फिर परी आ रही है साथ देने के लिए। आपने प्यार से साथ दिया, थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो मॉर्निंग एट 7।

0: समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं सुमेरा, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सुमेरा।
1: नमस्कार रादाब, सभी को मेरा नमस्कार। और आदाब, कर राष्ट्रीय सभा में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल को पारित किया गया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि ये जुर्माना का पैसा जमा करने ना ही गाड़ी जब्त करने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों की हिफाजत और ज़िंदगी को बचाने के लिए ये कानून लागू किया गया है। इस नए कानून का मकसद ये है कि ड्रग नोश खासतौर पर और शराब नोशी की हालत में गाड़ी चलाने वालों को एक सख्त पैगाम देना है और सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाएगी। देश में 500 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें 634 बिलियन रुपए निवेश किए गए हैं। इन परियोजनाओं के मुकम्मल होने पर 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी मिलेगी। कल प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख किया। आपको बता दें कि राष्ट्रसभा के कार्य रात 7:30 बजे खत्म हुए हैं और 20 अक्टूबर को राष्ट्रसभा के कार्य फिर से लगेंगे। हर साल की तरह हजारों मुर्शन 8 सितंबर को सेंट क्वामी फौजलाबाद के मकबरे पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और गरीबों का मसीहा थे। इस साल इस तीर्थ यात्रा का विषय औसाम अवेक पेयर लावाल पुएंट सोसाइटी प्लीजी से फ्रैटर्नल है। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान आयोजक कमेटी से पादरी पैट्रिक पोलिडोहा ने उल्लेख किया कि ये विषय पोर्टलुई के बिशप के संदेश से प्रेरित है। मोसिया जॉन मिकाइल जोन एक न्यायपूर्वक मुर्शस की इच्छा रखते हैं जिसमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाता है। विदेश में अमेरिकी ताकतों ने कल से ईरान पर हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि

नए हुरमुज में तिजारती शिपिंग के खिलाफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को के हालिया हमलों की कोशिश के जवाब में अमेरिका ने ये कदम उठाया। ईरान के रेड क्रेसेंट के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है जिनमें एक बच्चा शामिल था, 50 से ज़ायद लोग घायल हुए। अमेरिका का मिसाइल ईरान के दक्षिण में घर की तरफ दागा गया जहां एक शादी समारोह चल रहा था। जवाब में ईरान ने इराक और जोर्डान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भी हमले किए। कुवैत और बहरीन में भी हमलों की रिपोर्ट है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार राधा।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: सो वेल फ्रेंड्स, टाइम फॉर योर मस्ती मॉर्निंग्स. वैसे तो हर एक मॉर्निंग खास और स्पेशल होती है, लेकिन आज है वेनसडे मॉर्निंग, यानी कि मिड वीक तक हम पहुंच चुके हैं और जो लाइफ की जेस्ट है इसे तो हम जीते रहेंगे, लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते रहेंगे और हर पल को स्पेशल बनाते रहेंगे. अभी के लिए वार्म वेलकम, मैं हूं परी आपके साथ. सुबह के 9:08 2nd of September. सितंबर का महीना शुरू हो गया है और जैसे हमने कल कहा था, बस यही उम्मीद के साथ कि ये महीना सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए. और गुड विशेस तो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं विद सम गुड म्यूजिक. सोबी के लिए मैं हूं परी आपके साथ. दिन के 12 बजे तक मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं. लेकर आए हैं आपके लिए बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती. RM2 रेडियो

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: And well friends, Musty Morning, time to play a game आपके साथ सुबह के 9:17 जहां पर आप खेले RM2 Radio मस्ती के साथ जीत सकते हैं 1 entry ticket for the concert on 4th of September offered by Immedia. So आपको बता दें Immedia लेकर आ रहे हैं Mauritius मुख्तार शाह, Voice of मुकेश,

0: शोज होने वाले हैं. एक होगा ऑन फ्राइडे 4th of September, दूसरा होगा संडे 6th of September एट कोडो आर्ट सेंटर. और अगर आप इस कॉन्सर्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, वी आर गोइंग टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. मुकेश साहब, द लेजेंडरी सिंगर ऑफ बॉलीवुड, आपको हमें बताना है. वैसे तो हम उन्हें जानते हैं मुकेश के नाम से, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है, उनका नाम, उनकी सरनेम, पूरा नाम हमें बताइए ऑन 5499-1294 पर. आपके सही जवाब पूरे नाम और पते के साथ. यहाँ पर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन, बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर मुकेश साहब, उनका फुल नेम क्या है. राइट आंसर्स इंतजार हो रहा है ऑन 5499-1294. ऑल द वेरी बेस्ट. You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings.
1: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: तो वेल यहाँ पर सिंपल सा सवाल था आपके लिए मुकेश साहब द लेजेंडरी सिंगर ऑफ बॉलीवुड उनका पूरा नाम क्या है राइट आंसर मुकेश चंद माथुर दैट्स द राइट आंसर यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब लकी ड्रॉ के बाद द फैजा इमाम बकुस आप है कौन जवाब से आपने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब कांग्रेचुलेशंस सो वेल फैजा खेला आपने आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ और एम मीडिया की ओर से आपने जीती है

0: one entry ticket for the concert on 4th of September 2026. In media lekar aa rahe hain Mauritius Mukhtar Shah, the voice of Mukesh, for two shows jo honge on 4th of September and 6th of September respectively at Kodo Arts Center. Mukesh Shah ek singer hai from Ahmedabad, Gujarat aur India mein unki aawaz se wo kafi logo ko lubhate rahe hain. Mukhtar Shah will perform the timeless melodies of legendary singer and music lovers will be treated to unforgettable masterpieces of Indian cinema from 50s, 60s and 70s. साथ होंगे हमारे रेप्यूटेड मॉरिशन को सिंगर्स वर्षा रानी बसेसा, साथ में है विशाल मंगरू अलोंग साइड मुख्तार शाह, जहां पर फाइनेस्ट म्यूजिशियंस उनका साथ देंगे अंडर द म्यूजिकल डायरेक्शन ऑफ विजय मुनिसामी. एमबीसी आपको इनवाइट कर रहा है आपको इस शो को एंजॉय करने के लिए, और जहां पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको ये टिकट्स, लेकिन इसके लिए आपको शामिल होना है हमारे इस गेम में. सो वेल, अभी के लिए तो हमें मिल गए हमारे लकी विनर फैजा इमाम बोकस, आपने दिया है सही जवाब, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. चलिए सो यहाँ पर म्यूजिकल ट्रीट कंटिन्यूज आपके लिए ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती. मैं हूँ परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर योर मस्ती मॉर्निंग्स एंड फॉर नाउ टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन विद दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेडली फ्रॉम द फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी. एंजॉय दिस वन एंड एंजॉय योर मॉर्निंग रेडियो मस्ती के साथ.
1: घटा के संग संग

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यू ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

एंड वेल इसी गाने के बाद लेकर आएंगे आपका हॉरोस्कोप आपकी राशियां जानेंगे कैसा रहेगा आज का दिन परी का साथ एंड दैट्स योर मस्ती मॉर्निंग ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड विशिंग यू अ वंडरफुल वंडरफुल वेडनेसडे

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: सो वेल फ्रेंड्स, सुबह के 9:40 लेकर आए हैं आपका हॉरोस्कोप, आपकी राशियां। सो शुरुआत करते हैं वितेरीज मेष राशि। आज का दिन उपलब्धियों की नई कहानी लिख सकता है और लंबे समय से अटका कोई जरूरी काम आज आखिरकार पूरा होने से मन आज काफी खुश रहेगा। टॉरस ऋषभ राशि, दिन आपके लिए सामान्य नजर आ रहा है लेकिन इसके भीतर कई नए अवसर छिपे हो सकते हैं। नई नौकरी का कोई ऑफर आपको मिल सकता है और फिलहाल जिस नौकरी में आप टिके हुए हैं उसमें भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। जेमिनी मिथुन राशि, आज पैसों के लेन देन में थोड़ी सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, इसीलिए हर सौदा सोच समझ कर करें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात बीती यादों को एक बार फिर ताज़ा कर सकती है। कैंसर कर्क राशि, आज जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव दस्तक दे सकता है। संतान के व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी लेकिन धैर्य और प्यार से स्थिति को आप नियंत्रण में ला सकते हैं। लियो सी राशि, आज दिन भर भाग दौड़ और जिम्मेदारियां आपको व्यस्त रखेंगी लेकिन मेहनत का अच्छा परिणाम भी मिलेगा। कारोबार में नई पार्टनरशिप भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। वर्गो कन्या राशि, आज आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना। परिवार के बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान दें और उनकी जरूरतों को नजरअंदाज ना करें। साथ ही आज जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन्हें कोई गुड न्यूज, अच्छी खबर शाम होते होते मिल सकती है। लिब्रा तुला राशि, आज आर्थिक संतुलन बनाए रखिए और जितना कमा रहे हैं बस खर्चा जो है उसी के आसपास रखिए। ज्यादा खर्चा आपकी बजट को बिगाड़ सकता है। कमाई अच्छी हो सकती है लेकिन अगर खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो तनाव बढ़ सकता है। परिवार की निजी समस्याओं को सुलझाने की आप कोशिश करेंगे और इसमें आप सफल भी रहेंगे। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आज का दिन खुशी, मुलाकात और नए बदलावों की सौगात लेकर आएगा। दूर रहने वाले कोई प्रिय व्यक्ति अचानक मिलने से आज आपका मन काफी हैप्पी रहेगा और दिल को गहरा सुकून मिल सकता है। घर की सजावट, मरम्मत और रेनोवेशन पर खर्चा हो सकता है लेकिन साथ ही इससे घर का जो माहौल है काफी खुशनुमा रहेगा। सैजिटेरियस धनुराशि, आज तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं। कारोबार को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के मौके आपको मिलेंगे। बेहतर परिणाम मिल सकते हैं जो भी काम करेंगे आप उसमें, और दोस्तों के साथ बिताया समय मन को तनाव से दूर रखेगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आज आपकी प्रगति की रफ्तार तेज हो सकती है। आपकी मेहनत दूसरों को साफ नजर आएगी। हालांकि आपकी तेजी और सफलता कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आ सकती जिससे नए विरोधी आज बन सकते हैं। साथ ही आज जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लें उसे सोच समझ कर लें और हर फैसला आप अपने मन से नहीं बल्कि आपके दिमाग से लें। एक्वेरियस कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए सुकून, खुशी और

0: और पारिवारिक प्रेम लेकर आ सकता है। घर में एकता और पॉजिटिव माहौल बना रहेगा। संतान की परीक्षा का अच्छा परिणाम आपकी चिंता दूर कर सकता है। जीवन साथी को प्रमोशन मिलने से घर में गर्व और खुशी का माहौल बना रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसेस मीन राशि। आज छोटी सी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है, इसके लिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। कार्य क्षेत्र में किसी से बहस होने की संभावना है, इसीलिए गुस्से में कोई भी शब्द आप ना बोलें। अविवाहित लोगों की जिंदगी में प्यार की नई शुरुआत हो सकती है और कारोबार में किए गए सही निवेश भविष्य में आपको अच्छा लाभ दे सकते हैं। तो ये थी आज के लिए आपकी राशियां। विशिंग यू गुड लक एंड अ वंडरफुल डे अहेड।
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

0: So with this beautiful song, हम बढ़ने वाले हैं हमारे समाचारों की ओर. रियांश जिदन साथ दे रहे हैं आपको दिमाग पावे से. To wish Papa Dheeraj a very happy birthday. Best wishes coming from wife Pinky, उनकी बेटी हर्षा, बेटे हैं जेसविन एंड रियांश. और long life to Papa, उनके लिए बहुत सारा प्यार एंड special wishes. That's really sweet. So चलिए हम भी special wishes पहुंचा रहे हैं. And प्यारा सा गाना फॉर पोता अंश, आज एक साल के हुए हैं, उनके लिए शुभकामनाएं फ्रॉम दादा राज, दादी अनीता, पापा अंतिश, मामा मनीषा, बहन हमेशा, छोटे पापा अंकुश और छोटी मामा आशिमा, कजिन्स हैं आध्या और साथ में है नाना सुनील, नानी लता, मामू अंतिश, सभी प्रताप एंड राम किशन परिवार की ओर से प्यार एंड स्पेशल विशेज. अनीता जी फ्लिक एंड फ्लैग से पहुंचा रही हैं स्पेशल विशेज छोटे से प्यारे से अंश के नाम. सो गुड विशेज हमारे पूरे टीम की ओर से. You can find me in the club,
1: bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.
0: एंड वेल, इसी ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. लौट कर आएंगे 10 बजे के बाद इन योर मस्ती मॉर्निंग्स. परी का साथ दिन के 12 बजे तक. साथ देने के लिए शुक्रिया ऑन RM2 रेडियो मस्ती. ओह गॉड, वन मोर.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Time check, 10 a.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
5: नमस्कार राधा. पोटली में एक धार्मिक स्थल पर चोरी के मामले में 39 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. कल मेट्रो साउथ में सीआईडी टीम ने उसे गिरफ्तार किया और ये बताया जाता है कि वो सौ डोमिसाइल फिक्स है. उसे पोटली जिला अदालत में पेश किया गया और उसे पुलिस सेल में भेजा गया है. चोरी किए गए सामान को वापस लिया जा सका है. आपसा बैंकिंग ग्रुप ने विज्ञप्ति जारी की है. ग्राहकों से मोबाइल ऐप स्कैम से सावधान रहने की मांग की जा रही है. बैंक ये दरखास्त करता है कि किसी भी शक के लिए ग्राहकों को फौरन 402-1000 पर फोन करके बैंक से संपर्क करने की ज़रूरत है. कल राष्ट्रीय सभा में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल को पारित किया गया. परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने स्पष्ट किया कि इस कानून के जरिए एक ठोस और साफ पैगाम दिया जा रहा है, खासतौर पर शराब और ड्रग नोशी करते हुए गाड़ी चलाने वालों को. नए कानून के तहत इस जुर्म के लिए गाड़ी को भी जब्त किया जा सकता है. रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस कानून का पहला मकसद जुर्माना के पैसों को जमा करना या फिर गाड़ियों को जब्त करना नहीं बल्कि नागरिकों की जिंदगी बचाना है. डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने कहा कि ये एक बुनियादी जिम्मेदारी है. इस बिल के तहत सड़कों पर सभी तरह के जुर्मों के लिए सजा होगी, वो भी सख्त. पुलिस अफसरों के पास कैमरे भी होंगे. ये जाने की राष्ट्रसभा के कार्य अब 20 अक्टूबर 2026 को लगाए जाएंगे. इस साल के पहले 6 महीनों के दौरान निर्यात के सतह पर अच्छे नतीजे दर्ज हुए, लेकिन कुछ दूसरे पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए. मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन मेक्सा के मुताबिक 0.2% की बढ़ोतरी नोट की गई. 54 बिलियन रुपये का कारोबार हुआ है. विदेश में अमेरिकी ताकतों ने कल से ईरान पर हमले फिर से शुरू कर दिए हैं. अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि अब नए होर्मुज में तिजारती शिपिंग के खिलाफ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को

0: के हालिया हमलों की कोशिश के जवाब में अमेरिका ने यह कदम उठाया है। ईरान के रेड क्रेसेंट के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई, एक बच्चा शामिल था, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिका का मिसाल ईरान के दक्षिण में एक घर की तरफ दागा गया जहां एक शादी समारोह चल रहा था और जवाब में ईरान ने इराक और जोरदान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए। कुवैत और बहरीन में भी हमलों की रिपोर्ट है। तो अभी के लिए बस इतना ही, जाज दीजिए, नमस्कार, आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM2.
3: Radio Masti.
2: Feel the

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Oh yes friends, it's time for your Musty Mornings. वैसे क्या हाल चाल, सब कुछ ठीक ठाक उम्मीद करते हैं, everything is fit and fine. वैसे life में situations हमारे बस में कहाँ होती है, एकदम सुबह सवेरे कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है.

जिंदगी को हंस कर जीना, खुल कर जीना, ये तो हमें आता है, तो बस जिंदगी को एंजॉय करेंगे, सिचुएशंस चाहे कोई भी क्यों ना हो जिंदगी में हैप्पी रहेंगे। अभी के लिए साथ दे रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स सुबह के 10:09, मैं हूं परी आपके साथ। वेडनेसडे मॉर्निंग 2nd of September जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ, सो टू गेट यू इन द वेडनेसडे मूड वी हैव दिस वन, कुछ ब्यूटीफुल गानों के साथ आपका हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, बिकॉज ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती, जहाँ पर गुड म्यूजिक हमेशा आपका साथ देता है। बेस्ट पिक्स ऑफ म्यूजिक लेकर आते हैं मॉर्निंग से लेकर नाइट। फॉर नाउ वी हैव सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाज़ें, मस्ती भरा गाना, एंजॉय दिस वन।

0: trois rivages, Sari, Lehenga, Kulta, Shelvani et Krobmoye Blanc. Tout à petit prix à partir du 22 août jusqu'à le 6 septembre. Magasin Sia Collection à Floréal, ouvert lundi à dimanche, 10h matin à 6h tantôt. Numéro téléphone 58 07 53 57.
1: जब तू गाड़ी चलावेल का तू जाने ल की आगे का हो सकी एगो दुर्घटना लुतो अपान हो सकी ई सब कुछ सीमा पर होते रहेला पर ई सब मुश्किल घड़ी के सामना अकेले नहीं करे के चाहे सिकोब के संगे तोहरा कोनो चिंता नहीं करे के है काहे कि हमनी के लासिरांस तोहर ख्याल रखेला टोइंग की सुविधा एगो लुतो प्लास्मो जब लुतो बनता सहायता या एगो सुझाव सब कुछ खातिर हमनी तोहर संगे है जा और दूसर नुकसान जैसे तूफान बाढ़ आग मूसलाधार पानी या जे आप अपन लुतो के चाबी भी गवा दिला सिकोब ड्राइव स्मार्ट सब कुछ के बारे में सोच ली बाटी जस्ती जानकारी हमनी के वेबसाइट sikom.mu पर पाई सकब इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
2: सिकोम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट
3: Meet the RM2 team at Kadivil Flag this Saturday, 5th of September, as from 11 a.m. till 2 p.m. Celebrate Ganesh Chaturthi festivities with gifts, new product tasting, and fun. Guess the fruits and win with Eagle Brand. Eagle Brand, the art of spice.
4: RM2 Radio Musti.

0: 2 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: लगता है फोटो खींचने निकल गए, गाते गाते कहाँ चले गए. कोई बात नहीं, हम तो आए हैं आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस लेकर ऑन 5499 1294. सो विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू डियरेस्ट सिस्टर प्रीति ऑफ फट्रियोले एंड विशेस लेकर आई हैं सिस्टर ज्योति, सिस्टर दिव्या, मामा जयंती और हाँ बेसे सभी उनके परिवार, स्पेशली फ्रॉम नेफ्यू लवीश, उनके लिए है बहुत सारा प्यार. हमारी प्यारी सी विजया जी इज गोइंग टू बी बिजी आज 2 बजे, लेकिन अभी तो आ गई हैं हमारा साथ निभाने. सो विशिंग यू अ वंडरफुल वंडरफुल day ahead. Have a wonderful Wednesday, Vijaya ji. Aapke liye pyaar and special wishes. 24/7 hum to pahunchate rehte hain, lekin aaj ke liye kuch special pyaar aapke naam. साथ ही यहाँ पर कविता साथ दे रही हैं, कहती हैं enjoying the songs and already at work. सभी कलीग साथ दे रहे हैं and यहाँ पर सुन रहे हैं रेडियो मस्ती के गाने, काम चलते जा रहा है and enjoying the songs. Thank you जी. अगला गाना होगा for your colleagues, for all your friends जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. Have a wonderful morning, have a wonderful time रेडियो मस्ती के साथ. और चलिए यहाँ पर ज्योति जी ऑल द वे फ्रॉम शातू बनारस से लेकर आई हैं आप भी बहुत सारा प्यार. कहते हैं गाने हैं प्यारे, गाना हो जाए फॉर आशनी, रेखा, सुरेखा, सभी मदब परिवार के नाम. एंड यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं ब्रिंडा जी आप भी. सो गुड मॉर्निंग आपको, गुड विशेस आप सभी के नाम जो दे रहे हैं हमारा साथ ऑन रेडियो मस्ती. योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस, योर प्यार 5499 1294 पर परी का साथ है एंड दैट्स योर मस्ती मॉर्निंग्स ऑन RM2 रेडियो मस्ती.
0: RM2 Radio Masti.

कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 3, 4 और 5 सितंबर 2026 हर शाम 6 बजे से हर कृष्ण मंदिर लॉन्ग माउंटेन 3 दिन का दिव्य उत्सव भक्ति आनंद और कृष्ण प्रेम का रंगों में रंगने का अवसर। भारत से पधारने वाले ऋषिगण मधुर कीर्तन गूंजती मृदंग की ताल और श्री कृष्ण की मनमोहक लीला में सबका एक ही हाल। बच्चों के लिए आनंद मेला, नाटक, नृत्य, गौ पूजा, श्लोक रेसिटेशन, क्विज और स्वादिष्ट महाप्रसाद। अपने परिवार के साथ जरूर आइए और बनिए श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का हिस्सा।

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings, Radio Musty.
1: And well, it's time for fashion tip और tip नहीं बल्कि आपको tips देंगे one statement a piece rule जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं. Outfit simple रखो but एक stand out item add कर सकते हैं. Oversized jacket, bold shoes, statement bag, कुछ भी आपके outfit को और भी stylish बना सकता है. Monochrome but not boring. Same color family के different shades wear कर सकते हैं. Example एक beige shirt plus cream trousers and tan shoes एकदम stylish लगते हैं. अनएक्सपेक्टेड लेयरिंग आप ट्राई कर सकते हैं. टी शर्ट के ऊपर ओपन शर्ट, शर्ट के ऊपर लाइट स्वेटर या ड्रेस के साथ ओवरसाइज ब्लेजर, सब कुछ लगता है सुपर स्टाइलिश. मिक्स लूज प्लस फिटेड, अगर बॉटम बैगी है तो रिलेटिवली फिटेड टॉप आप रखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा. अगर ओवरसाइज टॉप है तो स्ट्रेट स्लिम बॉटम्स आप ट्राई कर सकते हैं. स्नीकर्स फॉर एवरीथिंग, जैसे हम कहते हैं क्लीन स्नीकर्स जो जीन्स के साथ ही नहीं ट्राउजर्स, स्कर्ट और ड्रेसेस के साथ भी एकदम स्टाइलिश लगते हैं. सो बस कुछ फैशन टिप्स आपके लिए. स्टे स्टाइलिश एंड स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
2: RM2
3: Radio Musty.
2: Feel the musty.

0: करके।
1: श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 3, 4 और 5 सितंबर 2026 हर शाम 6 बजे से हर कृष्ण मंदिर लॉन्ग माउंटेन। 3 दिन का दिव्य उत्सव भक्ति आनंद और कृष्ण प्रेम का रंगों में रंगने का अवसर। भारत से पधारने वाले ऋषिगण, मधुर कीर्तन, गूंजती मृदंग की ताल और श्री कृष्ण की मनमोहक लीला में सबका एक ही हाल। बच्चों के लिए आनंद मेला, नाटक, नृत्य, गौ पूजा, श्लोक रेसिटेशन, क्विज और स्वादिष्ट महाप्रसाद। अपने परिवार के साथ जरूर आइए और बनिए श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का हिस्सा।
2: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
3: Milo, libère ta force.
2: Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport.
3: Milo, libère ta force.
2: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
3: Milo, libère ta force.
2: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
4: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
5: Nestlé, good food, good life.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। पोटली में एक धार्मिक स्थल पर चोरी के मामले में 39 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई मेट्रो साफ सीआईडी ने की है। ये बताया जा रहा है कि कई सामानों को की चोरी की गई थी जिसे वापस कर लिया गया। मुजरिम को पोटली साउथ की अदालत में पेश किया गया और उसे पुलिस सेल में भेजा गया है। तहकीकात जारी है। आपसा बैंकिंग ग्रुप ने एक विज्ञप्ति जारी की है। ग्राहकों से एक मोबाइल ऐप स्कैम से सावधान रहने की मांग की जा रही है। बैंक ये दरखास्त करता है कि किसी भी शक के लिए ग्राहकों को फौरन 4020100 पर फोन करके बैंक से संपर्क करने की जरूरत है। इस साल के पहले 6 महीनों के दौरान निर्यात के सतह पर अच्छे नतीजे दर्ज हुए हैं, लेकिन कुछ दूसरे पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन मेगजा के मुताबिक 0.2% की बढ़ोतरी नोट की गई है, यानी 54 बिलियन रुपए का कारोबार हुआ है। हर साल की तरह हजारों मोशन 8 सितंबर को सेंट क्वा में फौदर आवार के मकबरे पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और गरीबों के मसीहा थे। इस साल इस तीर्थ यात्रा का विषय ओसामा विक्पे अलावाल पुएन सोसाइटी प्लीजिस एक फ्रैटर्नल है। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान आयोजक कमेटी से पादरी पैट्रिक पोलिडोरा ने उल्लेख किया कि ये विषय पोर्टवी के बिशप के संदेश से प्रेरित है। मोसियो जो मिकाएल जोहन एक न्यायपूर्वक मुर्शस की इच्छा रखते हैं जिसमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाता। विदेश में अमेरिकी ताकतों ने कल से ईरान पर हमले फिर से शुरू कर दिए। अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेटकॉम ने कहा कि अब नए होर्मुज में तिजारती शिपिंग के खिलाफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को के हालिया हमलों की कोशिश के जवाब में अमेरिका ने यह कदम उठाया। ईरान के रेड क्रेसेंट के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है, एक बच्चा शामिल था, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिका का मिसाइल ईरान के दक्षिण में एक घर की तरफ दागा गया जहां एक शादी समारोह चल रहा था, और जवाब में ईरान ने इराक और जोर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए। कुवैत और बहरीन में भी हमलों की रिपोर्ट है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: RM2 Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Yes, friends, a musty very morning because कहते हैं कि morning में जैसा mood होता है फिर पूरा दिन वैसे ही बीतता है. कभी कभार आप एकदम bad mood के साथ उठते हैं. You never know, कभी कोई सपना ऐसा होता है जो आपका mood खराब कर देता है. कभी कभार work stress और कभी कभार alarm काफ़ी जल्दी ही बज जाता है. So I do understand कि mood जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर depend करता है. लेकिन एक चीज़ जो mood को change कर सकती है वो है good music, जो हम आपके लिए लेकर आते हैं on Radio Musty. अभी के लिए मैं हूँ आपकी परी आपके साथ till 12 यानी कि नून तक. आपके लिए इन प्यारे गानों को हम सजाए रखेंगे. ब्यूटीफुल गानों का प्लेटर आपके लिए हमने सजा के रखा है. सो आई डू होप दैट वेनसडे मॉर्निंग हो या फिर संडे मॉर्निंग, एवरी डे होता है मस्ती भरा डे ऑन रेडियो मस्ती. मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए और अभी के लिए लेकर चलते हैं आपको डाउन मेमोरी लेन विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. आपके मूड को सेट करने आ गए हैं कुमार सानू और अलका याग्निक. ब्यूटीफुल गाना फ्रॉम द फिल्म ब्रह्मा आप सभी के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. चलिए दोस्तों साथ दे रहे हैं तो नॉट टू फॉरगेट आपका प्यार, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस. 5499-1294 प्यार का जमाना आपके लिए. एंजॉय दिस वन.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Well, 11:23 और जी हाँ दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप ऑन दिस वेनसडे मॉर्निंग. वैसे 12 बजे तक तो हम इसे मॉर्निंग ही कंसिडर करते हैं. कुछ लोग देर तक सोना पसंद करते हैं लेकिन मंडे टू फ्राइडे मौका कहाँ मिलता है. मौका तो मिलता है ओनली ऑन वीकेंड्स. तभी तो वीकेंड्स का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब वीकेंड आए, कब अलार्म हमें डिस्टर्ब ना करें एंड वी कैन एन्जॉय हमारी एकदम आराम वाली स्लीप जहाँ पर हम देर से उठे, देर से मॉर्निंग की स्टार्ट हो, शुरुआत हो और फिर आराम से दिन आगे बढ़े. आएगा आएगा वो दिन भी आएगा, बस दो दिन का इंतजार. वेनसडे तो अब ऑलरेडी आफ्टरनून तक पहुंच चुका है, सो नाउ थर्सडे एंड फ्राइडे, उसके बाद तो वीकेंड आ ही रहा है. एंड वेल दोस्तों आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, ये तो आप मंडे हो या संडे एवरी डे आप हम तक पहुंचा सकते हैं ऑन 5499 1294. यहाँ पर प्रिया पूछ रही है कि मुझे एक टिप चाहिए, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मैं क्या करूँ. अच्छा चलिए, गुस्सा आता है ये तो ठीक है, हम पे नहीं आता ना ये बता दीजिए. जब तक हम पर गुस्सा नहीं कर रहे तब तक ठीक है. वैसे प्रिया, ये गुस्सा ये तो हर किसी की एक इशू होती है, हर किसी के साथ ही इशू होता है कि भाई गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कभी कभार मुँह से कुछ निकल भी जाता है. लेकिन एक मंत्र है जो हम आपको सिखाएंगे और जिसे आपको बोलना है. अगर आपको कोई कुछ कह देता है, अगर आपका मूड खराब हो जाता है और आपको कुछ लगता है कि ये सिचुएशन कैसी आ गई है, एक मंत्र है जिसको आप बोलिए और सब कुछ ठीक लगने लगेगा. एंड दैट्स ओम इग्नोराय नमः, यानी कि हर चीज़ को इग्नोर करते चले. अब इग्नोर ही कर देंगे तो फिर क्या ही है, अरे कोई बात नहीं, ठीक है इसने बोल दिया कुछ, कोई बात नहीं, इग्नोर करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज वी स्टार वांट टू बी हैप्पी और आपकी हैप्पीनेस आपके हाथ में है. सो आई डू होप प्रिया ये मंत्र आपको हेल्प ज़रूर करेगा. अभी के लिए साथ दे रही हैं आप, सो थैंक यू फॉर डेडिकेटिंग गाना हमारे और हमारी टीम के नाम. इट मीन्स अ लॉट डियर. हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे अहेड एंड गुड विशेज आपके लिए. आज बेटा विदेश अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और कहते हैं उनके नाम एक स्वीट सा गाना एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम मामा कविता. उनके लिए भेज रही हैं प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेस. वेल यहाँ पर हमारी प्यारी सी कविता जी कह रही हैं कि प्लेटर तो सजाया है और हम भी एंजॉय कर रहे हैं इस प्लेटर को. सो आई नो दैट यू ऑलवेज स्टे कनेक्टेड हमारे साथ, सो थैंक यू सो मच रोशनी फॉर द लव. ब्यूटिफुल गाने लेकर आए हैं आपके लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती. गानों को गुनगुनाते चलिए और दिन को खूबसूरत बनाते रहिए.

तो चलिए यहां पर गानों को एंजॉय कर रहे हैं शाम देवीचैन हमारा साथ दे रहे हैं एंड गाना डेडिकेट कर रहे हैं फॉर योर फ्रेंड्स रमेश राजू एशले रवि लाल देव और सभी देवीचैन परिवार ऑफ पेबे सभी को अपने दिल से याद किया है सो ये गाना उनके नाम अमर जी हमारा साथ दे रहे हैं साथ में है वाइफ रीना कहती है वाइफ के लिए कुछ स्पेशल सा गाना चला दीजिए चलिए अभी के लिए तो हम गाना ही चला सकते हैं अमर जी और गुड विशेस टू यू एंड गाना गोज आउट फॉर योर लवली वाइफ साथ देने के लिए शुक्रिया ऑन RM2 रेडियो मस्ती आपका प्यार आपका साथ जैसे हम कहते हैं हमारे लिए इट्स ऑलवेज स्पेशल अभी के लिए परी है आपके साथ एंड दैट्स योर मस्ती मॉर्निंग्स ऑन रेडियो मस्ती

एंड प्यार किया है निभाएंगे भी. विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू डियर सिस्टर प्रीति ऑफ ट्रियोले. विशेस फ्रॉम सिस्टर्स ज्योति, दिव्या, मम जयंती गांबे से, उनके नेफ्यू लवीश भेज रहे हैं उनके लिए बहुत सारा प्यार, स्पेशल विशेस. राम कबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप, सो थैंक यू सो मच. आपकी गुड विशेस भी हम तक पहुंच गई हैं. सो गाना होगा आपके नाम एंड हैव अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. परी तो चली आ रही है नीलमणि लेकर योर रेट्रो रिदम. उनका साथ दीजिए. मुलाकात होगी 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकी सून. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ.

0: Welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: दिन के 12 बजे है. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे सुमेरा नमस्कार.
5: नमस्कार आदाब. अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट को और 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है. ये प्रोग्राम 31 दिसंबर 2028 को ख़त्म होगा. अमेरिकी कांग्रेस ने इसे पारित किया है. एप्सा बैंकिंग ग्रुप ने एक विज्ञप्ति जारी की है. ग्राहकों से एक मोबाइल ऐप स्कैम से सावधान रहने की मांग की जा रही है. बैंक की दरख्वास्त करता है कि किसी भी शक के लिए ग्राहकों को फौरन 402-1000 पर फ़ोन करके बैंक से संपर्क करने की ज़रूरत है. मॉरिशस नोटरी एसोसिएशन ने कल पोर्टली में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया. चीफ जस्टिस रेहाना मंगली गुलबूर और अटॉर्नी जनरल गाविन ग्लोवर की मौजूदगी में ये समारोह लगाया गया. हिंद महासागर में नोटरी सम्मेलन के मौके पर ये पहल की गई. इलाके के डेलीगेट 4 सितंबर तक हिस्सा ले रहे हैं. रिविया जोंपो के एक बाशिंदे को गिरफ्तार किया गया. 45 साल का ये व्यक्ति चोरी के कई मामलों से जुड़ा है. बाउंस चेक और फंडों की हेराफेरी के सिलसिले में पुलिस के मुताबिक फेसबुक पर मार्केट प्लेस पर उसने गाड़ी मालिकों से संपर्क किया होगा और जाली चेक्स देकर गाड़ियां खरीदी होंगी. फिर उसने गाड़ियों को फिर से बेचा. इस तरह उसने करीब 5.5 मिलियन रुपये हड़प लिए. विदेश में मिस्र के पूर्व में एक बस हादसे में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है. रेड सी के शहर दहाब और नुवेबा में अन्य 28 लोग जख्मी बताए जाते हैं. करीब 20 एम्बुलेंस को घटनास्थल पर भेजा गया. इजिप्ट में सड़क दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं. पिछले साल करीब 6000 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई थी. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. गोपाल लेन रिविया दे जोंगी में 60 साल के 60 years old श्री बोलेन वीरासामी जो टी बोलेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी आज सपैर तीन बजे इनके घर गोपाल लेन रिविया दे जोंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांबुआ की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. नंबर 5 डुगला स्ट्रीट लिसालिन में 49 साल की 49 years old श्रीमती होमावादी मुतुसामी ग्रेनाड श्रीमती होमावादी मुतुसामी ग्रेनाड पैराशिना मुतुसामी जो अंबल के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी आज सपहर तीन बजे इनके पति जॉर्ज डेविड ग्रेनाड के घर नंबर 5 डुगला स्ट्रीट लेसालिन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसालिन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. अंग्रे मर्सियालो कुले में 72 साल के 72 years old श्री गुरुदत्त ननका जो गुरु के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल एक बजे इनकी पत्नी संतना ननका के घर अंग्रे मर्सियालो कुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है.
0: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: Retro Rhythm. RM2, Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: चलिए आई मैं, गुड आफ्टरनून, रेट्रो रिदम में आपका स्वागत है। आज फिर वक्त की मशीन को ऑन करते हैं और ले चलते हैं आपको उन गोल्डन म्यूजिकल एरास में, जहां गाने सिर्फ सुने नहीं जाते थे, फील किए जाते थे। 70s की मेलोडी, 80s का मैजिक और 90s की वो एवरग्रीन वाइब्स। तो वॉल्यूम को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, नॉस्टैल्जिया को फील करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि रेट्रो रिदम शुरू हो चुका है आपके ही आरएमजू रेडियो मस्ती पर।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti।

बेजान रहते, बेजान रहते। ओ ये सपना जो अंदाज, बेजान रहते अगर हम।

हुस्न पर खुद पशेमान रहते, पशेमान रहते हाँ। तुम इस हुस्न पर खुद पशेमान रहते अगर हम ना

0: रेट्रो रिदम।
1: बारह बजकर 18 मिनट से हुए हैं। यस, ये था गाना अगर हम ना होते, आपको फिर से उन पुरानी यादों को ताज़ा कराने के लिए। वैसे आशा भोंसले जी की आवाज़ में वो अदा है जो एक सिंपल सॉन्ग को भी अनफॉरगेटेबल बना देती है, और जब उनकी वॉइस, ब्यूटीफुल मेलोडी और थोड़ा सा रोमांस एक साथ आए तो मूड ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। तो चलिए वापस ले चलते हैं आपको 70s की दुनिया में, इस बार लता जी और किशोर कुमार जी की आवाज़ में।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti.

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

आदमी से ज्यादा वफादार है। खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।

सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।

0: रेट्रो रिदम,
1: ब्रिलियंट म्यूजिक और लिरिक्स, लाइफ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज था इस गाने ए भाई है जरा देख के चलो में। सुनने में तो एक फन एनर्जेटिक सॉन्ग है, लेकिन अगर लिरिक्स को ध्यान से सुने तो जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स को कितने खूबसूरत अंदाज में समझाते हैं। तो चलिए थोड़ा संभाल के, थोड़ा मुस्कुरा के और मना दे जी के साथ जिंदगी का मजा लेते हैं। इट्स योर रेट्रो रिदम, 2 बजे तक इट्स नमनी जो यहाँ पर है आपके लिए रेट्रो गाने के साथ। तो यही पर जुड़े रहिए और आपके मैसेजेस जल्दी ही पढ़ने वाले हैं 5491294 पर। अगर आपके पास है कोई मैसेज या डेडिकेशंस, do not hesitate.
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti.

0: Retro Rhythm. एंड यस, सभी टाइम वो चला है आपके मैसेजेस पढ़ने के लिए. बिग हेलो टू विनय जी, जो कि नोवेल फॉन्स की रहने वाली है. एक गाना वो मांग रहे हैं अपने पति के लिए. गानों के जरिए वो क्या है ना, वो रिवाइव करना चाहते हैं उस मोमेंट को जो उन्होंने शेयर किया है. फॉर शो विश्वानी धूमन जी वाकवा से. अभी आप लंच कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया गाने सुन रहे हैं. एक गाना मूवी दिल एक मंदिर, हम तेरे प्यार में, अपने बहन इंदिरा शारदा, सहेली नीला प्रतिभा, शोभा गीता जी के लिए. एंड वी हैव जना जी जो बोल रही हैं फ्लैग से, इस वक्त आप काम कर रहे हैं और आपकी स्वीट सी जो बातें हैं आप सुन रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं. रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक गाना हो जाए, ब्रह्मचारी आज खल तेरे मेरे प्यार के चर्चे. वो गाना आप मांग रहे हैं अपनी ब्यूटीफुल डॉटर्स, बेटी रीमा, जनिता, शेषता, अंशनी, सिल्विया, यूवी, कृषि, सुसरण फैमिली फ्लैग से. और वो विश कर रहे हैं आप सभी को वेरी गुड डे. एंड वी हैव देव जी फ्रॉम पैरिस द सिटी ऑफ लव. वो सुनना चाहते हैं गाना तुझे देखा तुझे चाहा फ्रॉम द फिल्म छोटी सी मुलाकात, डेडिकेटेड है अपने पत्नी के लिए. तो धुन कर आपके रिस्पेक्टिव गानों को चलाने की पूरी कोशिश करेंगे. आप बस जुड़े रहिए नमन के साथ और एंजॉय करते रहिए रेट्रो वाइब्स को जो हो रहा है अभी आपके ही आरम जो वीडियो मस्ती पर.
1: Retro Rhythm. RM2 Radio Musti.

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अर्षिता। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि। श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस को अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट यानी अगवा के तहत अमरीकी बाजार में मिलने वाली तरजीही पहुंच अब 31 दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी। इससे पहले इस व्यवस्था को इस साल की शुरुआत में 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया था, लेकिन अब इसे और 2 वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस फैसले का मॉरिशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री रितेश रामफल ने स्वागत किया है। उनके अनुसार ये परिणाम उनके प्रशासन के तहत शुरू की गई बातचीत और वार्ताओं का नतीजा है। खासतौर पर थर्ड कंट्री फैब्रिक व्यवस्था यानी किसी तीसरे देश से प्राप्त कपड़े के इस्तेमाल की अनुमति को भी बरकरार रखा गया है। ये प्रावधान मॉरिशस के स्थानीय कपड़ा उद्योग के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मॉरिशस में 300 साल से अधिक पुरानी मॉरिशस एसोसिएशन ऑफ नोटरी ने कल यानी मंगलवार 1 सितंबर को पोर्टलिस में अपने पहले आधिकारिक मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश रिहाना मंगली गुलबुल और न्याय मंत्री गाविन ग्लोव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये उद्घाटन हिंद महासागर क्षेत्र के नोटरी सम्मेलन 2026 के तहत हुआ, जिसका आयोजन मॉरिशस में 1 से 4 सितंबर तक किया जा रहा है। इस सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों और द्वीपों से आए प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा ले रहे हैं। मॉरिशस में विदेशी कामगारों की बढ़ती मौजूदगी के बीच स्थानीय लोगों के रवैये को लेकर बहस तेज हो रही है। रविवार को साबलनुआ इलाके में स्थानीय निवासियों और विदेशी कामगारों के बीच झड़प हो गई। इस घटना की परिस्थितियों से परे अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है। यहाँ के दूसरे देशों से मॉरिशस आए इन कामगारों को स्थानीय लोग किस नजरिए से देखते हैं? सुपर मार्केट्स में काम करने वाले कई विदेशी कैशियर मडागास्कर, नाइजीरिया इत्यादि देशों से हैं। हालांकि कुछ जगहों पर ग्राहक विदेशी कामगारों के काम करने की धीमी रफ्तार, कभी कभी मुस्कुराहट की कमी या भाषा की बाधा को लेकर शिकायत करते हैं। हालांकि इन सुपरमार्केटों में ऐसी कोई शिकायतें सामने नहीं आई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में फिलहाल 50,000 से अधिक विदेशी कामगार वर्क परमिट या सर्टिफिकेट ऑफ एग्जेम्पशन के तहत काम कर रहे हैं। विदेशी कामगारों की बढ़ती संख्या को लेकर जहां उनकी आर्थिक भूमिका पर जोर दिया जा रहा है, वहीं कुछ मॉरिशनों में इसे लेकर नाराजगी और असहजता भी बढ़ती दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि बढ़ते ड्रोन हमलों के बीच रूसी हवाई क्षेत्र विमानों के लिए पूरी तरह असुरक्षित हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एयरलाइनों को चेतावनी दी है कि यूक्रेन द्वारा रूस पर ड्रोन हमले तेज किए जाने के बीच रूसी हवाई क्षेत्र धीरे धीरे पूरी तरह बंद जैसा हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाली हर एयरलाइन, बीमा कंपनियों और रूस के मुख्य हवाई अड्डों का संचालन जारी रखने वाले सभी पक्षों को बढ़ते खतरे को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस आसमान अब पूरी तरह खतरनाक होता जा रहा है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहिए, सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रुथ बेयानिका ग्लेनपॉर्क वाकवा में 67 साल। ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। रॉय रोड लावेंटियर में बर नेशनल स्टोर के करीब, रॉय रोड लावेंटियर में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती प्रेमिला जीतन पैदाश्रम ननको, जिन्हें वीना के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उन

0: की अर्थी आज शाम 5 बजे उनके घर लावोचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 5 PM। ब्रांच रोड मौलाशो में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री इंदरजीत तिलक जिन्हें सुबानन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे सचिन तिलक के घर मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोसल मौलुबीन बिलमाओ की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Musti.

0: खिल रही है आपके रेट्रो रिदम में विद नलिनी। हां जी, रेट्रो वाइब्स आपके लिए ऑनगोइंग है 2 बजे तक। तो अभी के लिए ट्विस्ट करते हैं थोड़ा सा, अब कुछ गाते हैं। आई नो लंच के बाद बॉडी भारी भारी सा हो जाता है, हैवी फील होता है, तो मूवमेंट्स करते हैं, ट्विस्ट मारते हैं और लाइटेंड होते हैं साथ में आपके यार जो रेडियो मस्ती के साथ।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti Musti
3: Suno aur gaur se suno are pehle taaliyan to bajao aaj raat ka main aakhri gaana ga raha hu aur gaane mein ye kehna chahta hu ki duniya mein khush rehna ho to mano

0: रेट्रो रिदम।
1: से आपकी फरमाइश है, अभी भी याद है निर्मली को, और पूरी कोशिश जारी है गाने ढूंढने में। लेकिन आप जरा ये तो बताए कि रेट्रो वाइब से फील हो रहा है, यस और नो? अगर नई मैसेजेस के जरिए 5499124 पर लेट अस नो कि आपके मन में क्या चल रहा है। वो क्या है ना कि दुविधा को गानों के जरिए हुए रखना आरएमजू की जिम्मेदारी है, सो जल्दी से लेट अस नो। एंड अभी के लिए देव जी की प्यारी पत्नी के लिए गाना हो जाए प्यारा सा।
0: Retro Rhythm
2: RM2

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: Natural Rhythm. वेल लव के शहर में आरएम जो रेडियो मस्ती पहले से ही प्रेजेंट है सर. फॉर नाउ अभी के लिए हमारे 90s के म्यूजिक लवर्स के लिए ये अगला गाना है. कुमार सानू की सिल्की आवाज में रोमांटिक लिरिक्स और वो कैसेट एरा वाली फीलिंग जमाने में वापस ले जा रहे हैं आपको. सो एंजॉय दिस नेक्स्ट ट्रैक आपके ही आरएम जो रेडियो मस्ती पर.
1: रेट्रो रिदम आरएम जो रेडियो मस्ती.

0: Retro Rhythm
1: RM2 Radio Musti.
2: और इसी आखिरी गाने के साथ आज का रेट्रो रिदम का सफर ये ख़त्म करते हैं 70s, 80s और 90s के एवरग्रीन गानों के साथ। उम्मीद है कि आपकी आफ्टरनून थोड़ी और म्यूजिकल हो गई होगी। एंड आज आपको बताना मैं भूल गई कि आज है कोकोनट डे, तो कोकोनट वाटर पी लीजिए, हाइड्रेटेड रहिए और अपनी हेल्थ का थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखिए। मैं मिलूंगी फिर अगले रेट्रो रिदम में, यानी कि कल। तब तक गाने सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। बुजुर्गों की बदलती स्वास्थ्य जरूरतों को देखते हुए जीतो अस्पताल में 36 बिस्तरों वाली दो नई इकाइयां शुरू की गई हैं। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। बुज़ुर्गों को उनकी शारीरिक कमज़ोरी, अलग अलग बीमारियों और रोज़मर्रा के कामों में उनकी आत्मनिर्भरता के स्तर को ध्यान में रखते हुए विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। मॉरिशस में सरकारी अस्पतालों में जेरियाट्रिक यानी बुज़ुर्गों की चिकित्सा सेवाओं का धीरे धीरे विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में जीतू अस्पताल में बुजुर्ग मरीजों की तीव्र चिकित्सा देखभाल के लिए दो नई इकाइयां शुरू की गई हैं। इन दोनों इकाइयों में कुल 36 बिस्तरों की क्षमता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर बेहतर तरीके से पूर्वानुमान लगाने के लिए मॉरिशस में एमस्टर यानी मॉरिशस स्ट्रैटेजिक टूल फॉर द असेसमेंट ऑफ रिस्क परियोजना शुरू की गई है। इस उपकरण की मदद से अधिकारी ये पहचान सकेंगे कि देश की कौन सी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाएं जलवायु और आपदा संबंधी जोखिमों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। इससे सरकारी धन और निवेश को सही दिशा में लगाने के साथ साथ देश की आपदारोधी क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। और मॉरिशस अपनी ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था के भविष्य को नए सिरे से आकार देने के साथ साथ छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले कारीगर मछुआरों के हितों की रक्षा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस उद्देश्य से अफ्रीसी क्षेत्रीय परियोजना के तहत मॉरिशस को करीब 30 मिलियन रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। ये परियोजना ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप सदर्न अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की साझेदारी में संचालित की जा रही है। इस पहल के तहत करीब 2500 मॉरिशस के और रोड्रिक्स के 1700 मछुआरों को विभिन्न परीक्षण दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड 2050 दिनों तक बिना किसी बंदरगाह पर रुके समुद्र में रहने के बाद अमरीकी परमाणु ऊर्जा से संचालित विमान वाहक पोर्ट USS अब्राहम लिंकन थाईलैंड के एक बंदरगाह पर पहुंच गया है। करीब 5000 चालक दल के सदस्यों वाली इस विशाल युद्धपोत के कर्मचारियों को लंबे समय बाद कुछ समय आराम का मौका मिला है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ ही सुनिए शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। जुक्रे रोड नोटरडाम में 92 साल के 92 ईयर्स ओल्ड के श्री रूप नारायण सिंह अजुदा जिन्हें किशोर के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे आचार्य रिजेश अजुदा के घर नोटरडाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। मिशन टुमोरो एट हाफ पास्ट 10 AM। ओंग्रे मौसिया लुकुले में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री गुरुदत्त ननका जिन्हें गुरु के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सतना ननका के घर ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 1 PM। नंबर 5 डुगला स्ट्रीट लिसालिन में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ओमावादी मुतुसामी ग्रेनाद पैदाशना मुदुसामी और जिन्हें अम्बाल के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके पति रोज दाविद ग्रेनाद के घर लिसानी से उठाकर दफनाने के लिए लिसालिन का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। गोपाल लेन रिविया दिजोंगी में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्रीबालेन वीरासामी जिन्हें छिबालेन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर रिविया दिजोंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गोम्बा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 3 PM। राय रोड लावंचिया में नेशनल स्टोर के आगे 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती प्रेमिला जीतन पैदाशन मन को जिन्हें वीना के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 5 बजे उनके घर लावोचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 5 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: Your news Plus on MBC Play, MBC Play, MBCRadio.tv, MBCRadio.tv.
3: More music in the mix.
4: Aaj Azadi hai.
5: Bombay Talkies.
6: Radio Musti.
7: Radio Musti.

0: Oldies.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: और चलिए दोस्तों 2:14 वार्म वेलकम आप सभी का हमारे सभी लिसनर्स का जो इतने प्यार से हमारा साथ देते हैं ऑलवेज ऑन रेडियो मस्ती. वैसे सुबह से हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप 9-12 के बाद. दैट वाज टाइम फॉर योर रेट्रो रिदम जहां पर आपने नीलमणि का साथ दिया और नाउ इट्स टाइम जहां पर हम बी टाउन की अपडेट्स आप तक पहुंचाए. लेटेस्ट न्यूज़ और साथ में कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स आपके लिए. मैं हूं परी आपके साथ दिन के 4 बजे तक. सो साथ निभाइए ऑन रेडियो मस्ती एंड एंजॉय सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स.
0: RM2 Radio Musty.

0: Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentinat Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
3: Join the RM2 team this Friday, 4th of September, for an open day at the University of Technology Mauritius, La Tourquenique, Pointe aux Sables. RM2 will be live as from 11 a.m. to 1 p.m. So don't miss out.
2: Meet the RM2 team at Kadivil Flag this Saturday, 5th of September, as from 11 a.m. till 2 p.m. Celebrate Ganesh Chaturthi festivities with gifts, new product tasting, and fun. Guess the fruits and win with Eagle Brand. Eagle Brand, the art of spice.
4: RM2
5: Radio Musti.
6: Ki dil ko khabar na ho. Zakhm deti hai aisa. कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: टू रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड पॉम्पली मुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
2: Join the RM2 team this Friday, 4th of September, for an open day at the University of Technology Mauritius, La Tour Clinique, Pointe aux Sables. RM2 will be live as from 11 a.m. to 1 p.m, so don't miss out.
0: RM2
3: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, इन दिनों फिल्म हनुमान अंश काफी चर्चाओं में है। अब फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने सीक्वल को लेकर बड़ी जानकारी शेयर

0: की है और यहां पर आपको बताएंगे कि उन्होंने आखिरकार क्या कहा है। फिल्म अनुमान अंश फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसकी सफलता के बीच फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी शेयर की है। फिल्म हनुमान अंश के खत्म होने के बाद ही दर्शकों को इसके सीक्वल का हिंट मिल गया था। फिल्म में आखिर में एक स्लेट दिखाई गई जिसे साफ होते ही उस पर नीम करोली बाबा की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है और इसका अगला हिस्सा अभी आएगा। हाल ही में एक मल्टीप्लेक्स में दर्शकों के साथ बातचीत के दौरान फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने सीक्वल को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि फिल्म के अगले पार्ट में नीम करोली बाबा की जिंदगी के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को दिखाया जाएगा और साथ ही विशाल चतुर्वेदी ने बताया कि सीक्वल में सबसे पहले नीम करोली बाबा के जन्म स्थान फिरोजाबाद पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद कहानी आगरा, मथुरा और उनकी जिंदगी और आध्यात्मिक सफर से जुड़े अन्य स्थानों तक की ओर जाएगी और फिल्म के अगले पार्ट में दर्शकों को नीम करोली बाबा की जिंदगी और उनके आध्यात्मिक सफर के बारे में और करीबी से जानने का मौका मिलेगा। अभी के लिए तो आपको बता दिए, दैट इज फिल्म की लागत है 2 करोड़, यानी कि ये फिल्म को बनाया गया है महज 2 करोड़ रुपए में और अभी तक इस फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। पहले 2 हफ्ते ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली, सिर्फ लाखों में इसकी कमाई रही, लेकिन 3rd हफ्ते से इट वॉज लाइक अ मिरेकल। इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और अभी तक कमाए हैं 25 करोड़ से ज्यादा, यानी कि 25 करोड़ के बाद अब 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है एंड दैट्स हनुमान अंश, इसी मूवी की बात कर रहे हैं। चलिए कुछ और खबरें थोड़ी ही देर में, कनेक्टेड हैं आप आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ।
1: मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
2: आज आजादी है
3: बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती।
4: रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर बेहतर तरीके से पूर्वानुमान लगाने के लिए मॉरिशस में एमस्टॉ यानी मॉरिशस स्ट्रैटेजिक टूल फॉर द असेसमेंट ऑफ रिस्क परियोजना शुरू की गई है। इस उपकरण की मदद से अधिकारी ये पहचान सकेंगे कि देश की कौन सी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाएं जलवायु और आपदा संबंधी जोखिमों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। इससे सरकारी धन निवेश को सही दिशा में लगाने के साथ देश की आपदा रोधी क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। समुद्री संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अधिक प्रभावी कार्रवाई के लिए मॉरिशस में वेसल मॉनिटोरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम को लागू किया जा रहा है। आलबियों के फिशरीज रिसर्च सेंटर में निगरानी अब दूर से और वास्तविक

0: समय में की जा रही हैं। इसके जरिए मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की भौगोलिक स्थिति और उनकी पकड़ की निगरानी की जा सकती है। इस डिजिटल बदलाव को तेज करने के लिए संबंधित नियमों में जल्द ही संशोधन किए जाने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य समुद्री गतिविधियों की निगरानी को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। और मॉरिशस को अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट यानी आगुआ के तहत अमरीकी बाजार में मिलने वाली तरजीही पहुंच अब 31 दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी। इससे पहले इस व्यवस्था को इस साल की शुरुआत में 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया था, लेकिन अब इसे और 2 वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस फैसले का मॉरिशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री रितेश रामफोल ने स्वागत किया है। उनके अनुसार ये परिणाम उनके प्रशासन के तहत शुरू की गई बातचीत और वार्ताओं का नतीजा है। खासतौर पर थर्ड कंट्री फैब्रिक व्यवस्था यानी किसी तीसरे देश से प्राप्त कपड़े के इस्तेमाल की अनुमति को भी बरकरार रखा गया है। ये प्रावधान मॉरिशस के स्थानीय कपड़ा उद्योग के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और उधर नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद 8वें दिन भी राहत और आपदा लोगों की तलाश का अभियान जारी है, जबकि आपदा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नेपाल पुलिस के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 1093 लोगों की जान जा चुकी हैं, जबकि करीब 4500 लोग अब भी लापता हैं। कई जल परियोजनाओं की सुरंगों में राहत कर्मी उन कामगारों की तलाश कर रहे हैं जो कीचड़ और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। आपदा की भयावहता को देखते हुए सरकार ने प्रभावित क्षेत्र को 3 महीने के लिए संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। राजधानी काठमांडू में अज्ञात पीड़ितों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इस त्रासदी के बीच मानवीय एकजुटता की तस्वीरें भी सामने आ रही है। बिदुर में युवा स्वयंसेवकों ने एक सहायता केंद्र बनाया है, जहाँ प्रभावित परिवार अपने मोबाइल फोन चार्ज कर पा रहे हैं और लापता परिजनों की तलाश के दौरान एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल रासुवा में बच्चों के चेहरों पर फिर मुस्कान दिखाई दी। वे एक फुटबॉल के आसपास खेलते नजर आए। मलबे और तबाही के बीच ये कुछ पल की बेफिक्री मानो उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी बनकर सामने आई है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
1: जब जब बन में आग लगी है, हमने आंखें सेकी है। जब जब बन में नची मोरनी, आंखें भर के देखी है।

0: और चलिए दोस्तों अब अनीत पाडा और फातिमा सना शेख की नई रिलीज हुकार द रोर में नजर आने वाले हैं और बीते कल इसका टीजर ट्रेलर रिलीज किया गया और इस रिलीज के ट्रेलर को बॉलीवुड के मशहूर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का समर्थन मिला। ट्यूजडे को शो का ट्रेलर रिलीज लॉन्च होने के बाद दीपिका और रणवीर ने सोशल मीडिया पर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की, टीम का हौसला बढ़ाया और रणवीर ने सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर क्लिप पर शेयर करते हुए लिखा कि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद दीपिका पादुकोण ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ट्रेलर टीजर शेयर किया और निर्देशक करण डी कापडिया को टैग करते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए अपना समर्थन दिखाया। साथ ही उन्होंने यहाँ पर रणवीर सिंह ने अपनी स्टोरी में लिखा बैंग LFG, वहीं दीपिका पादुकोण का भी समर्थन मिला है इसको। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सीरीज हुकार 17 साल की मनु रावत की कहानी है। जाने माने पंथ गुरु सुनील चौकसी बाप जी पर उसके आरोपों से बड़ी एक अहम जांच शुरू होती है और वो जल्द ही पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है। टीजर में ACP जसलीन सिंह सोनी एक ऐसे वकील राव जो मुश्किल के बावजूद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और एक जिद्दी पत्रकार अमिताभ की झलक दिखाई गई है। ये तीनों एक ही सच का सामना करते हैं और अलग अलग मोर्चों पर लड़ते नजर आते हैं, एक पुलिस की जांच में, दूसरा कोर्ट और तीसरा मीडिया के जरिए। सो काफी इंटरेस्टिंग एंड आफ्टर सैयारा अनीत पाडा को हम इस खास रोल में देख पाएंगे। सो लगता तो है दैट काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरी होगी इसकी और सीरीज का जो डायरेक्शन है करण डी कापडिया, नित्या मेहरा और हीरज मार्फतिया ने किया है। मेकर्स के बयान के मुताबिक ये सीरीज पुलिस की जांच की तेजी, कानूनी ड्रामा के दावपेच और मीडिया ट्रायल की पेचीदगी को एक साथ लाती है। सो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये फिल्म और क्या परोसने वाली है। लेकिन अभी के लिए जो हम कहते हैं द पावर कपल ऑफ बॉलीवुड, यस दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह इस फिल्म का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। सो दैट्स हुकार, लेट्स वेट एंड वॉच कि ये लोगों को कितनी पसंद आती है।
1: मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
2: आज आजादी है
3: बॉम्बे टॉकीज़
4: रेडियो मस्ती।
5: रेडियो मस्ती।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: एंड वेल अभी के लिए इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. आ रही है गिनीशा आपके लिए कुछ और प्यारे गाने लेकर. यहाँ पर राम कबीर सिंह हमारा साथ दे रहे हैं, सो थैंक यू. अगला गाना आपके नाम ललिता जी हमारा साथ दे रही हैं. आप भी सभी टीचर्स को याद कर रही हैं, सिमी, सलमा, सादिया, पूर्णी, आका, रुखसाना, प्रिया, पिंकी, सारिका, टीना एंड सभी जीतन परिवार के नाम. उनके लिए एक ब्यूटिफुल सा गाना. साथ ही यहाँ पर बेटा अर्शाद दाहू ने विश करेंगे वेरी हैप्पी बर्थडे. विश इज कमिंग फ्रॉम वाइफ समीम एंड अब्दुल अंसायरा बानू. उनके लिए प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेज. साथ ही कहते हैं गाने हैं प्यारे एंड एंजॉय द सॉन्ग्स. थैंक यू सो मच रोशनी. गाना आपके नाम एंड कहते हैं टुमारो इज माय बर्थडे. चलिए आपके लिए कोशिश करेंगे कुछ सरप्राइज करने की. एंड मनीषा दैट्स यू ओके, वेल नोटेड. एंड अभी से एडवांस विशेज आपके नाम. लाल माटी से दाविसेन आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, सो अगला गाना आपके नाम. विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू डियर सिस्टर प्रीति. विशेज सभी परिवार की ओर से. एंड चलिए ऐसे ही साथ देते रहिए. जाते जाते ये ब्यूटीफुल गाना आपके नाम. आ रही है गिनीशा लेकर योर अफ्तार वाइब्स. मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज़.

0: such a beautiful and mesmerizing track, especially आप लोगों के लिए on RM2 Radio Masti. फिलहाल के लिए check your time. Studio में exactly 4 बज रहे हैं.
1: RM2 Radio Masti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Masti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2, Radio Masti.
1: Radio Masti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
5: The Masti. The Masti.
0: आइए सुनते हैं समाचार आशिता के साथ. नमस्कार.
6: नमस्कार गिरी शाश्वताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है. मॉरिशस में 300 साल से अधिक पुरानी मॉरिशस एसोसिएशन ऑफ नोटरी ने कल यानी मंगलवार 1 सितंबर को पोर्ट लुइस में अपने पहले आधिकारिक मुख्यालय का उद्घाटन किया. इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश रियाना मंगली गुलबुल और न्यायमंत्री अटोर्नी जनरल गविन ग्लोवर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे. ये उद्घाटन हिंद महासागर क्षेत्र के नोटरी सम्मेलन 2026 के तहत हुआ, जिसका आयोजन मॉरिशस में 1 से 4 सितंबर तक किया जा रहा है. इस सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों और द्वीपों से आए प्रतिनिधि मंडल भी हिस्सा ले रहे हैं. बुजुर्गों की बदलती स्वास्थ्य जरूरतों को देखते हुए जीतू अस्पताल में 36 बिस्तरों वाली 2 नई इकाइयां शुरू की गई हैं. उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें भी बदलती जाती हैं. बुजुर्गों को उनकी शारीरिक कमजोरी, अलग अलग बीमारियों और रोजमर्रा के कामों में उनकी आत्मनिर्भरता के स्तर को ध्यान में रखते हुए विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता हो सकती है. मॉरिशस में सरकारी अस्पतालों में जेरियाट्रिक यानी बुजुर्गों की चिकित्सा सेवाओं का धीरे धीरे विस्तार किया जा रहा है. इसी क्रम में जीतू अस्पताल में बुजुर्ग मरीजों को की तीव्र चिकित्सा देखभाल के लिए 2 नई इकाइयां शुरू की गई. इन दोनों इकाइयों में कुल 36 बिस्तरों की क्षमता है. नई इकाइयों से बुजुर्ग मरीजों को उनकी विशेष स्वास्थ्य जरूरतों के अनुरूप अधिक समर्पित और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. मॉरिशस अपनी ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था के भविष्य को नए सिरे से आकार देने के साथ साथ छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले कारीगर मछुआरों के हितों की रक्षा करने

0: की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी उद्देश्य से अफ्रीसिड्स क्षेत्र या परियोजना के तहत मॉरिशस को करीब 30 मिलियन रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। ये परियोजना ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप सदर्न अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की साझेदारी में संचालित की जा रही है। इस पहल के तहत मॉरिशस के करीब 2500 और रोड्रिक्स के 1700 मछुआरों को विभिन्न प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य मछली पकड़ने को अधिक टिकाऊ, अधिक लाभदायक और पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार गतिविधि बनाना है, साथ ही स्थानीय मछुआरों की आजीविका को सुरक्षित भी करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद 8वें दिन भी राहत और लापता लोगों की तलाश का अभियान जारी है, जबकि आपदा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नेपाल पुलिस के ताजा आंकड़ों के अनुसार 1093 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 4500 लोग अब भी लापता हैं। कई जल परियोजनाओं की सुरंगों में राहत कर्मी उन कामगारों को तलाश कर रही हैं जो कीचड़ और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। आपदा की भयावहता को देखते हुए सरकार ने प्रभावित क्षेत्र को 3 महीने के लिए संकट ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। राजधानी काठमांडू में अज्ञात पीड़ितों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इस त्रासदी के बीच मानवीय एकजुटता की तस्वीर भी सामने आ रही है। बिदुर में युवा स्वयंसेवकों ने एक सहायता केंद्र बनाया है, जहां प्रभावित परिवार अपने मोबाइल फोन चार्ज कर पा रहे हैं और लापता परिजनों की तलाश के दौरान एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides, RM2.

बिल्कुल जी, शो रेडियो मस्ती सुनते रहे और लेकर आए हैं कुछ ऐसे धमाकेदार गाने फॉर यू माय बहुत ही वेरी क्लोज लिसनर्स जो साथ रहते हैं, हमारे दिल के अंदर बसते हैं। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। ऑन आवर एंड टू रेडियो मस्ती चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में 4:08 हो चुके हैं ऑलरेडी। वन इज द 2nd of September माई डियर लवली पीपल, टाइम बीता चला जा रहा है। हाँ जी, तभी तो लेकर आते हैं चुन चुन कर ऐसे गाने आप लोगों के लिए। सो विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे लवली म्यूजिक लवर्स, आई होप दैट एवरीवन इज गुड फीलिंग एनर्जेटिक। हाँ जी, क्यों ना हो, आज वेनेसडे है तो क्या हुआ, वी आर जस्ट ऑफ द मिड ऑफ दिस वीक, बट स्टिल वी आर गोना मेक यू फील लाइक वीकेंड इज हियर, क्योंकि वी गोना प्ले दिस लवली लवली गाने स्पेशली फॉर यू। तो चलिए जी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। गणेशा आई है तो ऑफकोर्स हम तो सेंटा क्लॉज बन के आते हैं रोज, लेकर आते हैं बहुत सारे कैडोज फॉर यू माई लवली पीपल। और आज के लिए आई हैव गॉट यू सम लवली लवली कैडोज, यानी कि टू गेम्स in 1 hour you can win 2 entry tickets for the circus of Zavata and a ticket to watch Shan live in concert soon in Mauritius. So just stay tuned and stay connected. Anytime I can just ask you any question and you just have to answer me and participate to be my lucky winner. Leke jayenge sports ki duniya mein, leke jayenge traffic ki duniya mein aur of course Bollywood ki duniya se lekar aaye hain kuch dhamakedar gaane. To chaliye ji, this beautiful show Raftaar Vibes, your filmy ride's gonna be here, real filmy today. Musical.

0: रेडियो
1: बिल्कुल जी, चिल करो मेरी जान. अभी वर्किंग आवर्स, ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं. न्यू मस्ट बी हेडिंग बैक होम. तो चलिए जी, ऑफिस से निकल चुके हैं एंड ऑलरेडी हिटिंग द रोड. सो प्लीज ड्राइव केयरफुली. जितने भी ड्राइवर्स हमारा साथ दे रहे हैं, सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, ऑल सेट टू पार्टिसिपेट इन अवर गेम. जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए आई हैव गॉट यू टू एंट्री टिकट्स फॉर द सियक अशिल ऑफ जावटा. यस, ईच टिकट वैल्यूज ऑफ 700 रुपीज, यानी कि दो टिकट है मेरे पास वर्थ 1400 रुपीज टू गिव अवे टू यू right near, right here, right now in this beautiful show, and that's your Raftar Vibes with me, RJ Ganesh, on RMT Radio Masti. So, filhal ke liye puchenge bahut hi aasan sa sawal. Sahi jawab dene par, you can be the lucky winner. You can go and watch the Siak Zavila de Zavata. Siak Ashila Zavata. Here we go. Abhi puchenge ye sawal. Dhyan se sunega. On which two weekdays are the Siak Ashil Zavata performances held at 5:30 p.m. Aise हफ्ते में दो ही दिन होता है जब सिया काशिल जावटा में शाम को 5:30 बजे के शो होते हैं. सो वो दो दिनों का जो है नाम आप हमें बता दीजिए ऑन 5499-1294 पर 5499-1294. सेंड मी द राइट आंसर राइट नाउ, फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ. देन ओनली यू गोना बी एलिजिबल फॉर दिस गेम. यू जस्ट हैव टू टेल मी ऑन व्हिच टू वीकडेज आर द सिया काशिल जावटा परफॉर्मेंसेस हेल्ड एट 5:30 p.m. 5499-1294 पर. Send me the right answer. Best of luck to you.
2: RM2 Radio.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2 Well, guys, time beta chala jana chahiye. Rubishke, 27 minutes ho chuke hain. You're listening to Megan Ishan on RM2 Radio Masti. Yes, that's your number one favorite Bollywood station, Mauritius. जहाँ पे ये आपके ही पसंद के गाने हम लेकर आते हैं रोज़ और of course I've got you some cadeaus. यानी कि फिलहाल के लिए I've got you 2 tickets to watch the Siak Ashil Zavata. और हमने पूछा है एक बहुत ही आसान सा सवाल. On which two weekdays are the Siak Ashil Zavata performances held at 5:30 PM? और सही जवाब है Thursdays and Fridays. जी हाँ, Thursdays और Fridays को जो सिया काशिल जवाता है उनके परफॉर्मेंस शुरू होता है शाम के 5:30 PM. और सही जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया है, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी. लेकिन एज पर द रूल ऑलवेज वी कैन हैव ओनली वन लकी विनर. और आज के लकी ड्रॉ में नाम निकल आया

है नशरीन का जो रहती है पोर्ट लुइस. कांग्रेचुलेशंस टू यू नशरीन. बिल्कुल जी, कंग्रेचुलेशन टू यू नशरीन जो आज बन चुकी हैं हमारा लकी विनर. एंड यू आर विनिंग टू एंट्री टिकट्स, यस, टू वॉच द सिया काशिल ऑफ जावाटा. सो कंग्रेचुलेशन, यू वॉन्ट द टिकट्स टू सिया जावाटा. सो गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस माय डियर, फिल्ड विद मैजिक, थ्रिल्स, लॉफ्टर, स्पेक्टेक्युलर सर्कस परफॉर्मेंसेस फॉर द होल फैमिली. एक्चुअली यू कैन कैच सिया जावाटा एट बगाटेल. वी हैव शोज एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे एट 6 पीएम एंड सैटरडेज एंड संडे is at 2:30 a.m. that's p.m. and 5:30 p.m. yani ki 2:30 baje din ke 2:30 baje 2:30 p.m. and 5:30 p.m. to chale ji, bookings or information ke liye you can call on 5250 9413 5250 9413. Siak Zavata, don't miss the magical big show. So congratulations to you my dear. There will be someone calling you from the embassy to let you know how you can grab your tickets. Congratulations.

0: RM2 रेडियो मस्ती श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 3, 4 और 5 सितंबर 2026 हर शाम 6 बजे से हर कृष्ण मंदिर लॉन्ग माउंटेन 3 दिन का दिव्य उत्सव भक्ति आनंद और कृष्ण प्रेम का रंगों में रंगने का अवसर। भारत से पधारने वाले ऋषिगण मधुर कीर्तन गूंजती मृदंग की ताल और श्री कृष्ण की मनमोहक लीला में सबका एक ही हाल। बच्चों के लिए आनंद मेला, नाटक, नृत्य, गौ पूजा, श्लोक रेसिटेशन, क्विज और स्वादिष्ट महाप्रसाद। अपने परिवार के साथ जरूर आइए और बनिए श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का हिस्सा।
1: RM2
0: रेडियो मस्ती।

0: News, latest guru ke saath. Arvind ji, good afternoon.
1: Good afternoon, aapko. Good afternoon, Radio Masti listeners. So let's start with this good news. Swimming, jo Zone 4 championship chal rahi hai, African championship in Botswana. Mauritius ka pehla gold medal jeeta Ania Prayag. जो इस चैंपियनशिप में मॉरिशस के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत पाई 800 मीटर नाज लीब्र में 11 से 12 साल वाले कैटेगरी में उसकी जीत हुई दूसरे स्थान पर सेशेल्स से एमा लुई चिचुन और मालावी से दाविना कोंगी इसके बाद एथान अपोलो ने सिल्वर मेडल जीता 800 मीटर फ्री स्टाइल में ही तो गुड गोइंग हमारे इन युवा एथलीटों के लिए दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स और यहाँ पर इस स्तर पर अगर मेडल जीत पाते हैं सो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अ गुड वन फॉर द टीम लेट्स होप कि और मेडल आ जाए आखिरकार ट्रांसफर बाजार बंद हो गया और फाइनली कल लिवरपूल ने किसी खिलाड़ी को साइन नहीं किया सो लेफ्ट ओवर्स कुछ नहीं
0: नहीं आप क्या बोल रहे थे कि साइन किया ना लेकिन सबने साइन किया और उसके बाद उन्होंने किया इसका क्या मतलब हुआ
1: नहीं नहीं कल नहीं साइन किया
0: नहीं किया
1: आपको सुनने के बाद नहीं साइन किया सो दे वर हां एक दो खिलाड़ी आए एक दो खिलाड़ी गए बाकी क्लबों में जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्चुअली वो साइन करना चाहता था एक खिलाड़ी को लेकिन नहीं हो पाया मैनचेस्टर सिटी से तो एनीवे अब ट्रांसफर बाजार बंद लेट्स कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज आगे चलकर तो फुटबॉल अभी वीकेंड में जो होगा बताएंगे आज वैसे स्कॉटिश प्रीमियरशिप के काफी मैच खेले जाएंगे सेल्टिक का मुकाबला एबरडीन से डंडी से जॉनस्टन किलमोनोक सेंट मिरन मदरवेल डंडी यूनाइटेड फाल्कर्क रेंजर्स लीग चैंपियनशिप में मिलवॉल रेक्सम क्वींस पार्क रेंजर्स कार्डिफ वेस्ट ब्रॉमविच आल्बियन चार्ल्टन और बर्नले मिडल्सब्रो UEFA Women's Champions League के क्वालिफाइंग भी आज खेले जाएंगे थर्ड क्वालिफाइंग राउंड इनमें पेरिस सेंट जर्मेन खेलेगा एंट्राक्ट के खिलाफ एग्रीगेट 1-1 इंटर मिलान अगेंस्ट वुल्फबर्ग एग्रीगेट 2-0 वुल्फबर्ग अन्य इंटरेस्टिंग मैचों में रियल सोसिएदाद चेल्सी 5-2 से आगे हैं रियल मैड्रिड अगेंस्ट आयक्स 2-0 से रियल मैड्रिड फर्स्ट लेग के बल पर आगे और यूवेंटस की लड़कियां 3-0 से आगे हैं पोल्टन के खिलाफ ये वुमेन चैंपियंस लीग है लीग वन में भी मैच है जर्मनी जर्मन कप के फर्स्ट राउंड में आज बायर्न म्यूनिख खेलेगा ओस्नाब्रुक टीम के खिलाफ कोपा इटालिया के सेकंड राउंड में सासुओलो वर्सेस फ्रोजेनिनो और उडिनेज़े वर्सेस वेनेजिया ये सब मैच आज खेले जाएंगे कल भी काफी मैच रखे गए हैं और स्पेन के लालीगा में भी कल मैच है फ्राइडे को प्रीमियर लीग इज बैक विद इप्सविच वर्सेस लिवरपूल तो ये सब फुटबॉल को लेकर टेनिस में भी काफी कुछ चल रहा है जैसे US ओपन इन दिनों और सुबह सुबह मैच खेले जा रहे हैं तो कुछ रिजल्ट आपको दे दें सबसे पहले आज जो मैच होगा पेगुला वर्सेस केने शेल्टन हुरकाज गोफ ने अपना मैच जीता सुनमेज के खिलाफ 6-3, 6-4 वेरेव भी अपना मैच जीत पाया दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट 5 सेट तक जाना पड़ा वेरेव को 2 AM ये मैच पूरा हुआ मेडवेदेव आज खेलेगा गोजनी के खिलाफ मोफिस 40 साल का है और अपने बर्थडे के दिन उसने अपना मैच जीता वालेगो के खिलाफ सो आज भी मैच जारी रखेंगे कल सुबह इन सब पर आपको जानकारियां देंगे और ऑल द बेस्ट टू आवर स्विमर्स हु आर डूइंग वेरी वेल हमारी स्विमिंग टीम ऐसे ही तैरते रहो और मेडल लाते रहो हम भी अभी बारिश हो रही है तो तैरते हुए तो नहीं जाएंगे
0: लेकिन रेडियो मस्ती सुनते हुए जाएंगे
1: तैरना था आपको
0: ऑफ कोर्स ब्रो
1: ओके गुड गुड नहीं तैरना मॉरिशस के सभी लोगों को तैरना सीखना चाहिए
0: बिल्कुल जी शिव अदरवाइज हाउ टू से कि वी लिव ऑन एन आइलैंड और तैरना नहीं आता है
1: और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स की ओर से मॉरिशस स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से बच्चों के लिए स्विमिंग ट्रेनिंग शुरू हो रहा है मॉरिशस में जो स्विमिंग पूल्स हैं जैसे सर्ज अल्फ्रेड जैसे रिवियर डू रॉम्पा फिर रोजबेल में भी तो इन सभी स्विमिंग पूल्स में बच्चों के लिए 7 से लेकर 17 साल के बच्चों के लिए स्विमिंग सिखाया जाएगा और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कल या परसों इट्स द लास्ट डे तो आपके घर के पास जो स्विमिंग पूल है पूल नहीं है स्विमिंग पूल द नेशनल वन तो जाकर वहां पर रजिस्टर करवाइए अभी छुट्टियां आने वाली हैं बच्चों के लिए अच्छा होगा सो ड्यूरिंग हॉलीडेज दे कैन एंजॉय द वॉट

0: ही वे। बिल्कुल जी, मेरा भी तो मन कर रहा है कि मैं भी डांस करूं और मैं भी बोलूं रब्बा रब्बा माही वे। सच ब्यूटीफुल एंड मेसमराइजिंग गाने माय डियर, स्पेशली फॉर यू ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
0: खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर माय डियर एंड लवली पीपल। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आई हैव गॉट यू वन मोर गेम। वादे के मुताबिक हम फिर से गेम लेकर आए, आई हैव गॉट यू वन मोर कैडोज। सो माय डियर एंड द लवली लवली पीपल आउट देयर जो साथ दे रहे हैं अभी के लिए, यू कैन पार्टिसिपेट। जी हाँ, यू कैन पार्टिसिपेट विद अस ऑन RM2 रेडियो मसी एंड विन अ गोल्ड टिकट टू असिस द स्पेक्टेक्युलर शान लाइव इन कॉन्सर्ट इन मॉरिशस। यस माय डियर, सो प्ले विद RM2 रेडियो मसी एंड स्टैंड अ चांस टू विन अ गोल्ड टिकट राइट नाउ राइट अवे। सो जस्ट टू लेट यू नो एंड दिस गेम इज पावर्ड बाय ticketbox.mu and actually when you close your eyes and let the music take on your journey, you're gonna meet Shan, yes, the famous singer. And now RM2 Radio Mast is giving you the chance to experience this magic live in Mauritius. So play with us and stand the chance to win the gold ticket right now right away, and you can assist the spectacular Shan live concert, one voice one stage one unforgettable night, only at SVICC at Pai on the 5th of September 2026 as from 8 PM and it's proudly organized by ticketbox.mu. So abhi ke liye sawal jo bahut hi aasan hai, yes, pay attention, listen to me very carefully, send me the right answer on 54991294 par 5499294. Ji haan, grab your mobiles, open up your WhatsApp ya normal messages ke zariye, just be ready to type the right answer. Chaan Sifarish by Shan is featured in which Bollywood movie? The song Chaan Sifarish, it's taken from which movie? Is it A Fana, B Savariya ya Teen Three Idiots? 5499194 par send me the right answer, full name and full address ke saath. The song Chaan Sifarish, F Sifarish, it's taken from which movie? This beautiful song by Shan is featured in which Bollywood movie? Is it Fana, Savariya ya Three Idiots? The right answer on 5499194 par.
2: RM2 Radio Musti.

0: हाय हाय मेरी जान, दूसरे के चक्कर में ही है। इसके चक्कर में आपने दूसरे को नहीं बताया, ये तो गलत बात हो गई ना।
1: तीन बार बोल दिया, अब आगे बढ़ो।
0: हाय हाय, आगे बढ़ेंगे जरूर मेरी जान। अभी इट्स टाइम टू अनाउंस द लकी विनर्स। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

थैंक यू जी साथ देने के लिए ऑन ऑल राइट रेडियो मसी एंड यस, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इट्स टाइम टू अनाउंस द लकी विनर हु इज विनिंग अ टिकट, अ गोल्ड टिकट टू वॉच लाइव इन कॉन्सर्ट शान इन मॉरिशस। एंड यस, हमने पूछा था एक बहुत ही आसान सा सवाल और हमने पूछा था कि द सॉन्ग फना, द सॉन्ग चांद सिफारिश एक्चुअली इट्स टेकन फ्रॉम विच मूवीज, इट फना सावरिया या थ्री इडियट्स, एंड द राइट आंसर इज फना। सो थैंक यू सो मच टू ऑल दोस जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इट्स सो नाइस टू नो कि आप सभी लोग इतने उतावले हैं जीतने के लिए दिस टिकट टू वॉच शान लाइव इन मॉरिशस। जी हाँ, द राइट आंसर इज फना और आज का हमारा लकी विनर है, जो हमारे लकी ड्रॉ में नाम निकल आया है, वो है जयकरन रामदेवी फ्रॉम कैथरबोन। So congratulations to you, Jay Karanji. You are from Catrobone. Thank you so much for giving us the right answer. And yes, you are winning a gold ticket to watch this concert live, which is organized by Gravity Zero. Shan Live in Mauritius is set to the spectacular evening of Bollywood music and even nostalgia, taking place on Saturday, 5th of September 2026 at SVICC at Pai, raat ki 8 baje se. So one of Bollywood's most celebrated voices, Shan is known for his iconic hits, including Chand Sifarish, Behti, हवा सा था वो, जब से तेरे नैना, कुछ तो हुआ है, ओम शांति ओम, अरे मेरी जान बहुत है। सो ही विल टेक द स्टेज अलोंग हिज अलोंग साइड 28 मेंबर क्रू, उनके साथ जो इंडिया से आएंगे फॉर व्हाट ही एक्चुअली विल बी द बिगेस्ट शान कॉन्सर्ट एवर प्रोड्यूस इन मॉरिशस येट। टिकट्स आर अवेलेबल ऑन ticketbox.mu एंड एट ticketbox.mu kiosk at Tribeca Mall। सो कंग्रेचुलेशंस आज का लकी विनर जयकरन रामदेवी फ्रॉम कैथरबोन। So while guys stay tuned and stay connected, filhal ke liye I've got you this beautiful track, Alisha Chinoy aur KK ki awazon mein, I love you for what you are. Thodi der mein of course we'll be having the news flash, so stay tuned and stay connected. RN2

0: रेडियो मस्ती।
1: जब तू गाड़ी चलावे ला का तू जाने ला कि आगे का हो सकी, एगो दुर्घटना लो तो अपान हो सकी, ये सब कुछ सीमा पर होते रहेला, पर ये सब मुश्किल घड़ी के सामना अकेले नहीं करे के चाहे। सिकोब के संगे तोहरा कोनो चिंता नहीं करे के है, काहे कि हमनी के लासी हौस तोहर खया

0: जस्ती जानकारी हमने के वेबसाइट sikkim.mu पर पाई सकब। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
1: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
2: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और KG क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय RR रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। RKG क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
3: RM2
4: रेडियो मस्ती।
3: RM2 रेडियो मस्ती।

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: स्टूडियो की घड़ी में 5:26 हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। इट्स मी आरजे अग्निश ऑन द माइक, साथ दे रही हूँ अगर अभी है रात के 7 तक विद सम गुड गुड मेसमराइजिंग गाने। टू ऑल दोस हू आर ड्राइविंग ड्राइव केयरफुली, टू ऑल दोस हू आर वर्किंग बोंको हाश टू यू माय डियर, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए।
1: आरएम2 रेडियो

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: OM2. That was such a beautiful track, especially for you, my dear lovely people. That was Neha Kakkar on RNT Radio Masti. I really hope itne khoobsurat gaano ka selection sunke aap bhi has rahe ho, smile kar rahe ho and enjoy kar rahe ho. And I know what a beautiful time hai na. Raftaar jitne bhi hamare Raftaar family hamara saath de rahe hain. Seriously, ye jo vakt hota hai na, jaise ki abhi 5:35 ho chuke hain. It's a beautiful time. Din dheere dheere khatam ho raha hai. Sky ka color jo hai na, change ho raha hai. Roads pe rush bhar raha hai. Aur हर कोई अपने घर की तरफ निकल पड़ा है और किसी का जो ऑफिस खत्म हो चुका है, कोई शॉपिंग के लिए निकल चुका है, कोई बच्चों को पिक कर रहा है ट्यूशन से, या कोई बस एक ही चीज सोच रहा है कि घर जाके रिलैक्स करना है क्योंकि आज थक गई है. सो अगर आप भी रोड पे हो तो टेक इट इजी. जर्नी थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, ट्रैफिक जो है थोड़ा कभी इरिटेटिंग भी हो सकता है, लेकिन हम है ना आप लोगों का साथ देने के लिए. रफ्तार वाइब्स घर तक का सफर म्यूजिक के साथ हमेशा ऑन ऑरेंज ट्यू रेडियो मस्ती. सो अभी के लिए चलिए जी, आई हैव गॉट यू द नेक्स्ट सॉन्ग जो हम लेकर आए हैं और डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं, एंड स्पेशली फॉर यू माय डियर. यानी कि किसी ने लिखा है कि यह अगला गाना एक बर्थडे विश के लिए है, यानी कि आज सब काना दादा राज दादी अनीता पापा अनिश मामा मनीषा बहन हिमेशा छोटे पापा अंकुश छोटी माँ आशिमा और जो कजिन आडिया नाना सुनील नानी लता मामू आदर्श की तरफ से बहुत बहुत वो को आज टू यू माय डियर. दैट्स अनीता फ्रॉम फिकॉन फ्लैक. थैंक यू सो सो मच माय डियर. तो ये अगला गाना स्पेशली आपके नाम. एंड वी डू हैव रेबिका बोलती है फॉर यू माई बेबी अर्शद, यानी कि आपके हस्बैंड के नाम. एंड द नेक्स्ट वन गोज आउट सारे बच्चों के लिए श्रेया आर्य नील जो मोताई ब्लाउश के रहने वाले हैं. सो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू माय डियर एंड लवली लवली किड्स आउट देयर जो साथ दे रहे हैं. तो चलिए लेट्स हिट माय वे ऑन आवर एंट्री रेडियो मस्ती शान एंड श्रेया घोषल की आवाजों में. यस, आजकल तो शान के गाने ही चल रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती, क्योंकि बहुत ही जल्द ही इज गोना बी लाइव इन कॉन्सर्ट इन मॉरिशस ऑन द 5th ऑफ

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2 फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
2: पांच बज के 44 मिनट हो चुके हैं। जहां दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि गणेश चतुर्थी

0: बहुत ही जल्द मनाया जाएगा और अभी फुल ऑन तैयारियां चल रही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। आज हम टिप्स देंगे गणेश चतुर्थी फैशन टिप्स फॉर गाइस। थोड़ी दिन पहले हमने दी थी फॉर लेडीज साड़ीज के लिए और आज बात करेंगे लड़कों के लिए। सो अगर आप कुर्ता पहनना पसंद करते हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सिंपल क्लासी और फेस्टिव लगना चाहोगे सो जस्ट वेयर सिंपल कुर्ता प्लस वाइट पजामा, और अगर पेस्टल कलर्स लाइक करते हो जैसे कि क्रीम पीच पीच जो है मिंट जो है या स्काई ब्लू, इट्स एक्चुअली गिव्स यू अ फ्रेश लुक। नेहरू जैकेट ऐड करोगे ना तो इट्स गोइंग टू बी अ मोस्ट स्टाइलिश वाइब। कोल्हापुरी चप्पल मोजरी जो है सो ट्रेडिशनल टच लेकर आते हैं। एक्सेसरीज जो है ना मिनिमल रखो गाइस, वॉच एंड अ सिंपल ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। फिट इज ऑलवेज किंग, कुर्ता ना टू लूज होना चाहिए ना ज्यादा टाइट होनी चाहिए। सो गणपति सेलिब्रेशन के लिए कंफर्टेबल एंड ब्रीदेबल फैब्रिक चूज करो, यानी कि आप कॉटन पहन सकते हो।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाई हरकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

बुधवार 2 सितंबर 2026 की सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस को अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट यानी अगवा के तहत अमरीकी बाजार में मिलने वाली तरजीही पहुंच अब 31 दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी। इससे पहले इस व्यवस्था को इस साल की शुरुआत में 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया था। पिछली 8 अगस्त को अमरीकी सेनेट की मंजूरी के बाद अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने भी कल इस विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी दी। लंदन में प्रधानमंत्री बदलने के बावजूद शागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन का रुख मॉरिशस के साथ समझौते को लेकर बरकरार है। कल संसदीय अवकाश के बाद संसद के पहले प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने इस मुद्दे पर सवाल किए। मुलाकात इस बुलेटिन में मॉरिशस के दो ऐसे युवाओं से जिनकी उपलब्धियां बेहद खास हैं, लक्ष्य बुदादू और उरुशा जीतन को अमरीकी कंपनी कोलोसल लेबोरेटरीज एंड बायोसाइंसेस की ओर से छात्रवृत्ति मिली है। ये कंपनी डोडो को फिर से जीवित करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक शोध कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद 8वें दिन भी राहत और लापता लोगों की तलाश का अभियान जारी है, जबकि आपदा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नेपाल पुलिस के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 1093 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 4500 लोग अब भी लापता हैं। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। अमेरिका ने अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट यानी अगवा को 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। पिछले 25 वर्षों से लागू ये व्यापार कार्यक्रम मॉरिशस समेत उप सहारा अफ्रीका के कई देशों को अमरीकी बाजार में तरजीही पहुंच प्रदान करता है। पिछली 8 अगस्त को अमरीकी सेनेट की मंजूरी के बाद अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने भी कल इस विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी। अगवा की अवधि बढ़ाने के लिए मॉरिशस ने इस साल मई और जुलाई में 2 बार अपनी दलीलें और प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखे थे। ये विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब मॉरिशस 6 से 9 दिसंबर तक होने वाले 18वें अमेरिका अफ्रीका बिजनेस समिट की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अगवा का 2 साल का विस्तार मॉरिशस के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय पर आया है। लंदन में प्रधानमंत्री बदलने के बावजूद शागोस द्वीप समूह के मुद्दे पर ब्रिटेन की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। इसका स्पष्ट संकेत कल वेस्टमिंस्टर से मिला, जहां संसदीय अवकाश के बाद संसद के पहले प्रश्नकाल के दौरान सरकार से इस मुद्दे पर सवाल किए गए। ब्रिटिश सरकार ने पुष्टि की कि मॉरिशस के साथ हुआ समझौता अब भी उसके एजेंडे में शामिल हैं और इस समझौते के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान मौजूदा सरकारी बजट में अब भी मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री सकर स्टामर ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। इस निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें बदलने के लिए जल्द ही एक उपचुनाव होगा, जहां वे 11 वर्षों से चुने गए थे और जिसे लेबर पार्टी के लिए सुरक्षित माना जाता है। खबरों का आगे बढ़ाते हैं। आज शाम मुलाकात हम करते हैं मॉरिशस के 2 ऐसे युवाओं से जिनकी उपलब्धियां बेहद खास हैं, लक्ष्य बुदादू और उरुशा जीतन को अमरीकी कंपनी कोलोसल लेबोरेटरीज एंड बायो

0: साइंसेज की ओर से छात्रवृत्ति मिली है। ये कंपनी डोडो को फिर से जीवित करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक शोध कर रही है। दोनों छात्र इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत जीनोम इंजीनियरिंग और संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल जैसे क्षेत्रों में काम करेंगे। इस तरह मॉरिशस के इन दो युवा प्रतिभाओं को हाल के वर्षों की सबसे क्रांतिकारी वैज्ञानिक परियोजनाओं में से एक में योगदान देने का अवसर मिला है। डोडो को फिर से जीवित करने की कोशिश में अब मॉरिशस की भी अपनी वैज्ञानिक छाप दर्ज हो रही है।
1: ये दुनिया के वैज्ञानिक जगत की सबसे साहसिक परियोजनाओं में से एक है, डोडो को फिर से जीवित करना। मॉरिशस का ये प्रतिष्ठित पक्षी जेनेटिक्स की मदद से दोबारा अस्तित्व में आ सकता है और इस रोमांचक अभियान के केंद्र में मॉरिशस के दो युवा छात्र हैं। उन्हें अमरीकी कंपनी कोलोसाल लेबोरेटरीज एंड बायोसाइंस से शोध के लिए छात्रवृत्ति मिली है।
2: We welcome Arusha and Lakshay.
1: हम उरुषा और लक्षय को अपनी टीम में स्वागत करते हैं। उरुषा हमारे कंसर्वेशन टीम के साथ काम करेगी जबकि लक्षय जेनेटिक मॉडिफिकेशन टीम के साथ काम करेगा। शोधकर्ताओं की टीम ने डेनमार्क के एक संग्रहालय में रखी दो की खोपड़ी से निकाले गए डीएनए का इस्तेमाल करके दो के जीनोम को पहले ही अनुक्रमित और पुनर्निर्मित कर लिया है। अब वे डीएनए के एक एक हिस्से को फिर से तैयार करके दो की विशेषताओं को दोबारा विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लक्षय बुदादू कहते हैं,
3: Nous vous prenons une bout de l'ADN du dodo qui nous pour injecter dans ma cellule. Sa cellule là nous pour réinjecter lui dans le Nicobor pigeon. Il est là quand ça pigeon là il pour connaître 19, nous pour gagner une nouvelle génération. Sa nouvelle génération là il pour avoir un changement de sa petite boule ADN qu'il nous a ajouté là. Là, ça disait là, nous avons fait les clous, nous pouvons gagner un nouveau pigeon. Sa pigeon là, nous avons grandi. Et là, oh, sa pigeon là, nous pourrions faire même affaire que nous pouvons injecter un petit bout de l'ADN encore là-dedans. Et petit à petit, de génération en génération, nous pourrions ici arriver à un affaire qui est closely related à nous deux qui nous tiennent.
4: Chaque fois qu'il nous peut prendre un petit échantillon de l'ADN, il peut coûter pour une petite caractéristique spécifique. Donc, il y a un bout de l'ADN qui peut plus pour se laver, il y a un pour se liger, il y a un pour se grossir.
1: ये छात्रवृत्ति इस पक्षी को उसकी मातृभूमि में वापस लाने का रास्ता भी तैयार कर रही है। वहीं उरुषा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञता हासिल कर रही है, संरक्षण के पहलू पर ध्यान केंद्रित करेगी। उरुषा जीतन कहती है, इन जानवरों पर कैमरा डेटा बिठाए गए हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डेटा का विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि अलग वातावरणीय स्थितियों में एक जानवर का बर्ताव कैसा है। जैसे एक दो की आवाज को हम ट्रैक कर सकते हैं। इस ध्वनि से हमें पता चल जाता है कि ये जानवर ठीक है या नहीं। दो की ध्वनि नहीं है हमारे पास, पर दो के आसपास मौजूद अन्य जानवरों पक्षियों के माध्यम से हमें दो तक जाने का रास्ता मिल सकता है। इन दोनों छात्रवृत्तियों को मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और कोलोसाल कंपनी के बीच हुए एक समझौते के कारण संभव बनाया जा सका है। नंदिनी गुली गोपाला कहती हैं,
5: कोलोसाल और आईबीएल ने साइन किया एक कोलैबोरेशन।
1: कोलोसाल और आईबीएल ने सहयोग और आदान प्रदान के इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा उद्देश्य है दो परियोजना का हिस्सा बनना। अब फेलोशिप के माध्यम से ये परियोजना सफल हो पा रही है। इन दोनों युवा मॉरिशियनों को मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के मुख्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान औपचारिक रूप से उनकी शोध छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।
0: जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि लंदन में प्रधानमंत्री बदलने के बावजूद शागोस्की द्वीप समूह के मुद्दे पर ब्रिटेन की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। ब्रिटिश सरकार ने पुष्टि की है कि बदलाव की मॉरिशस के साथ हुआ समझौता अब भी उसके एजेंडे में शामिल है और इस समझौते के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान मौजूदा सरकारी बजट में अब भी मौजूद है। सुनते हैं।
6: संसद का कामकाज फिर से शुरू होते ही मंगलवार 1 सितंबर को शागोस मुद्दे को लेकर नए प्रधानमंत्री एंडी बरहम की सरकार से सवाल किया गया। फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस से जुड़े सवाल जवाब के दौरान कंजर्वेटिव सांसद डॉक्टर ल्यूक इवांस ने पूछा कि क्या यूके और मॉरिशस के बीच हुए समझौते के तहत भविष्य में होने वाले खर्च के लिए धन की व्यवस्था की गई है। एससीडीओ के पार्लियामेंट्री

0: Undersecretary Uma Kumaran ने कहा,
1: This is about the long-term safety and national security.
0: ये मामला यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश लोगों की लंबे समय तक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। अड्डे पर लंबे समय तक संचालन संबंधी नियंत्रण और उसकी सुरक्षा बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से है। यूके और मॉरिशस के बीच हुए समझौते का पूरा आधार यही है। इस समझौते में वित्तीय व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इस समझौते के लिए धन फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और रक्षा मंत्रालय के मौजूदा बजट के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। कंजर्वेटिव सांसद वेंडी मॉर्टन ने जब इस समझौते को लेकर अमेरिका के समर्थन के बारे में सवाल किया तो उमा कुमारन ने जवाब दिया, अमेरिकी प्रशासन ने इस समझौते का बार बार समर्थन किया है और जब से अमेरिका ने पहली बार इस समझौते को मंजूरी दी थी तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमने हमेशा साफ कहा है कि समझौते को मंजूरी देने और इसकी पुष्टि करने से पहले अमेरिकी सरकार की सहमति जरूरी है। हम अमेरिका और मॉरिशस के साथ मिलकर आगे का रास्ता तलाशते रहेंगे जो यूके के हित में हो और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करे। अब अगला कदम न्यूयॉर्क में हो सकता है जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर बैठक होगी। नए बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संभावित मुलाकात से शागस मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ाने और वाशिंगटन की स्थिति को स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है।
2: वॉइस ऑफ हिंदू के सदस्यों ने कल शाम कैटरबोन में एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया था। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी जिनमें विदेशी श्रमिकों की स्थिति, ड्रग्स और नेपाल में घातक बाढ़ शामिल रहे। वॉइस ऑफ हिंदू के अध्यक्ष खित मनोहर को सुनते हैं।
3: नेपाल dans sa situation très très difficile et nous remercier ban pays qui peut aider Nepal et mon pensée qui l'île Mauricie, pour donner un petit coup de main, bah, Népalais, Pessibir, il arrive près de 3000 disparus et nous pensons dans nous la prière.
2: और जैसे हम आपको बता रहे थे कि सुर्खियों में नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद आठवें दिन की राहत और लापता लोगों की तलाश का अभियान जारी है जबकि आपदा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नेपाल पुलिस के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 1093 लोगों की जान जा चुकी है जबकि करीब 4500 लोग अब भी लापता हैं। कई जल परियोजनाओं की सुरंगों में राहत कर्मी उन कामगारों को तलाश रहे हैं जो कीचड़ और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। आपदा की भयावहता को देखते हुए सरकार ने प्रभावित क्षेत्र को 3 महीने के लिए संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। राजधानी काठमांडू में अज्ञात पीड़ितों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया लेकिन इस त्रासदी के बीच मानवीय एकजुटता की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बिदुर में युवा स्वयंसेवकों ने एक सहायता केंद्र बनाया है जहां प्रभावित परिवार अपने मोबाइल फोन चार्ज कर पा रही हैं और लापता परिजनों की तलाश के दौरान एक दूसरे के संपर्क में बनी हुई हैं। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल रसूवा में बच्चों के चेहरों पर फिर मुस्कान दिखाई दी। वे एक फुटबॉल के आसपास खेलते नजर आए। मलबे और तबाही के बीच ये कुछ पल की बेफिक्री मानो उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी बनकर सामने आई है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर बेहतर तरीके से पूर्वानुमान लगाने के लिए मॉरिशस में एमस्टर यानी मॉरिशस स्ट्रैटेजिक टूल फॉर द असेसमेंट ऑफ रिस्क परियोजना शुरू की गई है। इस उपकरण की मदद से अधिकारी ये पहचान सकेंगे कि देश की कौन सी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाएं जलवायु और आपदा संबंधी जोखिमों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इससे सरकारी धन और निवेश को सही दिशा में लगाने के साथ साथ देश की आपदा रोधी क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी दमास्कस और नेशनल डिजिटल रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर शामिल है। परियोजना को ब्रिटिश हाई कमीशन का भी समर्थन प्राप्त है।
4: बाढ़, तूफान, पानी का उमड़ना, जलवायु खतरों के चलते एम्स्टर परियोजना को लॉन्च किया गया। एम्स्टर परियोजना के कोऑर्डिनेटर तथा यूनिवर्सिटी ऑफ मस्कारेन्स के डॉक्टर जय दुर्गा ने कहा,
5: सैटेलाइट
4: जानकारियों के आधार पर हम इनमें से कुछ डाटा का पता लगा रहे हैं। जलवायु केंद्रों की ओर से

ये डाटा प्रोसेस किए गए हैं, जिनके अंतर्गत लंबी अवधि के लिए पूर्व सूचना की जा चुकी है, जलवायु खतरों को कैप्चर किया जा चुका है, अब हम इनका मूल्यांकन करेंगे, वर्तमान एवं मूल ढांचों से संबंधित है। इस औजार की बदौलत महत्वपूर्ण मूल ढांचों की कमजोरी के बारे में जानने का

0: आया, इस परियोजना के तहत ये देखा जा रहा है कि विगत में यानी पिछले 30-40 वर्षों में किस तरह देश जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुआ, मॉरिशस में किस तरह के प्रकोपों का सामना करना पड़ा, मसलन मिट्टी का कटना जैसे कि माकोंदे सड़क के पास आदि। इन जानकारियों की बदौलत अधिकारीगण निर्धारित कर पाएंगे कि प्राथमिक तरीके से किन ढांचों को सुरक्षित रखना है और किस तरह बेहतर रूप से निवेश दिशा देनी है। डॉक्टर जयदुर्गा ने आगे बताया, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित इलाकों को लेकर चिंतन कर रही है, ये भी देख रही है कि किस तरह के अनुकूल अडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज हैं। ये रोड मैप है जिसके अंतर्गत सरकार को प्रस्तावित कर रही है कि कहां पर सही तरीके से निवेश करना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से संचालित परियोजना एम्स्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ मस्कारेंस और नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट सेंटर की साझेदारी से चलाई जा रही है। बरतानी उच्चायोग का भी समर्थन प्राप्त है। अनुमान है कि एम्स्टर 2027 के मध्य तक पूरी तरह से कार्यरत हो सकती है।
1: नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के साथ मिलकर भावी दमकल कर्मियों को ड्रग ओवरडोज की स्थिति में प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करने के लिए तैयार कर रही है। इस पहल के तहत 70 से अधिक नए भर्ती हुए दमकल कर्मियों को ओवरडोज के प्रमुख संकेतों की पहचान करने और ऐसी स्थिति में तुरंत उठाए जाने वाले प्राथमिक कदमों के बारे में जानकारी दी गई। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के लिए इस तरह का ये पहला सहयोग है। आंकड़ों के अनुसार 2024 में मॉरिशस में ओवरडोज के करीब 60 मामले दर्ज किए गए थे। राष्ट्रसभा में ख्योल मोरिशियन भाषा के इस्तेमाल और उसकी प्रक्रिया की समीक्षा के लिए गठित सिलेक्ट कमेटी ने इस मुद्दे पर आम जनता से अपने सुझाव और विचार प्रस्तुत करने की अपील की है। लिखित सुझाव याचिकाएं या ज्ञापन संसदीय कार्रवाई के दौरान ख्योल मोरिशियन के इस्तेमाल, इससे जुड़ी प्रक्रियाओं, आधिकारिक कार्यवाही के रिकॉर्ड और संसदीय बहस को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने जैसे विषयों पर दिए जा सकते हैं। अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 22 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। सभी पत्राचार नेशनल असेंबली के क्लर्क के नाम भेजे जाने हैं। मॉरिशस में 300 साल से अधिक पुरानी मॉरिशस एसोसिएशन ऑफ नोटरी ने कल यानी मंगलवार 1 सितंबर को पोर्ट लुइस में अपने पहले आधिकारिक मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश रिहाना मंगली गुलबुल और न्याय मंत्री गाविन तथा अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये उद्घाटन हिंद महासागर क्षेत्र के नोटरी सम्मेलन 2026 के तहत हुआ, जिसका आयोजन मॉरिशस में 1 से 4 सितंबर तक किया जा रहा है। इस सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों और द्वीपों से आए प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा ले रहे हैं। बढ़ती उम्र की आबादी के साथ बुजुर्गों की देखभाल मॉरिशस की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लगातार महत्वपूर्ण चुनौती बनती जा रही है। इसी दिशा में जीतू अस्पताल में बुजुर्ग मरीजों के लिए तीव्र चिकित्सा देखभाल की नई इकाइयां शुरू की गई हैं। इन नई इकाइयों में जेरियाट्रिक यानी बुजुर्गों के स्वास्थ्य उपचार से जुड़ी सेवाओं को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य बुजुर्ग मरीजों को उनकी विशेष स्वास्थ्य जरूरतों के अनुरूप बेहतर और अधिक समर्पित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। कृषि क्षेत्र में कीटों पर बेहतर नियंत्रण के लिए मॉरिशस ने एक नई टेक्निक अपनाई है। देश में अब एक्सरे इरेडिएटर की सुविधा उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल फलों की मक्खियों को निष्क्रिय यानी बांझ बनाने के लिए किया जाएगा। इस उपकरण का उद्घाटन बुधवार को रेजवी में किया गया। ये अब तक इस्तेमाल की जा रही गामा किरणों पर आधारित प्रणाली की जगह लेगा। ये नई टेक्निक अमरीकी ऊर्जा विभाग और लॉरेंस लिवमोर नेशनल लेबोरेटोरी के साथ साझेदारी का परिणाम है। इस टेक्निक के जरिए बांझ नर फलों की मक्खियों को वातावरण में छोड़ा जाएगा ताकि उनके प्रजनन को कम किया जा सके और इस तरह फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले इन कीटों की संख्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। मॉरिशस अपनी ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था के भविष्य को नए सिरे से आकार देने के साथ साथ छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले कारीगर मछुआरों के हितों की रक्षा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी उद्देश्य से एफ्रीसेज क्षेत्रीय परियोजना के तहत मॉरिशस को करीब 30 मिलियन रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। ये परियोजना ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप सदर्न अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की साझेदारी में संचालित की जा रही है।

0: इस पहल के तहत मॉरिशस के करीब 2,500 रोड्रिक्स के 1,700 मछुआरों को विभिन्न प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य मछली पकड़ने को अधिक टिकाऊ, अधिक लाभदायक और पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार गतिविधि बनाना है, साथ ही स्थानीय मछुआरों की आजीविका को सुरक्षित करना भी है। और इस क्षेत्र में रहते हैं समुद्री संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अधिक प्रभावी कार्यवाही के लिए मॉरिशस में वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम को लागू किया जा रहा है। एल्बियो के फिशरी रिसर्च सेंटर में निगरानी अब दूर से और वास्तविक समय में की जा रही है। इसके जरिए मछली पकड़ने वाले जहाजों की भौगोलिक स्थिति और उनकी पकड़ की निगरानी की जा सकती है। इस डिजिटल बदलाव को तेज करने के लिए संबंधित नियमों में जल्द ही संशोधन किए जाने की उम्मीद है। इसका देश समुद्री गतिविधियों की निगरानी को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। अंत में एक सवाल, क्या हो अगर प्रकृति के रंग खुद एक कहानी कहने लगी? पिछले 2 वर्षों से शक्ति कालिकाओं ने मॉरिशस के अलग अलग हिस्सों की यात्रा कर पेड़ों की झाल, पौधों और प्राकृतिक सामग्रियों को तलाशा और उनसे प्राकृतिक रंगों के पिगमेंट तैयार किए। इसी खोज से जन्म हुआ एमुवॉस नामक एक किताब का, जिसमें कला, कविता और प्रकृति का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। शक्ति कालिकाओं इस किताब का वितरण खुद कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे सबसे पहले पाठकों के साथ सीधे संवाद और इस रचना को साझा करने का महत्व देना चाहते हैं। एमुवॉस का उद्देश्य हमें फिर से सुंदरता की ओर लौटाना है, उस प्रकृति और आसपास की उन चीज़ों की ओर जिन्हें हम अक्सर रोज़मर्रा की भागदौड़ में देखना भूल जाते हैं। ये किताब मानो एक नियंत्रण है, थोड़ा ठहरने, चीज़ों को एक नई नज़र से देखने और अपने आसपास मौजूद सुंदरता को फिर से महसूस करने का।
1: 2 वर्षों तक शक्ति कालिकाओं ने रंगों को निकालने के लिए सामग्री, वस्तुओं, पेड़ों की छाल और पौधों की तलाश में पूरे द्वीप का दौरा किया है। इस्तेमाल की गई हर सामग्री ने एमुवॉस नामक उसकी पुस्तक के पन्नों को संजोने में मदद की है। शक्ति कालिकाओं कहती है, इसकी कल्पना मैं करती रहती हूँ, ये सब सामान कोयला, लोहा, पौधा, इतिहास में कैसे इसका प्रयोग होता है। तब मैं इतिहास की खोज में निकली। मेरी खोज के दौरान मुझे पता चला कि मॉरिशस ने खुद अपने लोहे का उत्पादन किया है। शक्ति के पास बहुत से दिलचस्प किस्से हैं। अपनी मुलाकातों और अनुभवों के दौरान उसने कई खोज की है और अपनी इन खोजों से उसने कलाकृतियां तैयार की हैं। शक्ति कालिका कहती है,
2: मैं retrouve une plante qui appelle indigo, c'est une couleur qui blé. Au fait, sa couleur blé là, indigo, vient depuis une plante, depuis ce feuille.
1: पाठक को इसमें कुछ लेख भी मिलेंगे जो एक मार्गदर्शक का काम करते हैं।
2: couleur qui me trouvait l'eau du territoire, ça veut dire l'eau l'île même, et à travers sa histoire Maurice, sa grande histoire Maurice là, raconte aussi une histoire tout ça van dimun qui travaille pour que Maurice vienne ça qui nous connaît aujourd'hui.
1: ये पुस्तक स्वयं लेखिका द्वारा वितरित की जा रही है क्योंकि वो सबसे पहले पाठकों के साथ सीधे जुड़ने और अपनी रचना साझा करने को प्राथमिकता देना चाहती है। एमुवॉस एक ऐसे गीत की तरह है जो हमें सुंदरता की ओर, हमारे आसपास मौजूद उन चीजों की ओर वापस ले जाना चाहता है जिन्हें देखने के लिए हम कभी कभी समय निकालना भूल जाते हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिस्र के पूर्वी हिस्से में आज बुधवार सुबह हुए एक भीषण बस हादसे में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है जबकि 28 अन्य घायल हुए हैं। ये दुर्घटना दक्षिण सिनाई प्रांत में रेड सी के तटीय शहरों दहाब और नुवेबा के बीच सड़क पर हुई। मिस्र और जॉर्डन की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हादसे में मारे गए लोगों में 10 तक जॉर्डन के नागरिक शामिल हो सकते हैं। दुर्घटना के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। ये इलाका दुनिया भर में पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि हादसे के समय बस में कुल कितने लोग सवार थे। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सभी घायलों को 3 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। बढ़ते हैं हम अब मौसम के हाल की ओर गीता सुनारायण के साथ।
3: हमारे

इलाके पर हल्की अस्थिर हवाएं चल रही हैं। आज रात बादल घिरे रहेंगे और रहकर बारिश होगी, खासकर पूर्व और ऊंचे इलाकों पर। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों और हवाई ढलानों पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 20 से 23 और साहिली इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह समुद्र की स्थिति में सुधार आने लगेगा। दूर समुद्र में और दक्षिण के समुद्र में आज रात न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:17 पर सूरज निकलेगा।

0: तो इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयार में पूरे समाचार डेस्क का और सहयोग देने वाले शिव का भी सहयोग मिला है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शुक समाचारों की ओर।
1: NBC Play, NBC Radio.tv.
0: शुभ समाचार सुनिए। जगू रोड बेलमो में, जगू रोड बेलमो में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड की श्री दिमनदेव मदन, जिन्हें मनोज मासों के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके बेटे जयप्रकाश मदन के घर बेलमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कथकों को शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो 2 PM। मोसल मोराफ्री पॉइंट कानूनी में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री जनेश्वर केदू, जिन्हें जोहर के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 1:30 बजे उनके घर पॉइंट कानूनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो 1:30 PM। अब्दुल गजाक स्ट्रीट अपरवेल में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जयरानी सौमी, पैदाशना पोपिया, जिन्हें देवी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे विवेक सौमी के घर अपरवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। जॉन की रोड कौंदमास्क पावे में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्रीजीत रामचंद, जिन्हें प्रेम के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके घर कौंदमास्क पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 11 AM। ऑग्रेमोसिया लोकुले में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री गुरुदत्त ननका, जिन्हें गुरु के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सातना ननका के घर ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। राय रोड रिविया जी पोस्ट में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री सुदर्शन मोरीमुतु, जिन्हें दर्शन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सरोजिनी मोरीमुतु के घर रिविया जुपस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो 2 PM। नंबर 33 पोपेनिसी स्ट्रीट बोबासा में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री देवनारायण जिलाल, जिन्हें बाबू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल शाम 3:30 बजे उनके घर बोबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिवैल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 3 PM। थ्रेबो नंबर पांच वाकुआ में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री सूरजलाल मानिक, जिन्हें सोना के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2:30 बजे उनके घर वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोमा मैल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 2 PM। जुक्रे रोड नोट्रडम में 92 साल के 92 ईयर्स ओल्ड के श्री रूप नारायण सिंह अजोदा, जिन्हें किशोर के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे आचार्य रिजेश अजोदा के घर नौथदाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गुडलैंड की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो 10 AM। ब्रांच रोड मौलाशो में ब्रांच रोड मौला

0: शो में 77 साल की 77 years old की श्री इंदरजीत तिलक, श्री इंदरजीत तिलक जिन्हें सुब्रानंद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे सचिन तिलक के घर मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोसल मौलुबीन बेलमाव की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमारो एट 11 AM। नंबर 30 मोसलमा वीओएस फोबाक ब्रांच रोड पुत्र दो हमलेट में, नंबर 30 मोसलमा वीओएस फोबाक ब्रांच रोड पुत्र दो हमलेट में 77 साल के 77 years old के श्री परानंदा नारायणन जिन्हें दासन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 12 बजे उनकी पत्नी श्रीमती राजमणि नारायणन के घर पुत्र दो हमलेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कारो मोटेल एस्पिरेंस सपीतों की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमारो एट नून। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2

0: बिल्कुल जी, हम भी तो हैप्पी हैप्पी हैं और चाहते हैं कि म्यूजिक के जरिए आप भी हैप्पी हैप्पी ही रहना सुनते सुनते। ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती 6:46 हो चुके हैं। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम एंड वेलकम बैक इन द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो।
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: क्या बात है, सच वंडरफुल गाना. और ऐसे गाने दिल को नहीं बल्कि रूह को छू जाते हैं. धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे दिल को चुराना, और ऐसे ही धीरे धीरे प्यार हो जाता है. और इसी रफ्तार से आपको गाड़ी चलाकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस स्लो वाले इवनिंग को आप और भी स्लो करें, क्योंकि रश वाले टाइम में किसी को टाइम नहीं मिलता है. और कभी कभी हम इतने जल्दी में होते हैं कि जब पलट कर देखते हैं तो अपने छूट जाते हैं. इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप स्लो डाउन करें, एंड इवनिंग्स होते ही हैं स्लो डाउन करने के लिए, ताकि आपको मौका मिले अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपनों के साथ, और अपनों में आपका नाम भी शामिल होता है. इसलिए तो हम आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आ ही जाते हैं. कुछ गानों बहाने से और कुछ मुलाकात के बहाने से आप लोग जब भी हमें याद करते हैं ना, तो हम मन ही मन मुस्कुराते हैं. और वी फील रियली वेरी स्पेशल कि आप लोग बार बार रेडियो मस्ती की लहरों पर हमसे मिलने आते हैं. सो दिल से आपको शुक्रिया, एंड टू ऑल दोज थैंक यू सो मच कि आप लोगों के मैसेजेस ऑलरेडी आने शुरू हो चुके हैं. तो चलिए, अगर आप भी हमें याद करना चाहते हैं, मैसेजेस भेजने का तरीका एक ही है, वो है मैजिकल नंबर विच इज़ 5499 1294. से ज़रूर हमें याद करिएगा और बताइए कि किस तरीके से आप इस वेंसडे इवनिंग को स्पेंड कर रहे हैं. हम तो आ चुके हैं आपके इस इवनिंग को और भी स्पेशल बनाने के लिए कुछ और खूबसूरत ब्यूटीफुल सूदिंग म्यूजिक के साथ टिल 9 PM. सो चलिए, दिव्या का साथ है इन योर इवनिंग लाउंज, और ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिएगा कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ. विल कीप यू वेल एंटरटेन्ड.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: जिस घड़ी तुझको मेरे रब ने बनाया होगा, और बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि बस जैसे भी रब ने बनाया है बस कमाल का बनाया है। और हमेशा हम कहते हैं ना, जब किसी से प्यार होता है तो हमारे लिए वो लाखों में क्या करोड़ों में एक दिखने लग जाता है। और ये जो स्पेशल फीलिंग है, ऐसे ही आपको हमेशा बरकरार रखना चाहिए। कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी इंसान में वो स्पार्क देखते हैं, और धीरे धीरे करके जब प्यार को 10 साल 15 साल या फिर कितने भी साल क्यों ना गुजर जाए, वो स्पार्क धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है, और धीरे धीरे वो इंसान स्पेशल फील नहीं होता है, या फिर आप उनको स्पेशल फील कराने में कतराते हैं। और इसकी वजह बस यही है कि यू डोंट see the person as being someone special anymore, but यही important factor है एक relationship में, जहाँ पर आप उनको हमेशा हमेशा वो special इंसान के नज़रिए से देखें। और जब आपका नज़र और नज़रिया कभी नहीं बदलेगा उस इंसान के लिए, तो आपका प्यार भी कभी बदलने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बदलाव प्यार में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। और इस प्यार में एक ही बदलाव हो सकता है, और वो ये है कि आप प्यार को थोड़ा सा और बढ़ावा दें, और प्यार का डोज थोड़ा सा और इंक्रीज़ करें। एंड माइंड यू, प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए, दिन ब दिन इसको हमेशा बढ़ते हुए देखना चाहिए। एंड ग्रोइंग टुगेदर इन अ रिलेशनशिप इज़ सुपर डुपर स्पेशल, और हम यही चाहते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में ग्रो करें। एंड कहते हैं ना कि जब लोगों को प्यार होता है तो पीपल फॉल इन लव, बट यू शुड राइज इन लव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, यहाँ पर दिव्या का साथ है, आपके मैसेजेस डेडिकेशंस का इंतजार बहुत ही बेसब्री से ऑन 5499-1294।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
4: Radio Masti।

यकीन मानिए अगर प्यार में आपने किसी को ये दो लाइनें बोल दी ना तो वो उम्र भर कभी भी आपके इस प्यार को नहीं भुला पाएंगे। एंड कभी कभी प्यार को एक्सप्रेस करना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो आपकी फीलिंग्स है ना वो एक इम्पैक्ट छोड़ जाता है ऑन दोज जो आपसे प्यार करते हैं। इसीलिए कभी कभी प्यार को अल्फाजों में बयां करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ताकि बार बार अल्फाजों को याद करके लोग आपको याद रखें। चलिए 7:35 हो चुके हैं। टू ऑल दोज वर्किंग राइट नाउ, आपको बोंको हाज। एंड अगर आप लोग भाग दौड़ के इस माहौल से दूर ऑलरेडी अपनी ये प्यार का घर के घरौंदे में पहुंच चुके हैं, कहने का मतलब यही है अगर आप घर पहुंच चुके हैं तो बस रिलैक्स कीजिए एंड खाना खाते खाते हमारा साथ देते रहिएगा। घर को प्यार का घरौंदा ही कहना चाहिए क्योंकि बस वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर यू कैन बी इन योर कम्फर्ट जोन, यू कैन बी कम्फर्टेबल। एंड

0: अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है तो इसको घर कहा जाता है, और अगर आप हमेशा किसी को ऐसे फीलिंग्स से रिलेट कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि घर आपके लिए कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि कोई शख्स है। चलिए, लोगों के लिए डेफिनेशन अलग अलग होता है फॉर बीइंग एट होम, आपका क्या डेफिनेशन है ये तो हम ज़रूर जानना चाहते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। एंड वी हैव प्रीति ऑफ अमोरी, कहती हैं प्यार किया है चोरी चोरी, एंड गोज आउट टू ऑल योर रेडियो मस्ती फैमिली, एंड कहती हैं प्लीज़ दीदी मुझे मेरा गाना दे दो। एंड वैसे प्रीति, आपको हम बता देते हैं कि ये गाना लास्ट वीक हमने चला लिया था, बट हम ट्राई करते हैं इसको एक बार फिर से चलाने के लिए। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हम अवॉइड करते हैं टू रिपीट सम ऑफ द सॉन्ग्स, तो अगर हो सके तो हम इसको अगले हफ्ते हम ट्राई करते हैं चलाने के लिए। एंड यहाँ पर किसी ने हमें याद किया है, नमस्ते सिस्टर प्लीज़ ऐड माय नेम, बदौक विदेशी जी, कोई भी गाना आपने कहा है इसमें आपका नाम ऐड कर दीजिए। बिल्कुल, हाई रेडियो मस्ती गीता सीता भुलुराम ऑफ शतुबिरह से साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड चलिए, इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ, जिनको सुनने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि सच में आप प्यार की दुनिया में पहुँच चुके हैं।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
4: Radio Musti.

0: जहाँ दोस्तों 8:07 हो चुके हैं, तेरी बाहों में ऐसे सिमट जाऊं कि जुदा कोई ना कर पाए। कभी ऐसा होता है ना कि हम मुलाकात करते हैं उस शख्स से जिनसे हम बहुत ही प्यार करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार शायद ही हम उस शख्स से करते हैं जिनको हम दिल देने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि मुलाकात करने के बाद छोड़कर वापस आने का मन नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार का दूसरा नाम इंतज़ार है और थोड़ा सा और इंतज़ार सही। और कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है, तो हैव सम पेशेंस, क्योंकि प्यार में ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जितना पेशेंस रखें धीरे धीरे करके ये पेशेंस टर्न्स इंटू अ स्वीट स्वीट इंतज़ार। और इस प्यारे से इंतज़ार के साथ साथ हम प्यारे प्यारे गाने भी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा और प्यार हो जाए और आपका दिल थोड़ा और से धड़क जाए। तो चलिए, यहाँ पर इट्स योर इवनिंग लाउंज जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: अगर आपकी भी जिंदगी इन अ पॉजिटिव वे चेंज हो गई है किसी से मुलाकात करने के बाद, सो डेफिनेटली आपसे हम कहेंगे कि मे बी यू आर इन लव विद द राइट पर्सन.

0: सुन रहा है ना तू, एंड हम यही चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ हमें सुनाएं कि किस तरीके से आप इस स्लो इवनिंग को स्पेंड कर रहे हैं. और भले ही स्लो इवनिंग है लेकिन हम वक्त को कभी भी ठहर नहीं सकते हैं और वक्त किसी के लिए भी ठहरता नहीं है, लेकिन क्या करें, फ्लो में बहते चले जाना है. और साथ में आपके मैसेजेस, डेडिकेशन हम तक ज़रूर पहुंच रहे हैं. वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. वी हैव विलाशा जो इस वक्त जुड़ी हुई है हमारे साथ एंड कहती हैं कि नाइट शिफ्ट पर हूँ एंड आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू रेडियो मस्ती. थैंक यू सो मच विलाशा. एंड द नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली फॉर वीमा. और साथ में है रुमिला और वी ऑल्सो हैव मिस्टर संजय जो कनेक्टेड हैं हमारे साथ. थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग काम पर होने के बावजूद भी टाइम निकाल कर हमारे गीतों को एंजॉय कर ही लेते हैं. चलिए बस ऐसे ही काम करते करते हमारा साथ देते रहिएगा. इट्स योर इवनिंग लाउंज जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM.
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.

चलिए दोस्तों, ऑलरेडी 8:54 एंड चलिए इसी के साथ इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है कल फॉर योर थर्सडे इवनिंग सेम टाइम 7 से लेकर रात्रि के 9 बजे के बीच. तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत. टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय.

नीतू की ओर से प्यार भरा नमस्कार प्रणाम विशिंग यू ऑल अ लवली इवनिंग माय डियर लिसनर्स. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. सो चलिए 3 घंटों के सुरेले सफर में सबका स्वागत है, वो भी रात्रि के 12 बजे तक विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. व्हाटएवर यू माइट बी, घर पर होंगे, काम पर होंगे, ड्यूटी पर हैं, सबको बोंकुआश एंड वी आर गोना हैव अ नाइस टाइम ऑल टुगेदर विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक.

बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को देते हैं, है ना? एक मुस्कान, एक मीठा शब्द और एक सच्ची दुआ किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। वैसे प्यार बांटने से कम कभी नहीं होता है, बल्कि और भी बढ़ता रहता है। That's why हर दिन किसी न किसी के जीवन में खुशी की एक छोटी सी वजह जरूर बनिए।

इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पद से नहीं बल्कि उसके व्यवहार माने कि बिहेवियर से होती है। विनम्रता हमें हर दिल के करीब ले जाती है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसमें उतनी ही ज्यादा नम्रता होती है। झुकने वाले पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है, सुना है ना? इसलिए हमेशा विनम्रता को अपनी ताकत बनाए।

दुनिया की हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अपने परिवार, दोस्तों, अपनों के साथ कुछ पल जरूर बिताएं। मोबाइल और दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा वक्त निकालकर रिश्तों को महसूस कीजिए। यही यादें जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बनती हैं।

दिन किसी एक व्यक्ति की मदद करने का संकल्प लीजिए अगर हो सके तो। हाँ, मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, एक अच्छी सलाह, एक हौसला बढ़ाने वाला शब्द या किसी की बात ध्यान से सुन लेना ही बहुत बड़ी मदद होती है। दया और करुणा इंसान को सच में महान बनाती है।

एक स्कूल है दोस्तों, और हर दिन एक नई क्लास। हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है ना? चाहे वो बच्चे हो बड़े हो, जब सीखना बंद हो जाता है तब विकास भी रुक जाता है। खुद को हर दिन कल से बेहतर बनाने की कोशिश ही सफल जीवन का राज है।

थैंक यू सो मच वंस अगेन नीतू के हम सफर बनने के लिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स. वैसे बारिश की बूंदे, आजकल तो बारिश का समय है, कभी भी बारिश हो सकती है. सुबह की ताजी हवा, बच्चों की हंसी, माँ की दुआ और एक मधुर गीत, ये सब जिंदगी के अनमोल तोहफे हैं. खुश रहने के लिए हमेशा बड़े मौकों का इंतजार मत कीजिए. छोटी खुशियों को महसूस करना ही जीवन की असली कला है.

गाने ऐसे मस्त हो तो दिन क्या रात क्या बस हर पल खुशनसीब बन जाता है। लोग अक्सर आपके शब्द भूल जाते हैं लेकिन उन शब्दों से मिला एहसास कभी नहीं भूलते, इसलिए हमेशा प्यार

सफल बनना अच्छी बात है दोस्त, लेकिन इंसानियत खोना कभी भी सही नहीं। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है वही असली विजेता होता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ ऊपर उठना नहीं बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना होता है।

हर सुबह उन सब के लिए शुक्रगुजार बनिए जो आपके पास हैं, आपके साथ हैं। जब हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं तब कमियां छोटी और खुशियां बड़ी लगने लगती हैं। ग्रैटिट्यूड से मन में शांति और जीवन में संतुलन आता है।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

देखते ही देखते वक्त कैसे निकल गया पता नहीं चला. Already in the third hour of your late night grooves. तो बस दुनिया आपको आपकी संपत्ति से कुछ समय तक याद रखती है, लेकिन आपकी अच्छाई और विनम्रता को हमेशा याद रखेगी. ऐसा जीवन जिए कि लोग आपके नाम के साथ मुस्कान और दुआ भी याद करें.

जिस तरफ साफ पानी में आसमान साफ दिखाई देता है, उसी तरह साफ दिल में प्यार, दया और शांति अपने आप बस जाती है। ईर्ष्या, नफरत और अहंकार को छोड़कर सच्चाई और सादगी को अपनाइए, वही से बेहतर जीवन की शुरुआत होती है।

सो आज का ये खूबसूरत सफर लेट नाइट ग्रूव्स समाप्त हो चला। चलते चलते बस यही कहेंगे कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस उसे देखने की नजर होनी चाहिए। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर शाम हमें कुछ नया सिखा कर जाती है। That's why हर दिन प्यार बांटिए, विनम्रता से जिए, सबका सम्मान कीजिए और अपने दिल को दया और करुणा से भर

दीजिए। याद रखें, दुनिया को बदलने का सबसे सुंदर तरीका है खुद को प्यार, नम्रता और अच्छाई भर लेना। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।

0: होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: देखो हाँ माइके नहीं तू मत माइके माइके मत जाइयो
1: ए टोनी फर्नांडिस बेबी

0: कोतवाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला